0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कार्ड रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समर्पित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस समेत संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर रेल मंत्री मेघालय के और त्रिपुरा के श्रीमदपुर लैंडपोर्ट में नवविकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधा मजबूत होगी। शिवान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावना भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े आपस में, निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका से कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार, मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी

0: करते हैं। आयुष्मान कार्ड चंद में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वो बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढुलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलबंदू मध्य में एमटी मेरवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पूर्वन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। और श्रीलंका एक क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के बंगला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा, फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय प्रणाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तभी कर्नाटक, केरल, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुवत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिन्दुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को साक्षात्कार देते हुए लिखा है चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। बनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करे। अमर उजाला ने दिया है वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। भारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने फॉर्मल जेडब्ल्यू मध्य एंटी मार्वेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दूसरे क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज तांबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
8: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
7: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
8: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
7: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
9: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
10: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

एक बहुत ही बेहतरीन सी सुबह है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं खूबसूरत सी सुबह में। हाँ जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, हम सुप्रभात, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन, आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत दिन है मंगलवार का, प्रभु का नाम लेकर कीजिए अपने दिन की शुरुआत। हम भी बोलेंगे आपको जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत दिन, आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो, सब कुछ बेहतर से बेहतरीन हो, यही हम उम्मीद करते हैं, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके जीवन की यात्रा हमेशा मंगलमय रहे। श्रोताओं, दोस्तों, आज का ये बेहतरीन दिन है, 9 जून की तारीख हो गई है आज, बहुत ही प्यारा दिन है। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 8:21। बहुत ही खूबसूरत सुबह आप सभी का इंतजार कर रही है। भाई, घर से बाहर निकलिए मुस्कुराते हुए, एक बेहतरीन सोच के साथ कीजिए अपने आज के दिन की शुरुआत। एवरी चैलेंज इज टू चेंज योर ग्रो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमारी लाइफ को चेंज और ग्रो करने के लिए आते हैं और हमें मजबूत बनाने के लिए ज़िंदगी में आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी कुछ आपको लग रहा है कि भैया बहुत टिपिकल वाले चैलेंज आ रहे हैं, तो याद रखिए दोस्त, ये वही चैलेंज है जो आपको चेंज करेंगे और आपकी सक्सेस की ग्रोथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएंगे। तो बस आप जो है अपने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्त टाइम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो टाइम है इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, और इस टाइम को अगर आपने इस्तेमाल करना है अच्छे से, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खुद पॉजिटिव होना होगा, आपको खुद एक अच्छी सोच के साथ अपने घर से बेहतरीन मुस्कुराते हुए पूरी फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपने कदमों को बाहर निकालना है ना। बहुत ही खूबसूरत बात मैंने बता दी, अब आपको इससे ज़्यादा और खूबसूरत क्या ही हो सकती है आज की सुबह की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब 10 बजे तक मेरा और आपका साथ बना रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। शो है बिंदास मॉर्निंग, मैं हूं आरजे आनंद। कुछ कहना चाहते हैं तो फटाक से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुरादाबादीज अपने हालचाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं, बढ़िया सा सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग भी पहुंचा सकते हैं 9837 8968 9 6 8 9 6। ये स्टूडियो का नंबर है। ढेर सारे इन्फॉर्मेशन है मेरे आज पिटारे में, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी से स्पेशल बातें हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। आज के सफ़र की शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और इस खूबसूरत से गीत के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आज 9 जून क्यों खास है, 9 जून के दिन क्या स्पेशल है। डेफिनेटली आपको पता लगेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एग्जैक्टली, समझदार हो गए हम आप। बहुत ही बढ़िया, होना भी चाहिए यार। दिल है तुम्हारा, ऑफ कोर्स यार तुम्हारा ही है। अरे भाई, पिक्चर के नाम बता रहा हूँ, सुबह सुबह नो मजाक नो जोक, सीरियस बातें करते हैं ना। सो आज की ट्यूसडे की सुबह है लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत स्पेशल मॉर्निंग है। उदित नारायण साहब की आवाज, अलका याग्निक जी देंगी साथ, बहुत ही बेहतरीन गाना निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। मुझे भी रहेगा आपका इंतजार, व्हाट्सएप करो ना मेरे यार। वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करेंगे इस बेहतरीन गाने के साथ आज के सफर की शुरुआत। 3 2 1 गो, एंजॉय करो यार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: क्या मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

वर्ड आर ब्यूटीफुल नंबर ब्यूटीफुल सर, क्या बात है, जरा जरा बिल्कुल हम भी जरा जरा करके आगे बढ़ रहे हैं जी। वक्त हो गया है 8:35 हो गए हैं स्टूडियो घड़ी में, देखो वक्त का पता नहीं चलता यार है। ये वक्त है ना बहुत ही खूबसूरत है यार, आज जो ये हम वक्त काट रहे हैं ना वो एक दिन मैंने डायलॉग भी प्ले किया था, बहुत खूबसूरत वक्त है, इसे याद करेंगे और एक दिन हंसेंगे। वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग, ट्यूजडे मॉर्निंग है, आनंद के साथ आप जुड़े हुए हैं आपके शहर के ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 MHz पे। शो चालू है बिंदास मॉर्निंग, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और ये आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए भैया आज 9 तारीख हो गई है और कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ समय भाग रहा है ना। सोच रहे हैं अब 2026 के 6 महीने अब जो है कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई कैन बिलीव दिस कि इन 6 महीनों में हमने कितना कुछ देख लिया है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमने जो अपने रेजोल्यूशंस बनाए थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं, सीरियसली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता भाई। और मैं अगर अपने रेजोल्यूशंस की बात करूँ तो साल आते आते बहुत सारा जोश और नई नई एनर्जीज के साथ हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों यार वो सब कुछ हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं। फिर जब हमारा लास्ट में काउंट डाउन शुरू होता है कि अब न्यू ईयर आने वाला है, तब हम देखते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो यार अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है तो प्लीज़ उसे पूरा कीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए तो ज़रूर डेफिनेटली टाइम आप निकालें, बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना है। देखिए दोस्तों, जब हम अपने शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं तो ये शरीर हमारा लॉन्ग टर्म साथ देता है ना, हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, बहुत सारी दवाइयों से बचे रहते हैं। तो ये जो सुबह का समय है बहुत ही पावरफुल है, इस समय को ना ऐसे ही नहीं ख़राब करना है, इस समय का सदुपयोग करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत अभी कर रहे हैं जस्ट, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि 10 मिनट ही सही प्लीज अपने लिए निकालिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।

और अब बात कर लेते हैं आज की तारीख की, क्यों महत्वपूर्ण है आज की ये तारीख, इतिहास के पन्ने क्यों खास हैं, स्पेशली आज 9 जून के दिन। वैसे तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो है आज के दिन हुई और कई घटनाओं के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रोताओं, आज का दिन क्यों खास है, चलिए मैं एक नज़र फटाफट इस पर डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों में, जो थोड़ा सा चलते हैं इस सफर की ओर और जरा देखते हैं क्या कुछ खास रहा है आज की तारीख में। आपको बता दें आज के दिन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ श्रोताओं, आज का वो दिन था जब हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 में आज के दिन यानी कि 9 जून की तारीख थी श्रोताओं।

आपको बता दें, म्यूनिक में विश्व कप फुटबॉल रंगारंग का जो इसका शुरुआत है वो आज के दिन हुई थी सन 2006 में, और ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन को बहुत ही खास और स्पेशल बना रही हैं दोस्तों। और हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, हर दिन हम कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखते हैं अपने इतिहास के पन्नों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें, जब हम इनसे जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं, तो तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमारा दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने नवे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा पुरस्कार समारोह में चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार था वो श्रोताओं आज ही के दिन जीता था। यस, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ श्रोताओं। और आज के दिन जन्म में कुछ खास कलाकारों में सबसे पहले किन का नाम आता है आपको बता दें, चौधरी दिगंबर सिंह। सन 1913 में इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 9 जून को स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता रहे। आज ही के दिन जन्म हुआ किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस। 1949 में इनका जन्म हुआ श्रोताओं। और आज ही के दिन बॉलीवुड की एक बेहतरीन अभिनेत्री है जिनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन 1981 में अनुष्का शंकर, भारतीय संगीत का आज के दिन जन्म हुआ। और आपको बता दें, आज बहुत ही दिग्गज सेलिब्रिटीज का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। कौन है ये कमाल के दिग्गज पर्सनालिटी, इनके बारे में डेफिनेटली बात होगी थोड़ी देर में इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आपको बता दें, आज के दिन सन 1912 में बसंत देसाई, जो भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका भी जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने अभी इंजॉय कर ली आरजे आनंद के साथ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखक दिवस आज मनाया जाता है श्रोताओं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना रही है, थोड़ी देर में उन पर चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। छोटा सा प्रोग्राम है जो आपके लिए आने वाला है इस स्टेशन पर, जहां पर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद जल्दी से जुड़ेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, क्योंकि आप हैं आज के साथ, सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के जरिए 9837896896। स्टूडियो का नंबर मैंने आपको बता दिया है 9837896896। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ मुखातिब हो सकते हैं आज की मॉर्निंग। एक बेहतरीन गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया है मैंने, जनता बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही क्यूट सी लगी थी यार इस गाने में। अगर आपने इस गाने का पिक्चराइजेशन नहीं देखा तो देखना यार, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। चलो इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सुनिधि चौहान, जिसमें नरूला शंकर महादेवन की आवाज, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग

0: नहीं तो मुझे बुलाया था।
1: मैंने आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
0: यही कुछ नया बस आता है।
2: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
2: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
2: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
10: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग।

0: दोस्तों चलिए फिलहाल आपको लेकर चलते हैं हम सीधा एक जनपद एक व्यंजन योजना की ओर, जहां से आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज का जो हमारा ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, ये आपको सीधा लेकर जाएगा वाराणसी की गलियों में, यानी बनारस की गलियों में। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं और आप जो है भाई साहब, क्या बेहतरीन चीज़ों को आज आप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और सुनने वाले हैं। ये बेहतरीन सा प्रोग्राम जिसको सुन के आपकी मेमोरी भी सुबह सुबह एकदम फ्रेश हो जाएगी, आपको लगेगा बनारस आ गए हैं बॉस। तो ज़रा सुनते हैं इस प्रोग्राम को, फिर आपको मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, आरजे आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं जी, 9837896896 स्टूडियो का नंबर, बहुत ही आसान है। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सुबह सुबह कनेक्ट हो सकते हैं और ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। जी हाँ, अब देखिए ढेर सारे श्रोताओं के मैसेज तो पहुंच ही गए हैं। मैं सोच रहा हूँ इन मैसेज से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद हम जल्दी आपसे मुखातिब होंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आपको जुड़ना है तो 9837896896 स्टूडियो का नंबर, बहुत सिंपल है। इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए आज की सुबह और फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करत नी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जाएंगी।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगे, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए। यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: था मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाहे चाहे चाहे
5: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ट्यूसडे की सुबह है, मेरा नाम आनंद है। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई, यानी कि 10 बजे तक आपका साथ जो है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे बना रहेगा। आप जहां भी जा रहे हैं आपको ऑल द बेस्ट। आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या आपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो भैया आपकी हो जाए बल्ले बल्ले, यही हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज आनंद। इस वक्त आप हैं आपके शहर के अपने फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक 20 जून को जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए होने वाली एक ब्यूटीफुल कैंपेन के बारे में, ये अभी ऑफ कोर्स आपको पता लगेगा। एंड क्या कुछ स्पेशल होने वाला है ये भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लोकल फॉर वोकल की खबरें आपको बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे इट इज वेरी वेरी सून, और इसमें हम क्या स्पेशल होने करने वाले हैं और हमारे आसपास क्या स्पेशल होने वाला है ये भी आपको पता लगेगा। मुरादाबाद में क्या कुछ खास हो रहा है ये अपडेट आपको दूंगा थोड़ी सी देर के अंदर। एंड अच्छे गाने ऑफकोर्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर भैया आप में से कोई भी बंदा ऐसा मुझे सुन रहा है जिसके घर पे LPG कनेक्शन जो है अगर वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी है, तो अपने कानों को जरा रेडियो पे लगाए रखिएगा। हाँ जी, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है अभी आपको बताऊंगा, और आपकी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है इस पे भी बात करेंगे थोड़ी सी देर में, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए एक काम करते हैं, अभी एक बेहतरीन गाना सुनते हैं। इस गाने के बाद फटाक से जब लौट कर आएंगे तो आपसे करेंगे और ढेर सारी बातचीत। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप कहीं नहीं जाएंगे और रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना वो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक बेहतरीन गाने के साथ आगे बढ़ते हुए करेंगे अपनी बेहतरीन से शुरुआत। आप लोगों की मॉर्निंग हो गई है गुड पाजी, वेरी नाइस यार, आप सुन चुके हैं RJ आनंद।

0: जमा ही है। ब्यूटीफुल नंबर है यार, सच में बहुत ही बेहतरीन गाना। ओए होए सुबह सुबह ट्यूसडे मॉर्निंग आनंद के साथ है आप। ओए होए क्या बात है। ओए होए गाड़ी धीरे चलाओ भाई, सीट बेल्ट लगा लो यार। नहीं, फ्रॉम द फिल्म कल होना होगा ये बेहतरीन ट्रैक अभी आप इंजॉय कर रहे थे। एक खूबसूरत गाना, और ये वो गाने होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें हैपनिंग वाइब भी दे देते हैं यार। साधना सरगम, साथ में उदित नारायण, बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज सोनू निगम साहब दे रहे थे, साथ में शंकर महादेवन भी थे। इन्हीं गानों के अंदर जो आवाजें थी बहुत ही बेहतरीन कलाकारों की आवाजें। वेलकम बैक, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग आनंद के साथ हैं। और भैया देखिए, अब आपको जो है फटाफट से बता देते हैं, अभी 9:17 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। जी हाँ, बिल्कुल सही समय सुन रहे हैं आप। आज 9 जून की सुबह स्टेशन क्लॉक का वक्त मैंने आपको बताया है, आपकी क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है जरा देख लीजिए भाई साहब। वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह बहुत कुछ खास है, आज की मॉर्निंग बहुत कुछ स्पेशल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पेशल अपडेट ये दे देता हूँ भाई साहब। देखिए, हर दिन मुरादाबाद में ढेर सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं। एब्सोल्युटली जो पुलिस कांस्टेबल का कल एग्ज़ाम था, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो आज भी एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, और जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम देने निकल रहे हैं आज भी, उनको ऑल द वे बेस्ट। अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से फिनिश कीजिए। एंड बच्चे पार्टी, आपने टेंशन नहीं लेने, वैसे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे तो नहीं रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं सर। तो आपको ऑल द वे बेस्ट, फुल ऑफ एनर्जी के साथ फिंगर जो है अपनी क्रॉस करिए, क्रॉस फिंगर, अच्छा सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए बढ़िया, एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा सब कुछ। आपको बता दें, मुरादाबाद में आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा जो है शुरू हो गई है। 28 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जो है वो संपन्न हुई, और कल भी जो परीक्षाएं थी वो भी बहुत बढ़िया से हुई। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट की परीक्षाएं हैं, तो जो स्टूडेंट आज एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं वंस अगेन वही रिपीट करूंगा कि भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से जाइए, एकदम मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छी सोच के साथ निकलिए बाहर। और अगर आप एग्जाम देने निकल पड़े हैं, यानी कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऑल द वे बेस्ट यार। आपको बता दें भैया, जो पागवाड़ा नेशनल हाईवे है ना, अथॉरिटी द्वारा जो वहां पर एक नाला बन रहा है, जिसकी वजह से पागवाड़ा से लेकर कैलसा को जाने वाले जो ये मतलब उधर जो लोग सफर कर रहे हैं उस रूट से, उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जाम के जो इस वक्त बोले हालात तो उधर बने हुए हैं बॉस। एक तो जो रॉन्ग साइड से निकलने वाले वाहन है भाई साहब, उनकी वजह से और दिक्कतें हो रही हैं। तो थोड़ा सा सब्र करो यार, ये जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये जो जाम है ना, इसका सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा फिर। बट अभी तो यार एडजस्ट करो यार, एडजस्ट कर करके ही निकलो बॉस। आपको बता दें, मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। क्या भैया? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। यस, आने वाली 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, जिसकी तैयारी अब अपने मुरादाबाद में भी हो गई है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और आपको बताते चले, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस विशेष सप्ताह की तैयारी जो है आयुष विभाग द्वारा तेजी से कर दी गई है। और इस वर्ष योग दिवस की थीम भी बहुत ही स्पेशल है, लेडीज एंड जेंटलमैन, योगा फॉर हेल्दी एंगेजिंग, यानी कि भैया स्वास्थ्य वृद्धा स्वास्थ्य का ये जो अपना हेल्थ है ना, इसको आपने अच्छे से मेंटेन करना है। योगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ के लिए अगर आप योग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और योग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह जो है अपने जनपद में, इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर दी गई है। और इस वर्ष की थीम भी बहुत ही अच्छी है, योगा फॉर हेल्दी एंगेजिंग। तो भैया देखिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है तो योगा से अपनी आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो भैया देखिए, जो लोग योग करते हैं हमेशा, जो लोग योग पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, वो तो उनकी तो भाई बल्ले बल्ले है। और मुझे लगता है कि हर किसी को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। और ऐसी ही भैया तैयारी हो गई है अब अपने मुरादाबाद के जनपद में भी, अपने जनपद में बहुत अच्छे से योगा की तैयारी चल रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की। तो आप अगर कहीं योगा करने जाते हैं तो बहुत अच्छी बातें, नहीं जाते तो मैं आपको बताऊँगा आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आपके लिए कैंप होने वाले हैं योगा स्पेशल, वो अपडेट भी आपको मिलेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। ये थी लोकल फॉर वोकल की बात। आगे बढ़ते हैं, और अभी थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो भैया आपको बताएंगे उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आज की सुबह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके काम की बात होती है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, इसीलिए तो कहते हैं ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हाँ श्रोताओं, अब आपके लिए भैया हम ये कहना चाह रहे हैं आज की सुबह की आपने जो है हमें व्हाट्सएप करके बताना है आप कहाँ जा रहे हैं, 9837896896 आप ऑफिस जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, जरा व्हाट्सएप करो यार।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
7: कॉल 8826213131।
0: चलिए भैया एड ब्रेक का हो गया है टी एंड, और अभी मतलब एड ब्रेक तो हो गए हैं यहाँ पर खत्म, बहुत ही छोटे छोटे एड ब्रेक आते हैं। अब जो है एक बढ़िया सा गाना आ रहा है, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे आप। किक मूवी से एक बेहतरीन गाना, अमित प्रदस की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, श्रेया घोषाल देंगी साथ। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है ब्यूटीफुल ट्यूजडे की सुबह यानी मंगलवार का दिन, सब कुछ मंगल ही मंगल हो आपके जीवन में, यही शुभकामनाएं दे रहा है आरजे आनंद। लौट कर आएगा एक सवाल के साथ और करेगा आपसे ढेर सारी बात, एंड आपके जो संदेश आए हैं उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए जो लगातार मुझे मिल रहे हैं ढेर सारे, आपके प्यार के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके।

बहुत ही ब्यूटीफुल गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे कि फिल्म से एक ट्रैक और ऐसे ही खूबसूरत गाने जब हम सुनते हैं तो सुबह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है ट्यूसडे की सुबह लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद के साथ. भाई साहब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है. आई नो दैट हर इंसान को जो है ना आज के समय में ऐसी लत लग गई कि भैया मेरे को भी अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, मेरे को भी अपनी चीज़ दिखानी है, वो चीज़ दिखानी है. और कई बार इस चक्कर में भाई साहब हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. जैसे कि अभी एक यूट्यूबर के साथ हुआ है सोशल मीडिया पे. एब्सोल्युटली आपने ये किस्सा सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ. इन शॉर्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार. और ये न्यूज़ हमें सिखाती है कि हर चीज़ को सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं करना चाहिए. एक यूट्यूबर है रचना गुज्जर जी, जो सोने की ज्वेलरी और नगद अपने कुछ पैसे वैसे के साथ उन्होंने एक रील डाली थी सोशल मीडिया पे. एंड उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, यूट्यूबर थी वो, उनके घर से 800,000 रुपये चोरी हुए और जो उन्होंने रील्स में अपने गहने वगैरह दिखाए थे वो सब कुछ उनके घर से चोरी हो गए. मतलब उनको रील्स में सब कुछ दिखाना बहुत महंगा पड़ गया है ना. तो वही चीज़ है कि हर चीज़ आपको शो ऑफ नहीं करनी होती है यार, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपकी अपनी होती हैं यार, जिनको आप हर चीज़, वो कहते हैं ना हर चीज़ सोशल मीडिया पर आप नहीं रिवील कर सकते. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई डोंट नो क्यों आज के समय में हम लोग कितने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि हर चीज़ को सोशल मीडिया पर आप अपना काम शो कीजिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका वो राइट है. लेकिन हर चीज़ को शेयर करना आई थिंक ये फिर खतरे से खाली भी नहीं होता है. वही हुआ इनके साथ भी. सो आई होप गाइज आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप सोशल मीडिया पे आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, आप जो भी कुछ करते हैं वो अच्छी बात है. दिस इज़ योर वर्क, एब्सोल्युटली आप उसको शो कीजिए, बहुत ज़रूरी है. लेकिन हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को पब्लिश करना आई थिंक इट्स नॉट गुड यार, है ना. तो अपनी कुछ चीज़ें होती हैं बहुत पर्सनल वाली, उनको संभाल के रखना होता है यार. तो वेल यार अभी तो फिलहाल बस इस चीज़ से हमें इतना ही सीखना है कि कोई भी चीज़ को हमें, जो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमें रिस्क में डाल सकती है, उस चीज़ को हमें पब्लिश नहीं करना है. बिकॉज हमें नहीं पता है सोशल मीडिया पे कौन किस नज़र से आपको देख रहा है. सच में यार बहुत ज़रूरी है. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. दूसरी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो है जिनको इसका लाभ मिलता है, जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है बॉस. आपको बता दें उज्ज्वला योजना में अब सिर्फ आपको 4 LPG सिलेंडर मिलेंगे. एग्जैक्टली थोड़ा सा मतलब जो है ये सैड न्यूज़ हो सकती है उन लाभार्थियों के लिए. आपको बता दें देश में हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ है. एंड अभी बताया जा रहा है कि भैया उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको एक कह सकते हैं बड़ा झटका मिल गया है भाई साहब, कि इस सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाले रियायती सिलेंडरों की संख्या में एक बड़ी कटौती की गई है. श्रोताओं जहाँ पहले 9 सिलेंडर मिलते थे एक साल में, लेकिन अब वहीं पर बताया जा रहा है कि भैया उनको सिर्फ 4 ही सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे. जो PMUY लाभार्थी हैं उनको साल में 9 सिलेंडर मिलते थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनको 4 सिलेंडर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे. थोड़ी दिक्कतों की वजह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब लाभार्थियों के लिए रियायती LPG सिलेंडरों की जो संख्या है वो 9 से जो है घटकर अब 4 कर दी गई है. श्रोताओं से ये खबर आपको है, अगर आपके पास ये कनेक्शन है और आपको लग रहा है कि आपको इस साल में 9 सिलेंडर आएंगे, तो भाजी अब जरा संभल के चीज़ों को आपने यूज़ करना है ना. एक बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से भी निकल कर आ रही है, आपको बताते चले फटाफट से. इन शॉर्ट भैया कहा जा रहा है कि यूपी में मानसून लेट हो गया है. अब जो है 24 जून बताया जा रहा है भाई साहब, 24 जून तक पहुंच सकता है मानसून. कह रहा है आजकल तो वैसे भी वेदर का पता नहीं चल रहा है कब गर्मी हो रही है कब बारिश हो रही है. मैं आपको सच बताऊं अभी कल का दिन इतना गर्म रहा है भाई, बहुत तगड़ी गर्मी थी कल. एंड मुरादाबाद में कल टेम्परेचर ही अलग था बॉस, बहुत तगड़ी वाली गर्मी थी. और अभी भी बताया जा रहा है कि भैया 9 जून से लेकर 3 दिन तक लू चलने की संभावना है. 11 जून को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. और अभी फिलहाल मौसम बाहर का क्या कह रहा है ये मैं अभी बताऊंगा जरा सी देर में. एक सवाल जैसे कि मैंने कहा था पूछूंगा आपसे, 9:32 हो गए स्टेशन क्लॉक में. एंड आपके जो संदेश आए हैं वो भी फटाफट मुझे शामिल करने से स्टेशन ऑफ द नेशन पे. एक्चुअली ना टाइम बहुत कम होता है और चीजें बहुत ज्यादा होती हैं हमारे पास, तो उन सभी चीजों को मैनेज करके हमें चलना होता है. श्रोताओं आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी सी कभी कभी चीजें हो जाती इधर से उधर. वेल कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे यार, हम इंसान है AI नहीं. गलतियां होना स्वाभाविक है और गलतियों से डरना नहीं है, गलती होंगी नहीं तो सीखेंगे कैसे. एक अच्छा ट्रैक निकल गया है आपकी रेडियो सेट पे. चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. साथ में हमारे साथ देव जी जुड़ गए हैं एंड देवभूमि उत्तराखंड रुद्रपुर से जुड़े हैं अर्चित हमारे साथ, साथ में उमा शंकर पाल एंड अवंतिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड रिहाना जुड़ गई है मेरे साथ, वेरी गुड मॉर्निंग जी. जय श्री राम. आनंद भाई दुर्गेश सैनी जुड़े हैं पीतल नगरी से. एक मैसेज पहुंच गया है, हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, स्टूडियो में सब कैसे हैं? एकदम ऑल गुड जी. रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी जुड़े हैं, लिखते हैं हमारा शो इनको बहुत पसंद आ रहा है जी. शुक्रिया जनाब.
गुड मॉर्निंग जी, आज 9 जून है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। प्यार बांटने से बढ़ता है और सम्मान देने से रिश्ते खिल उठते हैं। जीवन में हमेशा प्रेम, विनम्रता और आदर बनाए रखिए, यही खुशहाली जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मंगलवार की शुभकामनाएं। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। रोहित कुमार हनुमान मूर्ति मुरादाबाद से जुड़े हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
8: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात, एक बेहतरीन बरेली की बर्फी से भी आपने एंजॉय कर लिया। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक था ये। सच बताऊं तो इतने बढ़िया गाने सुन के बड़ा मजा आता है यार। ये वो गाने हैं जिनको सुन के हम फ्लैश बैक में पहुंच जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सोनम कपूर का। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, अनिल कपूर की डॉटर हैं। सोनम कपूर आज अपना बर्थडे मनाती हैं। 9 जून को उनका जन्म हुआ आज ही के दिन, एंड शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेलिब्रिटी। बहुत ही बढ़िया यार, उनकी वॉइस क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी यार। इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी फिल्में दी हैं, और बहुत ही सुपर डुपर हिट अभिनेत्री हैं जिनका आज हम बर्थडे

0: और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। अतः हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और एक बात पर ध्यान देना, आनंद का क्षण और अन्न का कण कभी मत छोड़ना। जहाँ मिले, जब मिले, जैसा मिले, जितना मिले लेते रहिए। नमस्कार, राधे राधे। सुनते रहिए FM मुराद, भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज। नंबर 98-378-96-896। जी हाँ, वही नंबर आपकी आवाज़ को पहुँचाएगा पूरे शहर, पूरे देश तक। नमस्कार, राधे राधे।
1: थैंक यू सो मच भूपी भाई, आपको भी राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत सा मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी हमारे साथ ऐसे प्यारे प्यारे संदेश करके जुड़ सकते हैं। चलिए जी, बात हुई अभी सोनू कपूर जी की, उनका आज बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑफकोर्स उनका एक गाना यहाँ पर जरूर चलेगा और इसी गाने को सुनते हुए हमें और आप आगे बढ़ेंगे। आज है मंगलवार की सुबह, 9 जून की तारीख, 2026। स्पेशल मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आज की सुबह कहते हैं ना, जब हर दिन एक नई सुबह आती है तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है। तो भाई ब्रांड न्यू क्यों नहीं बोलेंगे, मॉर्निंग तो ब्रांड न्यू हो गई यार। हर दिन की सुबह कुछ स्पेशल लेकर आती है यार। आज की सुबह आपकी लाइफ में वो कुछ अच्छा होगा जो कल नहीं हुआ है ना, और कल वो होगा जो शायद आज से भी अच्छा होगा, लेकिन हमें आज को और स्पेशल बनाना है। जो कल गया है ना, उससे बेहतरीन आज को करना है। लेकिन उससे पहले मेरा आज का कड़क क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। फटाक से आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाना है, अपना फोन टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। कौन सी फैंटास्टिक एक्ट्रेस का हम बर्थडे मनाते हैं उनका नाम तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं आज का मेरा कड़क सवाल, ये कौन सा गाना है आपने आइडेंटिफाई करना है। व्हाट्सएप करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है इसमें और ये कमाल की सेलिब्रिटी है यार। इनका बर्थडे होता है आज 9 जून को, बहुत ही फैबुलस सेलिब्रिटी है, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन इस गाने का। कौन सा गाना है ये? मैसेज करना फटाफट से मुझे, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896। कौन है कमाल की कुड़ी, बहुत ही प्यारी लड़की है यार, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है। लौट के आता हूँ, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है आज सोनम कपूर। वही हैप्पी बर्थडे सोनम जी, आप ऐसी मस्त रहे, झकास रहे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ तो बेहतरीन चलाती रहे हम सभी के लिए। आज की तारीख में अगर आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे मनाते हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनम कपूर के साथ।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

बेहतरीन गाना भी आपने सुना, गदर 2 का ट्रैक था। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम आनंद के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, आप चाहे दिल्ली रोड जा रहे हैं या कार्ट रोड, या आप जा रहे हैं स्टेशन रोड, कहीं पर ट्रैफिक है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं 9837896896। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। ट्यूजडे की सुबह है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज किसका बर्थडे होता है यही मैं आपको इस गाने के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने कड़क क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आपने दिया उसका सही जवाब तो आज की सुबह बन सकते हैं आप आज के मेरे शो के सुपरस्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की मॉर्निंग हमने सोनम कपूर का बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लिया है, और अब बारी है उन आइकॉनिक एक्ट्रेस की जिसके बारे में बहुत देर से बात कर रहा हूँ। और अभी आपने गदर 2 का उनका गाना सुना, एंड शी इज एब्सोल्युटली आइकॉनिक एक्ट्रेस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कौन है ये कमाल की कुड़ी, इनका नाम है अमीषा पटेल। यस, आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है और इन्हीं के ऊपर है पिक्चराइजेशन ये गाना। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है मुझे कौन से गाने का म्यूजिक है ये, अमीषा पटेल का कौन सा गाना है। दिस इज वेरी पॉपुलर नंबर, तो जरा इस गाने को सुनिए और पहचानिए कौन सा वाला गाना है ये। व्हाट्सएप करना है आपको, अपने नाम के साथ उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, कहाँ से हैं आप, विच सिटी, एंड साथ में अपना राइट आंसर सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896। लास्ट मौका है आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्यूजडे की सुबह लास्ट मौका है। अमीषा पटेल का कौन सा गाना है, व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत ही कमाल की हेल्थ टिप्स लेकर आने वाला हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन चीज, अगर आप इसको अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आप भी एकदम दिल से बोलेंगे जो फिट है वो हिट है। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। एक और फैबुलस गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आज की जो सुबह है बहुत ही फैंटास्टिक है, और ये जो गाना है बहुत ही अमेजिंग है, निकल गया है करण औजला का बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास, गुड मॉर्निंग।

0: बात है करण औजला को एंजॉय कर रहे थे आप साथ में, बहुत ही ब्यूटीफुली गाना और फुल ऑन वाइब आपको मिल रही है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 जून 1964 का दिन था जब आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला था, आज ही का वो दिन था एग्जैक्टली। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 जून की तारीख थी जब 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कमाल की अपडेट मैंने आपको दे दी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, लास्ट मौका है आपके पास, प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा गाना है मिश्रा पटेल का। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, yes, इस गाने को पहचानना है, अगर आपने पहचान लिया है तो बहुत ही बढ़िया। मुरादाबादी व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 9:59 हो रहे हैं भाजी, 9:59 एग्जैक्टली, 9:59 हो रहे हैं, यानी कि 10 बजने को है, जरा सी देर में 10 बजेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं किसी लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट करूंगा, आज की सुबह कौन होगा मेरी शो का लकी सुपरस्टार पता लगेगा जरा सी देर में। पाजी जरा मेरी तारीफ करो यार आप।
1: भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: तरस तो यार मुझे बहुत आता है कभी कभी, मतलब खुद पर, कि बेटा आनंद सुबह सुबह ना तू अपने लिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल रहा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है यार, मतलब मन ही नहीं करता है सुबह सुबह उठने का। हेलो हाय वेलकम बैक है जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है ट्यूसडे की सुबह। मैंने कहा जी की हाल चाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? आई होप सब कुछ बेहतरीन हो यार। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, जिंदगी एक बार मिली है तो बेहतरीन करो, बढ़िया करो और जबरदस्त होके करो, पॉजिटिव सोचो यार। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखो बिलीव इन कर्मा, दिस इज 2026, अच्छा करोगे अच्छा होगा लाइफ में। इसलिए गलत सोच के बाजी कुछ नहीं मिलने वाला, गलत सोच के खुद को टेंशन में काहे डालना यार। अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो सबसे पहले दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। आज का दिन बहुत ही खास है, स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 10:06। आप हैं आरजे आनंद के साथ, सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 89.6 एफएम। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही इमीडिएटली मैंने आपसे जो एक सवाल पूछा था उसका आंसर्स मेरे पास देने के लिए भर भर के मैसेजेस आए, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लकी कॉलर को कनेक्ट नहीं कर पाए, बट हम बताएंगे कौन है आज के हमारे शो का लकी विनर। लेकिन उससे पहले एक हेल्थ अपडेट फटाक से आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए भाई साहब, हेल्थ अपडेट में आपने कुछ नहीं करना है। आज की जो टिप है बहुत ही सिंपल है, बस आपने सबसे ज्यादा फॉलो करना है, तो वो है एक चीज, वाटर। एग्जैक्टली, पानी की क्वांटिटी को जो है आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है अपने डाइट में। पानी जो है ना अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं, हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो आपने जो है पानी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में एड ऑन करना है पानी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे फल, नट्स, साबुत अनाज, इन सबको तो आपने शामिल करना ही करना है। साथ में चीनी, नमक और ये जो चीजें, इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। पानी जो है आपने लगभग 2.5 से 3 लीटर जरूर पीना है पूरे दिन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बाकी कोई ना कोई नियमित व्यायाम करके, कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी जरूर करें अपनी हेल्थ के लिए, जैसे साइकिल चलाना हो गया, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 मिनट वॉक कर सकते हैं, सुबह योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, और 7 से 8 घंटे की नींद आपने डेफिनेटली लेनी है। छोटी छोटी चीजें अक्सर हम अवॉइड करते हैं, इन्हीं को हमने फॉलो करना है और अपनी लाइफ में खुद से कहना है जो फिट है वो हिट है। अभी भैया बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे सोनम कपूर जी का, और साथ में हमने आज बताया अमीश अप्रैल का बर्थडे होता है। एंड इसी बीच मेरे पास मैसेज पहुंच गया है एक बहुत ही खूबसूरत से लड़की का जिनका नाम है नीत, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया है। आज इनकी मदर का बर्थडे है एंड इनकी मम्मी का नाम है भारती रानी। वेरी हैप्पी बर्थडे आंटी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रही हैं वो ऐसी करती रहें, रॉक मचाती रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारे पूरे एफएम इंटायर फैमिली की ओर से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज अपना बर्थडे भारती रानी जी आप मनाती हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल एंड बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनम कपूर के साथ। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू भारती रानी जी। अगर आज की तारीख में आपका भी हैप्पी वाला बर्थडे होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इन दो दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ। बताते हैं अब आपको कौन है आज के शो का हमारा सुपरस्टार। हैप्पी बर्थडे टू यू भारती रानी जी वंस अगेन। और आज के हमारे सुपरस्टार कौन है, किसने दिया है हमें सबसे पहले सही जवाब, उनके लिए होंगी ढेर सारी तालियां और उनको बनाएंगे आज के अपने शो का सुपरस्टार। ये कौन सा गाना है यही मैंने आपसे पूछा था। ढेर सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एब्सोल्युटली, दिस इज राइट आंसर। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। भाई मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी मैं नहीं गा सकता, नहीं गा सकता। वेल आगे बढ़ते हैं एंड थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेजेस के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन।
1: इस तरह से देखो,
0: एग्जैक्टली दिस इज राइट आंसर। सबसे पहले से जवाब आया था मेरे पास यहाँ पर मानसरोवर कॉलोनी से सौरभ जी का। सौरभ जी कंग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां, आज की सुबह बनते हैं मेरे शो के सुपरस्टार, बहुत बहुत मुबारक है। आपने दिया सबसे पहले राइट आंसर, एग्जैक्टली दिस इज राइट आंसर। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। विकी सागर जी हिमगिरी से मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हाल चाल है? और कहते हैं लड़का बड़ी जानकारी अच्छी देता है और बड़ा समझदार हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? हमारे साथ हरिओम महेश्वरी जुड़े हैं मुरादाबाद से, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है आज की सुबह।
2: चांद जैसे
0: गुड मॉर्निंग सर, आनंद जी कैसे हाल चाल है? मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, वाह वाह वाह वाह, जरूर देखेंगे जरूर देखेंगे। गुड मॉर्निंग जी राधे राधे, आप कैसे हाल चाल है आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। भूपी जी का मैसेज आ गया है मेरे पास सही जवाब का। नौनेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े थे सही जवाब के साथ आज की मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? दुर्गेश जी थैंक यू सो मच, आपने सही जवाब दिया है। ये मेरे साथ जुड़े हैं यशपाल जी यमुनानगर हरियाणा से। ललिता कश्यप नवी नगर से जुड़ती हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, लिखती हैं, सर गर्मी बहुत कराई हुई है आपने और गर्मी बहुत ज्यादा है, प्लीज पानी पीते रहिए और सभी लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे भी ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो प्लीज अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़ी थी ललिता जी, और यहाँ पर मेरे पास ये गलत जवाब किसने पहुंचाया भाई? बाबू अंसारी जी, आपका जवाब गलत हो गया, बोलना हल्के हल्के, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ही गाना। नहीं नहीं सर, वो गलत आंसर हो गया है। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। भूपी जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रिजवान खान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, आनंद जी गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसका ये आंसर है। बिल्कुल जी समझ गया मैं। संदीप गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ते हैं, शुभ मंगलवार, आपको भी शुभ मंगलवार। बड़े मंगलवार का जो है ये छठा मंगलवार है, आपको ढेरों शुभकामनाएं आज के इस मंगलवार की। हमारे साथ रामपुर से जुड़ गई है सना मलिक, साथ में ईरम एंड सना, लिखती है गाने बहुत ही अच्छे प्ले हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। कश्मीर से मेहराजुद्दीन जी जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर पार्टिसिपेटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गर्ल्स एंड बॉय हमारे साथ आप जुड़े एंड ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति, 10:11 हो गए। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए हैं, हेलो सर गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, और इन्होंने लिखा है सर हमें नहीं पता था आज किसका बर्थडे है, मुरादाबाद से मैं हूँ। ये इन्होंने क्या नाम लिखा है, जुबिया इनका नाम है, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के सुबह। हाय गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक, हाउ आर यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाय गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज रंजना, गुड मॉर्निंग रंजना जी। चलिए गाइस अब लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, मेरी आपकी मुलाकात होगी कल सुबह सवेरे से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए। एक संदेश और पहुंच गया है जाते जाते, ये शिप्रा शर्मा जी का मैसेज आ रहा है पागवाड़ा से, लिखती है शिप्रा जी गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है, धूप बहुत तेज है।
2: चांद जैसे मुखड़े पर चांदनी बिखर जाए जिंदगी के चेहरे।
0: ये लिखते हैं कि आज धूप बहुत ज्यादा है तो ऐसे में थोड़ा सा आपने जो है अपना ख्याल रखना है, अपनी घर की महिलाओं का ख्याल रखना है। बिल्कुल सही कहा है आपने शिप्रा जी, और आपने सही जवाब भी दिया है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग शिप्रा। चलिए गाइस अभी लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलेंगे जल्दी से स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग।

0: मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं के जी की हाल चाल दोस्तों मनु। उम्मीद तो यही करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे। इस गर्मी में थोड़ा सा परेशान भी हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, गर्मी है। बट मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, अगर कोई काम है तो ही बाहर जाइएगा, अन्यथा आप अपने घर में ही विश्राम कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, हालचाल खुशी आपसे मालूम करती रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी हैं आप हमारे लिए। मंगलवार की सुबह है, खुशी आपके साथ है, और 9 जून की तारीख है दोस्तों। समय हुआ है 10:21, और खुशी हाजिर है आप सभी का फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला, जहां पर बातें होती हैं थोड़ी सी चटपटी। जी हाँ, एंड आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, हॉलीवुड के बारे में जानने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपकी हेल्थ के बारे में भी जानने को मिलेगा, और एंटरटेनमेंट यहाँ पर भरपूर है दोस्तों। आज की प्यारी सी पॉजिटिव थॉट के साथ हम करते हैं शो की शुरुआत। कहते हैं साथियों कि जब तक आप खुद पर बिलीव करते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जीत हमेशा पहले हमारे विश्वास में जन्म लेती है और बाद में हमारी जिंदगी में। जिंदगी में नजर आती है, इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, और हर दिन को एक नए हौसले के साथ शुरू कीजिए। और दोस्तों, बिना वजह बाहर मत जाइएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। एंड आज बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ भी है। केयरफुली जाइएगा, एंड मैं तो आपसे बोलूंगी कॉटन का गमछा आप हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि गर्मी में वो सर ढकने के काम आता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो उसको आप रखिए। एंड पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए, पानी पीते रहिए। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग हमारे जो है समय, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, हमारे प्यारे से साथी, वो क्या कर रहे हैं समय, अपने अपने कामों में व्यस्त है कि चलिए जल्दी से काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। वेरी गुड, ऐसे ही आप जल्दी जल्दी से काम करो, फिर उसके बाद आराम करना। और मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक चुनकर लेकर आई हूँ आज की मॉर्निंग, जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। तो इस गाने को सुनिएगा आप, श्रेया घोषाल, एआर रहमान जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। मैं बस लौट कर आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। जी हाँ दोस्तों, श्रेया घोषाल की बड़ी मधुर सी आवाज में प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सरी का नंबर वन रेडियो स्टेशन, जी हाँ, एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना बादशाह की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। तारीफें सुनना तो सभी को पसंद होता है दोस्तों, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, हर कोई चाहता है कि हमारी तारीफ सब करे, राइट ना। और ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना फ्रॉम द मूवी वीरे दी वेडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, करीना कपूर एंड साथ में सोनम कपूर जी बड़ी खूबसूरत नजर आई हैं। और चलिए दोस्तों कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, खूबसूरत संदेश भी आए हैं उनको भी क्विकली शामिल करते हैं। वक्त हुआ है 10:33 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ रहे हैं अलग अलग राज्य से। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, सबसे पहले दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मैसेज पहुंचाते हैं मोहम्मद यासीन अंजान जी, और कहते हैं आपको हमारा प्यार भरा आदाब आरजे जी, आपको भी आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है एमपी से, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, आदरणीय आरजी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया एन बाबू जी का मैसेज आया है, और कहते हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो खुशी जी। थैंक यू सो मच सर, हमारी भी यही आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स हैं, शुभकामनाएं हैं कि आपका भी हर पल खुशियों से भरा हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें ऑलवेज, क्योंकि खुश तो तभी रह पाएंगे ना जब हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, जब आप फिट होंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये यहाँ पर कूल वाला गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, उधर से ठंडी हवाएं इधर पहुंचा रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं हेलो आरजी खुशी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मैम, इतने प्यार से आप हाल चाल पूछेंगी ना बीमार इंसान भी ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी, और कहती हैं कि आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। और कहती हैं कि आज सोनम कपूर का बर्थडे है एंड साथ में अमीषा पटेल जी का भी बर्थडे है, तो हमारी तरफ से दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ट्राई की रिक्वेस्ट भेजी है मैम ने, कहती हैं खुशी जी मैम आपकी तबीयत कैसी है अभी? पहले से बेटर हूँ मैम, अभी तो काफ़ी अच्छी हो गई है, आप सबकी प्यार एंड ब्लेसिंग्स दुआओं की वजह से हम ठीक हो गए हैं। और ये कहती हैं कि मैम आप प्लीज़ पानी पीती रहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पानी की बॉटल मैंने दो अपने पास रखी हुई है। अरे वाह, थैंक यू सो मच, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं आप, थैंक यू। चलिए दोस्तों अभी को सुनते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक, उसकी बार लौट कर आएंगे, आप कहीं मत जाइए और अपने मैसेज हमें पहुंचाइएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896। सुबह सुबह जब हम खेतों में होते हैं ना, और वहां पर जो पेड़ों की हवाएं चलती हैं, बड़ा सुकून मिलता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं जब हमें छू कर जाती हैं तो एक अलग ही एहसास होता है। एंड चलो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर गाने सुनवाती हूँ, जब मैं बात करना शुरू करती हूँ ना तो रुकने का नाम नहीं लेती हूँ, मम्मा कहती हैं थोड़ा तो ब्रेक ले लिया करो खुशी। तो चलो अभी हम कुछ गाने सुनते हैं दोस्तों, उसकी बात फिर से आपसे गुफ्तगू करेंगे, एंड आज क्या कुछ स्पेशल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस बने रहिए अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और साथियों अपना ख्याल भी अच्छे से रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी एक प्यारा सा गाना, बहुत ही प्यारा सा, इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी ललिता कश्यप जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, सुनते हैं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। वक्त हुआ है 10:49 एंड दोस्तों, आज 9 जून की तारीख है और हम आज 9 जून को एक महान क्रांतिकारी आदिवासी जननायक और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत विरास मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है एंड उनको हम ऋणम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी शासन और आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया और उन्हें संगठित किया। बिरसा मुंडा जी ने उन उंगलान यानी महान जन क्रांतिकारी का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य था कि आदिवासी समाज को शोषण और अन्याय से मुक्ति मिले। उनके साहस, नेतृत्व और देश प्रेम ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। हालांकि वे 25 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, कुछ लोग उम्र से नहीं अपने कर्मों से महान बनते हैं। बिरसा मुंडा जी ने अपने छोटे से जीवन में जो साहस, संघर्ष और देशभक्ति दिखाई, वे आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, इतिहास के ऐसे वीरों को याद करना केवल सम्मान नहीं बल्कि उनसे प्रेरणा लेना भी है। और हम सभी महान जननायक बिरसा मुंडा जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। और एक देशभक्ति गीत सुनते हैं श्रोताओं, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा। नंबर है 9837896896। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
6: जन जन तक पहुंचा संदेश।
7: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ, मुस्कुराइएगा आप और श्रोताओं। अभी आपने भी पराग जी की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी केसरी से। एंड दोस्तों, जब हम अपने परिवार के साथ सुकून से रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे देश के वीर जवान सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। वे अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों से दूर रहते हैं, लेकिन कभी अपने कर्तव्य से दूर नहीं होते। उनका परिवार केवल उनका घर नहीं, परिवार पूरा देश होता है। दोस्तों, जो अपने घर की खुशियों को छोड़कर देश की खुशियों की रक्षा करते हैं, वही सच्चे नायक कहलाते हैं। उनके त्याग और समर्पण के सामने हमारा सर गर्व से झुक जाता है। और दोस्तों, घर से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, फिर भी देश की हिफाजत में भरपूर हैं। सलाम है उन वीर जवानों को जो भारत माँ के सच्चे सपूत और गौरव हैं। और आज हम अपने सभी सैनिकों, भाइयों और बहनों को दिल से धन्यवाद कहते हैं। आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आपकी वजह से हमारा तिरंगा गर्व से लहराता है, पूरे देश आपके साहस, समर्पण और बलिदान को सलाम करता है। दोस्तों, अगर आज आपके चेहरे पर मुस्कान है तो उसमें हमारे वीर जवानों की मेहनत और कुर्बानी का भी हिस्सा है। आइए दिल से उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। समय हुआ है 11:03। और हमारे पास लगातार खूबसूरत संदेश आए हैं, उनको भी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है रानी नांगल से रिहाना जी का, और रिहाना जी कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, और प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि आप सब भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने अपनों के साथ रहें। और ये कहती हैं कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल जी, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर ये ट्रैक मैंने सेलेक्ट किए हैं आज आप सभी के लिए, उनको मैं सुनवाऊंगी आपको। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, राम राम, नमस्कार आरजे खुशी जी, आपको भी जय श्री राम। और ये मैसेज पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी जी, ऋतिक और आदित्य कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है कांट रोड लदावली से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ मैम। ये मैसेज हमारे पास रुचि महेश्वरी का आया है, एंड साथ में वैदिक महेश्वरी है मुरादाबाद से। और एक वॉइस नोट भी आया है, बड़ा स्वीट सा, उसको भी हम सुनने वाले हैं अपनी मधुर सी आवाज में, क्या पहुँचाया है सर ने। एंड एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर आरजी खुशी जी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें मिला है विकी सागर जी का मुरादाबाद से, और इन्होंने कहा है कि मैम मुझे गाना सुनना है, मुझसे शादी करोगी। ओ हो हो, विकी भैया आप तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, फिर ये गाना किन के लिए सुन रहे हैं? हाँ जोक्स ऑफ आर्ट, फिलहाल मजाक कर रही हूँ, इफ यू डोंट माइंड। एंड इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, एक प्यारा सा ट्रैक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है फ्रॉम द मूवी गदर 2 से, ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, बहुत प्यारा सा ट्रैक है। तो मैंने कहा आज की मॉर्निंग अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। और दोस्तों, मुझे आप बताइएगा अमीषा पटेल जी की डेब्यू मूवी कौन सी है? जी हाँ, अमीषा पटेल जी की डेब्यू मूवी कौन सी है, आप मुझे उस मूवी का नाम बताइएगा। अपना संदेश हमें पहुंचाइए, अपना मैसेज, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 98 378 96, ये हमारा प्यारा सा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना मैसेज पहुंचाइएगा। आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है श्रोताओं, तो अभी खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ। और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिएगा।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और आप जिनकी शादी नहीं हुई ना, वो तो शादी के ख्यालों में खो गए थे. लेकिन गाना बहुत ही प्यारा था, बहुत कमाल का ट्रैक. एंड इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी विकी सागर जी ने. टाइटल ट्रैक आपने अभी इंजॉय किया, मुझसे शादी करोगी, बहुत ही प्यारा सा गाना. एंड दोस्तों, सलमान खान साथ में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जी बहुत ही खूबसूरत नजर आए. फिल्म भी बहुत ही अच्छी थी. एंड लव भी है, नटखटपन भी है. एंड बहुत ही प्यारी सी फिल्म है. एंड हंसाने वाली मूवी भी है, कॉमेडी भी है इस फिल्म में. मैंने ये फिल्म देखी है 2 बार, आई रिमेम्बर, बहुत अच्छी है. और दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत संदेश आए हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं. और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आज. जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड क्यूज यहाँ पर आपसे एक सवाल करने वाले हैं. आप मुझे बताएं कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल जी ने किस फिल्म से अपने डेब्यू किया था. जी हाँ, उन्होंने कौन सी फिल्म से डेब्यू किया था, आप मुझे बताएं. मैं ऑप्शन भी आपको दे रही हूँ. ऑप्शन ए गदर, एक प्रेम कथा. एंड ऑप्शन बी कहो ना प्यार है. ऑप्शन सी हमराज. बताएगा कौन से फिल्म से अमीषा पटेल जी ने डेब्यू किया था.

0: दोस्तों, आज अमीषा पटेल जी का बर्थडे है, तो उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था? सही जवाब पहुंचाइए अपना, और हमारे पास बहुत सारे जवाब भी आ रहे हैं बैक टू बैक, उनको भी मैं क्विकली शामिल करूंगी। एक वॉइस नोट हमारे पास आया है, तो चलिए उनको सुन लेते हैं। आज की सुबह क्या पहुंचाते हैं सर बिना किसी देरी के?
1: क्लासिक रिकॉर्ड और बेमिसाल नेतृत्व के 12 साल, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास, 12 साल तरक्की और गौरव और विश्वास के। जी हाँ, आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने और देश के इतिहास में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने पर समस्त देशवासियों को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सशक्त नेतृत्व, समृद्ध भारत और निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर। नमस्कार, राधे राधे। सुन रहे हैं आप FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम मॉर्निंग मसाला, आरजी खुशी के साथ। पे आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पाक बुड़ा। से सुनते रहिए FM मुरादाबाद, गुनगुनाते रहिए, बजाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे भूपी शर्मा जी। थैंक यू सो मच, आपने अपना वॉइस नोट पहुंचाया है और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है और पहचान भी बन गई है आपकी। बहुत सारे लिसनर्स बोलते हैं अच्छा वही भूपी शर्मा जी जो अपना वॉइस नोट पहुंचाते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि दोस्तों हमारी जो आवाज़ होती है ना, ये मैजिकल होती है, और इतनी प्यारी सी आवाज़ दी है, तो मैंने कहा आप पीछे क्यों रहें, आप भी अपनी वॉइस नोट, अपना प्यारा सा कुछ थॉट्स जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इजीली। बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है।

0: और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लगातार, एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है आजाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद शारिक अली जी का, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं इरशाद अंसारी जी। कहते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन सर। और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। लेकिन सूरज मध्यम नहीं है सर, बहुत हाई फाई है, इतने ज्यादा है ना कि इंसान बाहर निकलते वक्त भी सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है कि बाहर जाए या ना जाए, इतनी भयंकर गर्मी है। और इस गर्मी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छाता लगा के जाइएगा, गॉगल्स भी लगाइए, अपनी आंखों को सेफ कीजिए, और हाँ फ्रूट्स भी खाइए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का, साथ में रंजीत कौर हैं, जयप्रकाश राहुल हैं, प्रियंका हैं, मन्नत हैं, गुरप्रीत जी हैं, और गुरु शब्द सिंह राहुल जी का भी मैसेज हमारे पास आया है। और सर हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है आरजी खुशी सिस्टर जी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं, गर्मी बारिश हो या सर्दी या कोई भी मौसम, हम घर पर नहीं बैठे ही रह सकते हैं। मैं इस टाइम भी आपका प्रोग्राम खेतों पर एंजॉय कर रहा हूँ, खेत पर ट्वेल चल रहा है, गन्ने की खेती की सिंचाई हो रही है, और मैंने सिर पर गमछा बांध रखा है ताकि धूप से बचाव के लिए, और मेरे साथ आप सबकी दुआएं ब्लेसिंग्स हैं। हाँ जी बिल्कुल है सर, और ये कहते हैं कि अमार सके की मौत उसे जो औरों के लिए जीता है, अजीत कसाना जी का मैसेज आया है, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। हाँ जी ये बस सभी के मैं अभी मैसेज आकर शामिल करने वाली हूँ दोस्तों। अभी कुछ गीत यहाँ पर सुनिएगा, बस बहुत प्यारे प्यारे ट्रैक आज की सुबह हमने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं आज की मॉर्निंग। तो चलिए सुनिएगा एक खूबसूरत सा गाना, बहुत ही प्यारा सा है, फ्रॉम द मूवी हमराज से, बहुत प्यारा ट्रैक आप सभी के लिए, उदित नारायण जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। तो बिना किसी देरी के इसको सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, आपसे करेंगे और भी ज्यादा गुफ्तगू।
1: समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
2: जी हाँ,
3: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

दोस्तों ये सूरज अभी मध्यम नहीं हो रहा है, सूरज बहुत हाई फाई है अभी, बहुत ज्यादा कड़क गर्मी है बाहर। और आप सभी का अगेन वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, खुशी है आपके साथ। अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना सोनू निगम साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज, और इस खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी सैयद शारिकरी जी ने। और दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मैंने आपसे आज की सुबह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आज अमीषा पटेल जी का बर्थडे है, तो आपसे मैंने मालूम किया था आप बताइए उनकी पहली फिल्म बॉलीवुड की, हाँ जी पहली फिल्म कौन सी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। और हमारे सभी श्रोताओं के यहाँ पर जवाब आए हैं, वाह दोस्तों क्या बात है, आज तो मेरे सभी श्रोताओं ने एकदम बॉलीवुड एक्सपर्ट निकले। मतलब अमीषा पटेल जी के डेब्यू से जुड़ा सवाल था और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आप सभी को दिल से ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं। आपका प्यार, आपके मैसेज और आपकी शानदार भागीदारी ही हमारी शो की असली ताकत है। ऐसे ही जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सवाल का जवाब इसी उत्साह के साथ देते रहिए। और उनके नाम भी तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, वो हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो आप यार। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर पहुंचाया था अजीत कसाना जी ने, फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है, एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। नेक्स्ट हमारे पास सही आंसर पहुंचाया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। हरिओम महेश्वरी जी ने मैसेज पहुंचाया है मुरादाबाद से, और इन्होंने राइट आंसर पहुंचाया है अमीषा पटेल जी की फर्स्ट मूवी है कहो ना प्यार है, हाँ जी थैंक यू सो मच सर। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हम इसको सुनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, मैडम जी को हमारा नमस्कार, हम सभी लोग आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमा शंकर सिंह जी, साथ में अवंतिका सिंह है, अर्चित सिंह है, एंड ये मैसेज हमें मिला है रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और इन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स के यहाँ पर हमें भेजे हुए हैं, फ्लावर्स भेजे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, येलो कलर के हैं, लाइट पिंक कलर है, वाओ इन्हें देखकर बड़ा मतलब आंखों को सुकून मिल रहा है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जीवन में सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें एक दूसरे की इज्जत और भरोसा हो, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं। बबली अंजान जी का मैसेज आया, गीता कश्यप जी का, ओहो हो थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज पहुंचाया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास संदेश आया है, हेलो खुशी मैम गुड मॉर्निंग, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी का मैसेज हमारे पास आया है, और इन्होंने पूरी फैमिली इनकी सुन रही है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, अमीषा पटेल जी की फर्स्ट मूवी है कहो ना प्यार है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी, थैंक यू। ललिता कश्यप जी का भी राइट आंसर आया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम टीना फ्रॉम कुंदनपुर लाइन पर मुरादाबाद से। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बिल्कुल ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे टीना, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत सारे संदेश और भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल करूंगी, लेकिन कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक का भी टाइम हो गया है, उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे और गुफ्तगू करेंगे। और एक प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, सोनम कपूर जी का भी आज बर्थडे है दोस्तों, और उन्हीं के ऊपर एक फिल्माया गया ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा है, तो इसको सुनिएगा फ्रॉम द मूवी प्रेम रतन धन पायो से।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
11: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
12: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
11: पर पापा।
12: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
13: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
14: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
15: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
14: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
15: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
14: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
16: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, वक्त हुआ है 11:54। एंड दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षिका की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ये साबित करती है कि अगर इरादे नेक हो तो एक इंसान भी कई जिंदगियां बदल सकता है। हरियाणा के हिसार की शिक्षिका सुमन मलिक पिछले कई महीनों से ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही थी। स्कूल की छुट्टियों के बाद वे अपना समय इन बच्चों को पढ़ाने में लगाती हैं। इतना ही नहीं, वे बच्चों को कॉपी, पेंसिल और भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराती हैं। सुमन मलिक जी का मानना है कि शिक्षा किसी सुविधा का नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। शायद यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि समाज बदलने के लिए बहुत बड़े साधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव की शुरुआत एक अच्छे विचार और नेक कदम से होती है। और दोस्तों, आज की सकारात्मक सीख अगर आप किसी एक बच्चे की ज़िंदगी में ज्ञान का दीप जला देते हैं तो आप केवल एक जीवन नहीं बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों का भविष्य रोशन कर देते हैं। याद रखिए, अच्छे लोग दुनिया नहीं बदलते, लेकिन वे उन लोगों की दुनिया ज़रूर बदल देते हैं जिनकी मदद करते हैं। और दोस्तों, सुमन मलिक जी जैसी प्रेरणादायक हस्तियों को हमारा सलाम, जो बिना किसी शोर शराबे के समाज में उम्मीद की नई रोशनी जगा रही हैं। और दोस्तों, आप भी किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। देखिएगा, दिल से कितना सुकून मिलता है। कोई अगर महंगा तोहफा देना तो वो खुशी नहीं मिलती है, जब किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर हम प्यारी सी स्माइल, जब वो मुस्कुराते हैं, जब हम उनकी कुछ भी मदद करते हैं और जब वो हमें प्यार से ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुराते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो दोस्तों वो ना सबसे अनमोल तोहफा होता है, सबसे अनमोल गिफ्ट होता है। और आपको आसपास कोई ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने इस काबिल हमें बनाया है। एंड थैंक यू कहना चाहिए ऊपर वाले का हमेशा और अपने पेरेंट्स का भी। और यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गी सैनी जी का कल्याणपुर मुरादाबाद से, और ये कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आपको भी गुड मॉर्निंग सर, जय श्री राम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हाय मैम गुड मॉर्निंग, रामपुर से सना मलिक का साथ में की दोस्त भी हैं इमरा, इन्होंने नाम लिखा है इरम, ओके इरम पाशा। साथ में इन्होंने कहा है कि मैम मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल, हम ट्राई करेंगे। और इन्होंने राइट आंसर भी दिया है, अमीषा पटेल जी की फर्स्ट मूवी है कहो ना प्यार है। अरे वाह, क्या बात है भाई, लड़की फिल्में देखने की शौकीन है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, अच्छे हैं। और ये मैसेज पहुंचाते हैं हमें नईमूल अकरम जी सिरसवा दोराहा से, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। इन्होंने बताया है फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, खबर ना थी सुबह की ना शाम का ठिकाना था, खबर ना थी सुबह की ना शाम का ठिकाना था, चाहत थी तितली के साथ रहने की, लेकिन खुशी दे दिल आपका दीवाना था। हाय दी, केम छो? मैं ठीक हूँ भाई, इतना प्यारा सा मैसेज लिखा है आपने, बहुत प्यारी लाइनें हैं आपकी संजो, थैंक यू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमारे पास रिदा का आया है मुरादाबाद से, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने अपने खूबसूरत मैसेज पहुंचाए और जब आप सब अपने संदेश पहुंचाते हैं तो इस शो में चार चांद लग जाते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं अब चलती हूँ, मिलूंगी आपसे 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और हेल्दी फूड खाइए। मैं आपसे कहती हूँ कि लाइट भोजन खाइए लेकिन हेल्दी खाइए, क्योंकि हल्का खाना गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइएगा, ये हैवी रहता है और गर्मी में ये इरिटेटिंग भी कर देता है, मतलब बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पिंपल्स फेस पर निकल जाते हैं, पेट भी ख़राब हो जाता है अगर आप ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं। ज़्यादा ऑयली खाने से आपको बचना है, ऑयली ज़्यादा फूड नहीं लेना है आपको, जैसे लाइक सुबह सुबह हैवी पराठा हो गया आलू का या फिर कचौड़ियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है इस समय, आपको लाइट खाना खाना है। आप डाइट में अभी दोपहर में लंच में आप खीरी का रायता ले सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के रायते आप बना सकते हैं एंड छाछ और दाल, हरी सब्जियाँ, रोटी, चावल, इन सब का भरपूर आनंद उठाइए। खरबूजा, तरबूज, लीची, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो भी आ गए मार्केट में, उन सब का लुत्फ़ उठाइए और एफएम मुरादाबाद 89.6 को सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। जाने के बताए आपको, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, दिल करता है मैं आपसे और बातें करूं लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता है और दोस्तों जब अगर हम चाहेंगे नहीं तो रिटर्न कैसे आएंगे, है ना। तो अपना ख्याल रखो, मैं मिलूंगी आपसे, बस यूं ही मुस्कुराते रहो। बाय बाय।
1: प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते हैं। और आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों के बारे में। कई घरों में ये बात अभी भी नहीं है और कही जाती है कि यह टीका जरूरी नहीं है और कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं तो भैया व्हाट्सएप के जरूर ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिससे पूरे घर में असमंजस पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चे का भविष्य किसी फ्रॉड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हम सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भरोसा हमें करना चाहिए। आज हमारे साथ टीकन देवी है जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती है और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुँचेगी ये कहानी। टीकन भाभी आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी नई दवाई, तकनीकी या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए कि एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक थकान और एक जो सुन सुनाकर जमा हुई है, उस घर में आपको ले चलता हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं आप। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और यही कागज मुझे पकड़वा कर चली गई है ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। यह कागज जरा अलग है। स्कूल के आशा दीदी बता रही थी कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लग। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हारे पति तो दूर प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV क्या है जो अभी इसका नाम आपने लिया है, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो, और कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर होगा, अभी तो बच्चे भी छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर भी वीडियो भेज दिया है, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा था बांझ हो जाएंगी बेटियां। किसकी सुनूं, ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना हो गया है।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा था, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए हैं, अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत है, हम डॉक्टर थोड़ी हैं।
0: सुनीता तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही तो पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस सूत्र के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं माना जाता। हमारे पास, हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री है स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल है। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल, और इसके लिए आज हम दोनों सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
0: नमस्कार RJ खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके, वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
1: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24% 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
2: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
0: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है, और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
1: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गवा देते हैं, जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
2: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी खुशी। बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
2: यानी यह सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
1: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कैलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
0: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से, और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
2: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
3: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
4: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है। उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अनु जी?
3: बिल्कुल, जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
5: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
4: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
6: अब देखो, मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
7: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
4: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
2: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी है आरजे खुशी। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
1: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
0: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
2: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
0: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा। बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
2: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
1: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आवर कहते हैं।
2: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
0: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
1: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, ये बच्चे की पहली सुरक्षा है।
2: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
1: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
0: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
2: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
2: गर्मी में पानी भी नहीं?
0: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
2: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
1: हाँ, रोना भूख नहीं होता, बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
2: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
1: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभाल संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
0: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है, और चूँकि देखभाल शामिल हो सकता है, नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
2: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
0: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
1: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
2: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
0: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
2: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
1: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
2: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
0: सच्चाई ये है आरजे खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
2: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है, तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
1: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
2: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
1: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
2: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
0: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
2: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
0: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
1: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
0: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
1: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती है।
2: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
0: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
1: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
2: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
8: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करे।
2: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
8: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
8: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
9: सेहत सही तो लाभ गई।
8: पहला दूध पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत। सेहत सही लाभ कई।

0: तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किससे पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़की

0: रोगियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। यानी पैसा नहीं होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निःशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है।

0: ये वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
0: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा। किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
0: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
0: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
2: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
0: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
0: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यू विन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
0: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे ही राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
0: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जाँच के बारे में पूछे, वह हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है? अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
0: सही, और ये सिर्फ

0: बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
1: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
2: और मेरी तरफ से मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही सेहत सही लाभकारी। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। 7, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
1: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
2: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आस पास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती हैं। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ओआरएस भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ओआरएस क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ओआरएस बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ओआरएस बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ओआरएस का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ओआरएस दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी हवा मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं, तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
1: हेलो अनन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
0: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट?
1: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
0: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों आज हर हाथ में मोबाइल है लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है। घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी है, ससुर बैठे हैं या मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल के आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: मुरादाबाद। वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और के आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारे यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम, आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
1: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लांट हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ, हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप देख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पर आप बात कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाएं, एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
1: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
1: हैबिट हो गई है। और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झांकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
1: राइट
0: ना, कहीं है ना,
1: तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगे, मतलब क्या करना चाहोगे?
1: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको दिल्ली, मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती हैं, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूं लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में, ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फैमिली को, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो। मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना करते, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज, फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल

रेखा हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में आपके ही मचाइए। सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए। वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम, एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा, ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है, और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं। थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी, अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना, क्यों कुमकुम सही कहा मैंने। हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम।
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: आजा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
10: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा, तुम भी ना तोड़ देना।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
4: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
6: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
5: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
6: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में, और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है, और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे, आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहते हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं। और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में।
1: हाँ,
0: वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल।

0: और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी।
1: बिल्कुल,
0: आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारे जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए, जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए। सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।

बेहतरीन गीत यार, कसम से इतने बेहतरीन गीत जब आप रेडियो पे सुनते हैं तो मतलब दिन हो या रात दोनों ही खूबसूरत हो जाते हैं। फिलहाल खूबसूरत तो अब आपका और मेरा साथ होने वाला है। हाँ जी, कैसे हालचाल हैं आप सभी को? सबसे पहले आरजे आनंद का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मेनिका जी, की हालचाल हैं आपके? दोस्तों, आपसे मुखातिब होने का मौका जब भी मिलता है तो हम ये मौका छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये वो खूबसूरत मौका है जब आपके साथ ढेर सारी लाइव बातचीत होती है, क्योंकि ये वो फोन इन प्रोग्राम है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। हमें भी उतना ही बेसब्री से इंतजार होता है। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, सारे हमारे श्रोता अपने फोन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है फोन उठाना है और नंबर डायल करना है। दोस्तों, मेरा नाम आरजे आनंद है। वैसे तो आप मुझे सुबह में सुनते हैं, लेकिन अभी खुशी थोड़े काम से बाहर गई है तो मुझे लगा ये मौका मेरे पास है आपसे ढेर सारी बातचीत करने का और बहुत सारी गुफ्तगू करने का। तो बिना किसी देरी के मैं तो भैया भागते दौड़ते स्टेशन पहुंच गया हूँ। आई नो गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं श्रोताओं, आप इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए। बाकी अगर आप मेरे साथ अब जुड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ। और वैसे तो मैं देखिए कोई शायर नहीं हूँ, ना ही मुझे लिखने का इतना खास शौक है, लेकिन जब हाजिरी मैंने लगा ही दी तो कुछ खास चीज़ तो होनी चाहिए। कहते हैं हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप जैसे दोस्तों का अगर साथ मिलेगा तो आरजे आनंद की ये महफिल भी रौनकों से भर जाएगी, रौनकों से सज जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि महफिल रौनकों से सज जाए, आपकी बातों से सज जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है और हमें फटाक से नंबर लगाना है। हमारा हमें फोन मिलाना है 9837896896। ये स्टूडियो का बहुत ही प्यारा सा नंबर है। इस नंबर पे आपको हमारे साथ जुड़ना है, बहुत ही प्यारा नंबर है, मैंने आपको नंबर बता दिया है। ये फोन इन प्रोग्राम है, एफएम मुरादाबाद से आप प्रसारित जो ये प्रोग्राम होता है आप सुनते हैं इसको 3 से 5 एक्सक्लूसिवली लाइव। हाँ जी, इस स्टेशन ऑफ द नेशन से प्रसारित होता है हर दोपहर को मंडे टू सैटरडे 3 से 5। चलिए श्रोताओं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना खास और बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। इस चिलचिलाती धूप में आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। अगर बहुत ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट काम नहीं है तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए इस गर्मी में पानी की बॉटल अपने साथ रखें। काम करते हैं, बेहतरीन शुरुआत करते हैं एक प्रोग्राम की खूबसूरत गीत से। एक खूबसूरत सा गीत निकाल रहा हूँ, इस गीत से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जब तक आपके कॉल्स आते हैं तब तक आप मेरी पसंद का गीत सुनिए, उसके बाद तो आपकी पसंद की गीत बैक टू बैक बजेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप मुझे कॉल करिए 9837896896, ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, आनंद आपके साथ रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल। एक बेहतरीन सा गाना मेरी पसंद का एंजॉय कीजिए, कुमार शानू साधना सरगम की आवाज, एफएम मुरादाबाद पे सुन रहे हैं आप, आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: एक बहुत ही बेहतरीन गीत अभी आप एंजॉय कर रहे थे, कुमार शानू एंड साधना सरगम की आवाजों में। बहुत ही प्यारा गाना था और सच बताऊं तो मूवी भी बहुत अच्छी है यार। हीरो हिंदुस्तानी 1998 में फिल्म आई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म और बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म में। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है हेलो फरमाइश। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 3:15 और इस वक्त आप आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश में। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी आपको बात करनी है, वॉट एवर, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल कीजिएगा 9837896896। ट्यूजडे का दिन है आज, यानी मंगलवार की चिलचिलाती से दोपहर, जहां पर आप ही के गाने ना बहुत सुकून एंड ठंडक देने वाले हैं दोस्तों, तो फोन करते रहो यार। एक कॉलर जुड़ गए मेरे साथ, हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ फोन लाइन पे। तो बिना किसी देरी के आइए जरा अपने पहले कॉलर से गुफ्तगू करते हैं, कौन कहां से जुड़े हैं और क्या है उनकी पसंद का पहला गीत, कहां से जुड़े हैं ये भी जरूरी जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आनंद भाई, राम राम।
0: आपको भी भैया राम राम जी, क्या हाल चाल है, नाम बताएं अपने जरा।
1: मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, लाइन पार मुरादाबाद से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, कार्तिक गुप्ता लाइन पार से बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। कार्तिक क्या करते हो, कैसे चल रहे है लाइफ?
1: बस सही चल रही है, गर्मी एंजॉय कर रहे हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा कहाँ रहते हो लाइन पार में?
1: लाइन पार में इंटर कॉलेज, यहाँ रहता हूँ मैं,
0: कन्या इंटर कॉलेज। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ गर्मियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: गर्मी एंजॉय, हर सीजन एंजॉय करना चाहिए,
0: करना तो चाहिए भाई, लेकिन ये जो गर्मी है ये एंजॉय वाली नहीं है, इसे तो बस ऐसा लग रहा है जल्दी से कट जाए यार, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है।
1: ये तो है,
0: है ना, मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि तुम छत पे भी नहीं जा पाओगे भाई चप्पले उतारे बिना, मतलब ऐसा लगेगा भाई पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं।
1: पता है मम्मी कपड़े उतारने भेजती है छत पे, ये लगता है कहाँ आ गया।
0: हाँ वही वही वही वही, और स्पेशली अगर आप 5 बजे भी छत पे जाओगे ना टेरेस के ऊपर, तो भी गर्म रहती है छतें।
1: यही बात सही है।
0: अब ये बताओ इस गर्मी में जरा अपना ध्यान कैसे रखते हो, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फॉलो करते हो आपकी, भैया हमारा शरीर थोड़ा ठंडा रहेगा, ताजा तरीन रहेगा, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, ये चीज करते हैं तो?
1: मैं सुबह चाय पीता हूँ, उसके बाद बस।
0: ओ भाई भाई, इतनी गर्मी में लड़का चाय पी रहा है भाई साहब, तुम्हारा मुझे लगता है चाय से बहुत ज्यादा इश्क है तुम्हें। वैसे आप करते क्या हो, स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो या क्या करते हो?
1: स्टूडेंट ही हूं, 11th क्लास में।
0: अरे बाप रे, 11 के स्टूडेंट हो, माय गॉड यार, आवाज से बड़ी मैच्योरिटी लग रही है, मुझे लग रहा है कोई मतलब बड़े भाई साहब बात कर रहे होंगे यार।
1: अब मैं क्या बताऊं, आवाज इतनी भारी है।
0: कोई बात नहीं कार्तिक, बहुत अच्छा लग रहा है, और स्टेशन हमारा सुनते रहते हो, अच्छा लगते हैं गाने, बढ़िया बढ़िया।
1: हाँ मैं तो काफी टाइम हो गया सुनते सुनते।
0: चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब स्कूल खुलने ही वाले हैं ना?
1: हाँ 1 जुलाई से खुल जाएंगे।
0: ग्रेट, चलो बहुत ही बढ़िया। इस बार कौन सी क्लास में आए हो?
1: 12th
0: में आए हो, क्या बात है, इस बार जम के पढ़ाई करनी है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कार्तिक बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में, बड़ा आनंद आया, मुझे उम्मीद है कि आपको फोन लगाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी शायद। क्या बात है, वेरी नाइस, यू आर वेरी लकी। तुम लकी हो मेरे भाई, आपको नहीं पता आपके पीछे बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, बट वो ये ना हर किसी का नहीं लग पाता है कॉल। कार्तिक थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ यार ये तो है कार्तिक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज इस प्रोग्राम में आप क्या सुनेंगे, शो के पहले कॉलर हैं आप, क्या है आपकी पसंद का गाना?
1: गाना है गब्बर सिंह की मूवी है और तेरी मेरी कहानी सॉन्ग है।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब चिलचिलाती गर्मी में बारिशों का पानी।
1: बारिश तो पड़ रही है, हम सोच रहे सॉन्ग सुन के मजे ले रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा गाना है। चलो कार्तिक तुम्हारे साथ हम भी और हमारे श्रोता भी एंजॉय करेंगे, ठीक है? बाय बाय बाय ब्रो, बाय, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग कार्तिक गुप्ता। लाइन पार से जुड़े थे कार्तिक गुप्ता, इनकी पहली कॉल हो गई है शॉर्टलिस्ट, अगली कॉल आपकी हो सकती है। इनकी पसंद का गाना तेरी मेरी कहानी, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, अरिजीत सिंह साथ में, पलक मुच्छल देंगी साथ। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रॉम द फिल्म गब्बर इज बैक।

0: ये गबर इज बैक का गाना अरिजीत सिंह ने पलक मुच्छल ने साथ दिया, बहुत ही बेहतरीन गाना। हमारे पहले लकी कॉलर की रिक्वेस्ट पे भी हम सुन रहे थे। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे कॉलर जुड़े थे जिनकी रिक्वेस्ट पे ये गाना था। श्रोताओं, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 3:23 और प्रोग्राम चल रहा है आपका फेवरेट हेलो फरमाइश। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे और इस बार हमारे साथ कोई खास मेहमान भी आएंगे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। ऑफ कोर्स आप उनको हमेशा सुनते हो, अब वो स्पेशल नहीं रहे, आई नो।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।

0: दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है जी, आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आई नो आप गाड़ियों में भी हैं इस वक्त और गर्मी बहुत बाहर भयंकर हो रही है, तो अपनी एसी का जो रिमोट है भाई साहब अपने हाथ में रखें। अगर आप घर में हैं तो गाड़ियों में हैं तो एसी तो आपकी चली रही होगी। आई नो फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भैया, अगर आप हमें फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कॉल जल्दी से लगाइए, फटाफट से बटन घुमाइए पाजी, मतलब बटन दबाओ यार। 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। और अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए ज़रा उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक बात आ रही, सोचा आपसे कह दूँ। वो तो खैर आपने बहुत बार सुना होगा, तो मैंने सोचा आज मुझे मौका लगा है आपसे रूबरू होने का, आपके बीच में गुफ्तगू करने का, तो मैं भी कर देता हूँ कि भैया हाँ, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, दोस्ती तो एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं वो हजारों लाखों की तादाद में हैं और हमें सभी से दोस्ती है क्योंकि हमारे सारे दोस्त बहुत प्यारे हैं। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको तो इतने सारे लोग प्यार करते हैं, कहां तक आप उसे
0: आपको छोड़ के पूरी दुनिया प्यार करती है। सबसे मजे की बात यह है अखिल जी देखा आपने गाइस,
1: ये भाई साहब हर बात को एकदम कहते हैं ना पलटना, जैसे कहते हैं ना हर बात को एकदम
0: जिंदगी में आप सारी बातें भूल जाना, लेकिन अखिल जी की एक मैं आपको वो बता रहा हूँ, कहते हैं ना हर इंसान का एक मतलब एक पॉइंट होता है जिसे हम पकड़ सकते हैं, तो अखिल भाई हर बात पे हर दो मिनट में यूज करेंगे, कहते हैं ना ये मतलब एक जैसे होते ना तकिया कलाम बीच में, तो इनका ये तकिया कलाम है। मैंने बहुत बार नोटिस किया, आप भी देखना आज की इस कॉन्वर्सेशन में कितनी बार बोलेंगे, कोई अगर खाली बैठा है तो नोट कर सकता है, वैसे तो कोई खाली होगा नहीं, लेकिन देखते हैं। वेल अखिल भाई, जोक सा पार्ट चलता रहेगा, आप बताइए कैसे हालचाल है?
1: बहुत ही बढ़िया हालचाल है, गर्मी अच्छी खासी चल रही है बाहर।
0: बिल्कुल, और मेरी और आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है इस फोन इन प्रोग्राम के बीच। आई थिंक अभी बीते दिनों में तो हम लोग नहीं लाइव आए भैया साथ में,
1: ये बहुत टाइम बाद हम दोनों इस समय लाइव पे आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ एक श्रोता भी हैं जो बहुत देर से अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, भैया हमारी प्रतीक्षा जो है खत्म की जाए और हमें लाइव ऑन एयर किया जाए। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं, कौन कहाँ से जुड़े हैं, आपका स्वागत है हेलो फरमाइश में, कौन बात कर रहे हैं सर?
2: जी सर नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, नाम बताएं।
2: आपका पुराना दोस्त मोहसिन अंसारी यूपी बनारस से बात कर रहा हूं।
0: अरे वाह मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन शायद मेरी आपसे दूसरी मर्तबा बात हो रही है, राइट?
2: जी, दूसरी मर्तबा बात हो रही है क्योंकि आप हेलो फरमाइश में कभी कदार आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आई थिंक काफी लंबे अंतराल के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं दूसरे से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और आपका प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत ही लाजवाब।
0: अरे थैंक यू, शुक्रिया दोस्त, बहुत अच्छा लगा। यही चीजें जो हमें मोटिवेट करती हैं और हम कुछ और बेहतर से बेहतरीन करते हैं, और कभी कभी अनाउंसर की जो चेंजिंग हो जाती है उसमें और मजा आ जाता है जब तब्दीली होती है शोज में ना।
2: जी जी जी, और मैं यही चाहता हूँ कि सभी जगह आप भी आ जाइए, और खुशी जी का तो अंदाज ही लाजवाब है प्रोग्राम करने का, तो कभी कभी उनको भी छुट्टी मार लेना चाहिए क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मौका मिल जाए तो हम लोगों को मौका मिल जाए आपसे बात करने का।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बट एक बात है ना कि कभी कभी आदमी सोचता है तो बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाता है, कुछ कभी कभी समय साथ नहीं देता है, कभी कभी हम समय के साथ नहीं होते हैं, राइट? आज समय भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था, हमने सोचा लगे हाथ चलिए बात कर लेते हैं अपने श्रोताओं से।
2: फर्स्ट टाइम जब मैं रेडियो से मुरादाबाद से जुड़ा था तो फर्स्ट टाइम आप ही से बात हुआ था।
0: अरे वाह क्या बात है, आपको ये भी
2: उसके बाद से मैंने फिर मुरादाबाद छोड़ा नहीं, फिर मैं बराबर सुनता ही रहता हूँ और बात भी लेता रहती हूँ। मॉर्निंग मसाला जो आता है सुबह में,
0: जी जी जी जी,
2: वो जो भी प्रोग्राम लेके आते हैं खुशी जी ज्यादातर लेके आती हैं, तो उनका मैसेज पढ़ने का अंदाज और प्रोग्राम करने का अंदाज और जितनी जानकारी उसमें देते हैं
0: अच्छा अच्छा
2: बेहद पसंद आता है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि इसमें अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है ऐसे मुरादाबाद जो वहाँ का अपना चैनल है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, उससे पहले मैं भी आता हूँ एक अपनी छोटी सी पेशकश लेके, कभी मौका लगे तो जरूर सुनिएगा सुबह 9 से 10।
2: सुबह 9 से 10 वाले में भी सर आता हूँ, मगर उसका मुझे थोड़ा सी आप अगर जानकारी दे देते हैं तो मैं उसमें जुड़ जाऊंगा, कैसे उसमें जुड़ा जाता है।
0: साढ़े आठ बजे आप ट्यून इन कीजिए, आपको हमारी आवाज सुनाई देगी जिसमें हम ढेर सारी जानकारियां देते हैं आज के दिन से जुड़ी, क्या स्पेशल है, क्या कुछ खास है, क्या चल रहा है देश दुनिया में, तमाम जानकारियां आपको मिलती हैं उस प्रोग्राम के जरिए।
2: सर मैं प्रोग्राम सुनता हूँ पर उसमें जो श्रोताओं के मैसेज पढ़े जाते हैं तो वो मैसेज सर कैसे भेजा जाता है?
0: वो मैसेज जैसे आप यहाँ पर भेजते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिंपल सा अपना नाम टाइप कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए, फिर आपका मैसेज आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमारा सेगमेंट खुलेगा हम उसमें आपका मैसेज को शामिल करेगा।
2: क्योंकि सुबह का टाइम ज्यादातर आप ही प्रोग्राम लेकर आते हैं सर, प्रोग्राम सुनता हूँ मगर मैं रोजाना
0: चलिए बड़ी अच्छी बात
2: है, ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पाता।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए हमारे साथ अखिल जी भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप उनकी तरफ भी थोड़ा हेलो हाय पहुंचा दें, अपना हल्की से सरका दें हेलो अपना प्यारा सा। जी
1: नमस्कार, जी नमस्कार, कैसे हैं सर?
2: सर मैं बहुत ही मस्त हूँ, चकाचक हूँ, और जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं।
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज क्या फरमाइश है आपकी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: पहले तो दोनों लोगों को मैं थोड़ा सा इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी काशी पे आइए गंगा घाट पे दर्शन के लिए।
0: मैं तो आने वाला हूँ बनारस घूमने, मेरा तो अभी प्लान है,
1: बहुत जल्द
2: आएंगे। बिल्कुल आइए और मेरा नंबर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं।
0: देखिए अगर आपने यहाँ पर आपने नंबर बोला तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पूरी जनता ले लेगी और आप परेशान हो जाएंगे, फोन भी नहीं उठा पाएंगे।
2: आप नंबर बताएंगे नहीं ना, आपके फोन पे है तो आप नंबर ले लीजिए।
0: समझदार है आप, वेरी गुड।
2: जब भी आना रहेगा मैं थोड़ा सा जानकारी भी दे देता हूँ आपको।
0: जी
2: क्योंकि काशी पे यात्री जो आते हैं ना उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है यहाँ पे।
0: अच्छा ये भी बता, उससे पहले ये भी बता दीजिएगा वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वेदर कैसा है, मतलब गर्मी कैसी हो रही है वहाँ अभी?
2: गर्मी का मिजाज पूछे तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो 37-36 का चल रहा है।
0: ओहो
2: हाँ, काफी गर्मी है, दिन में निकलना नहीं होता क्योंकि इतना गर्मी है, शाम में ठंडक हो जाती है। और काशी का नजारा तो शाम में और सुबह में देखने के लायक है सर, बहुत ही मजा आता है।
1: तो आएंगे सर, आप ही को हम पकड़ेंगे और बहुत जल्दी वहाँ पे आके डुबकी भी लगाएंगे।
0: जरूर,
2: कोई दिक्कत नहीं सर, हम डुबकी तो बराबर लगाते हैं, गर्मी में तो हमको लगता है कि घर पे हम नहाते ही नहीं, ज्यादातर काशी से ही जाते
0: हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो आज मोहसिन जी आपने जो गाना है वो कौन सा बताया था, जो मैं चाहता हूँ हमारे लिसनर्स के साथ आप भी सुने और हमें भी सुनवाए।
2: अगर आपकी इजाजत हो तो दो कड़ी कड़ी गुनगुना
0: दें। अरे जरूर जरूर, बिल्कुल गुनगुनाइए जनाब।
2: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, कुछ दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए, यही गाना है सर, और आप दोनों लोग को डेडिकेट है।
0: जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बेहतरीन गाना है जी। चलिए नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच मोहसिन जी। ये मोहसिन का गाना आप सभी को बनाएगा बहुत ही बड़ा वाला दीवाना, हम दोनों भी दीवानगी करके आते हैं, आई मीन डांस करके आते हैं थोड़ा सा, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, आप इंजॉय कीजिए इस गाने को। दिल अपना तेरे लिए लाए, उदित नारायण साहब की आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आप इंजॉय करेंगे इस गाने को एंड साथ में अलका याग्निक जी देंगे साथ, इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करेंगे 9837896896, दिस इज स्टूडियो का नंबर। क्या नंबर था भैया ये मैं भूल गया, अभी तो मैंने बताया था, आप बताओ जरा।
1: 9837896896,
0: बस आपका टेस्ट ले रहा था मैं, वेरी गुड, अब आप पक्के वाले आरजे बन गए, अब आपको नंबर याद हो गया, मतलब बेहतरीन। चलो एंजॉय करो इस गाने को।

0: वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज पे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपने इतना अच्छा बोला कि मेरे को बाहर जाने का मन कर रहा है आपकी बात सुनते ही।
2: इतनी गर्मी में जाओगे कहाँ?
1: नहीं, आपको थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहिए था यार। मेरे को बड़ी शर्म आ रही है यार अखिल भैया, आपने यही सीखा है आपको? अब मेरी छत्रछाया में रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
2: मुझे लग रहा है तुम्हारी छत्रछाया में रहना पड़ेगा।
1: दोस्तों कहते हैं ना जली को राख कहते हैं, आग
2: जली को राख।
1: वाह, जली को आग कहते हैं और बुझी
2: को आग।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उल्टा उल्टा पड़ रहा है यार ये बंदा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मेरे दोस्त के पास नहीं है उसी को दिमाग कहते हैं।
2: ये बात तो बहुत सारी।
1: चलो गाइस, ऐसी मस्ती भरी बातें करते रहते हैं, जब दो लोग होते हैं तो कंपनी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैसे आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 3:40। ये है आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। इस प्रोग्राम में आज मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से भाई, हमेशा साथ निभाते हैं। मैं तो खैर, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अखिल भाई का साथ दे रहा हूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी नहीं का है। वैसे आज के लिए रात में भी आ रहे हैं आप लोगों से गुफ्तगू करने। हमने सुना है ये चोरी छिपे हमसे बिना बताए जो है आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है।
2: उस गुफ्तगू का अलग ही मजा है।
1: वाह, तो आप चाहते हैं कि उसमें सिर्फ मैं रहूं और मेरे श्रोता रहे?
2: बिल्कुल सही,
1: वेरी नाइस।
2: वही बिल्कुल वही मजा रहे जो हम दिन के समय में एक दूसरे की बातें सुन के समझ के करते हैं, वही एक आनंद सा रहे उसमें।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल आनंदित रहिए हमारे श्रोताओं के साथ और उन्हें भी आनंद वाला माहौल प्रकट कीजिएगा, हमें आपसे यही इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है। चलिए फिलहाल श्रोताओं, हमारी बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो प्रोग्राम जो है किसी और ट्रैक पे पहुंच जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, हमारे साथ एक और श्रोता साथी जुड़े हैं। कहां से कौन जुड़े हैं आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
3: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, अपना नाम बताएं।
3: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
1: जी हारून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आपके पीछे रेडियो तो नहीं चल रहा है, आवाज जो है सुनाई दे रही है रिपीट, तो रेडियो अगर चल रहा है तो उसे बंद कर दें।
3: चल तो नहीं रहा, कूलर जरूर चल रहा है यार।
1: अच्छा कूलर चल रहा है, देखिए गर्मियां हैं तो कूलर चला के रखिए, बहुत जरूरी है। जी जी बताइए अपने बारे में।
3: कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आप मध्य प्रदेश में कहाँ से जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ? आप मध्य प्रदेश में कहाँ से जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ? विदिशा से। अच्छा ओके ओके,
2: विदिशा तो बहुत ही सुंदर जगह।
1: आप मुझे ये बताएं, अरे वाह क्या बात है अखिल भाई, आप मुझे ये बताएं दोस्त, आप किस शहर का मौसम कैसा है फिलहाल? गर्मी है, बादल है, कैसा वेदर है?
3: मौसम अच्छा है, बादल हो गए हैं।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।
3: खुशनुमा मौसम है लेकिन गर्मी जरूर पड़ रही बादल के संग संग, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही। और आपके इधर मुरादाबाद में?
1: यहाँ तो सर अच्छा खासा टेम्परेचर है, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमें रेन अलर्ट मिल रहा है छाते के साथ, कि आज शायद यहाँ पे भी मॉनसून आ जाए। अच्छी बात है, अगर आ जाएगा तो फिर हम अपने छाते घर रख कर आए।
2: कुछ रिमझिम बारिश है,
3: लेकिन सबके लिए बारिश का इंतजार है, बारिश हो जाए।
1: जब बारिश चालू होगी तो फिर लोग बोलेंगे अब ये सूर्य देवता कहाँ छिपे हैं, बाहर निकालो इनको, बहुत बारिश हो गई।
3: जी जी जी।
1: अच्छा ये बताइए हारून जी, आप करते क्या है अपनी असल जिंदगी में, क्या करते हैं?
3: खेतीबाड़ी करते हैं, रेडियो का टॉप मनोरंजन कर लेते हैं।
1: बहुत ही बेहतरीन, खेतीबाड़ी आप करते हैं, खेतीबाड़ी में क्या चल रहा है, क्या लगाया हुआ है इस वक्त आपने?
3: अभी तो कुछ नहीं लगा हुआ है लेकिन बारिश के इंतजार कर रहे हैं।
1: अच्छा तो आप धान की रुपाई करेंगे? धान की या मक्का? अच्छा मक्का की रुपाई, अरे वाह बहुत बढ़िया, आपके यहाँ मक्का की खेती होती है?
3: नहीं लेकिन पिछले साल बोई थी मक्का और अगले साल भी मक्का बोएगी, पिछले साल सोयाबीन ने फट गया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे लगा आप लोग धान की रुपाई भी करते हैं शायद।
3: करते हैं, कम लोग करते हैं, हम इधर एक दो किलोमीटर पास में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
3: हाँ करने वाले तो करते, उतना मेहनत ज्यादा होती है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया लगा आपने इतनी दूर से फोन किया है। और आपको हमारे स्टेशन के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप सुनते हैं फोन इन प्रोग्राम्स?
3: जी फोन इन कार्यक्रम में जुड़ता हूँ मैं, एक हफ्ते में एक बार फोन लगाता हूँ आपको मुरादाबाद में। जैसा उसने किसी ने दिया है, एक हफ्ते में एक बार फोन लगा, मैंने ठीक है लगाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात है हारून जी, अगर आप ये चीज का जो है ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे श्रोता बहुत ही समझदार हैं और मैं चाहूंगा इसी समझदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आपका गाना भी सुनना चाहेंगे। कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के साथ?
3: गैर का सुनवा देना, अजय देवगन और रविंद्र टंडन वाली कुछ भी चला देना।
1: अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने जो है हमें कॉल मिलाया, आपका दिल से धन्यवाद सर।
2: इसे ही कहते हैं आनंद रिश्तों को,
3: बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई।
1: जी जी नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच। तो हारून जी जुड़े थे मध्य प्रदेश से, अखिल जी आप कुछ कह रहे थे?
2: यही कह रहा था कि इसे ही कहते हैं रिश्तों की मिठास, यही एक जिंदगी में आपकी एक असली दौलत है, जिस तरीके से कितने दूर दूर से हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं और उनके साथ इस तरीके से हमारा रिश्ता बना हुआ है।
1: वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात जानकर अखिल भैया, थैंक यू सो मच। श्रोताओं आप भी हमें फोन कर सकते हैं 9837896896। ये वो स्टेशन क्लॉक में अभी क्या वक्त हो रहा है स्टेशन क्लॉक में? वैसे
2: अभी हो रहा है 3:44,
1: यानी कि 3:44, आप भी फोन लगाओ।

0: तो दोस्तों वापस आ चुके हैं आपके अपने ही शो हेलो फरमाइश में। और ये कितना सुंदर गाना था, इतना अच्छा गाना था कि मेरा दिल चुरा लिया। तो बहुत ही बढ़िया था ये गाना, और इस बहाने सभी लोगों ने हमारे FM से भी हमारा दिल चुरा लिया है। अब हम नए अपने श्रोता से मिलते हैं, उनकी भी सुनते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो फरमाइश सर, कैसे हैं
1: जी? हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: शानू खान बोल रहा हूँ सर, मुरादाबाद से।
0: शानू खान जी, क्या करते हैं आप?
1: सैलून चलाता हूँ सर अपना।
0: सैलून चलाते हैं आप
1: जी।
0: तो आज जो है, क्या है आपकी फरमाइश और क्या आप सुनना चाहते हैं और किसके लिए सुनना चाहते हैं?
1: ऑल इंडिया के लिए सुनना चाहते हैं, सभी लोग लिसनर सुन रहे हैं आपको।
0: क्या बात है, क्या सुनना चाहते हैं शानू जी?
1: और इंतजार कर
0: मेरे नाल, मेरे दिल
1: में और इंतजार कर।
0: अच्छा अच्छा दिल में रहना और इंतजार कर, क्या बात है। ऐसा क्या है जो दिल में?
1: शाहिद कपूर और करीना कपूर हैं सर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, शाहिद कपूर और करीना कपूर हैं। आपकी, आप भी शाहिद कपूर हैं, आपके साथ हैं कोई करीना कपूर या नहीं? आपकी शादी हो चुकी है सर? सर तो चले गए हैं शर्मा के। चलिए सर की फरमाइश का इस गाने को सुनते हैं और दिल में रहते हैं और इंतजार करते हैं।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। थोड़ी सी देर के लिए मैं गया बाहर, बाहर से आया तुरंत, अंदर आया तो अखिल भैया ने काम निपटा दिया, मतलब दो कॉल्स ले भी लिए वेरी फास्ट। मतलब आपने हमारे श्रोताओं को बोर तो नहीं कर दिया था ना? वैसे मुझे उम्मीद है आप खुद इतने फनी आदमी है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल वो नहीं, क्या एक हमारे श्रोता थे जिनसे भी बात हुई थी, उनसे बस हमने इतना पूछा कि सर आप भी, क्योंकि वो शाहिद कपूर और करीना कपूर के बहुत ही
0: क्रेजी वाले फैन थे,
1: मतलब अच्छा। फैन उनके अच्छे हैं वो।
0: ऑलराइट,
1: तो हमने उनसे बस इतना पूछा कि आपके पास भी है क्या कोई करीना कपूर, आप जो किसी करीना कपूर के लिए आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। बेचारे इतने शर्मा गए कि एकदम फोन काट दिया गुस्से में।
0: ओके, फिर और कौन जुड़े?
1: अब हमारे साथ जुड़े थे करण पाल जी। करण पाल जी का बहुत ही, उन्होंने भी अपनी फरमाइश बताई, बहुत दूर से जुड़े हैं वो भी।
0: ओके,
1: मध्य प्रदेश से जुड़े थे।
0: ओके ओके ओके।
1: और उनकी फरमाइश थी, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से।
0: तो गाइज मैं तो गर्मा गर्म समोसे का लुफ्त उठा रहा हूँ, अखिल भाई जो है काम पे लगे हुए हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हुए पूरे एक एक अपडेट दे रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं आपके सामने लाइव, और मैं अपना जो है समोसे खा रहा हूँ। और आपकी आवाज़ आ रही है जिसने तक जा रही है, वो मेरा माइक इतना तगड़ा है ना, आपकी आवाज़ भी कैच कर रहा है। तो एक्चुअली ना आज एक बड़ा अच्छा फायदा हुआ है कि अखिल भाई ट्यूजडे को फास्ट रखते हैं और मैं जो हूँ पिछले छः, आज छठा बड़ा मंगलवार है, मैं एक भी नहीं रख पाया यार, पता नहीं क्यों। मतलब जब ये आते तब मुझे याद आता ओ भाई आज फास्ट है,
1: और हर बार इन्हें समोसा खाने को मिल रहा है।
0: हाँ यार, आज मेरी प्लेट में दो समोसे रखे हुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। एक इनका था बट इन्होंने बताया नहीं मेरा फास्ट है, मैंने कहा चलो भाई लॉटरी लग गई अपनी। तो मैं बिगेस्ट लवर समोसा लवर आए हैं, मतलब इस टाइम पे भली गर्मी कितनी हो रहा है समोसा खाना नहीं भूलते अपन, है ना, कभी कभी खा लेना चाहिए यार। बट यार एक प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत फहमी हूँ या आपका सोच रहा हूँ, ये कहीं रीना का तो नहीं है?
1: चलो अब जो भी है, जब भूख लग रही होती है ना तब ये नहीं सोचा था किसका क्या है
0: यार। नहीं, लेकिन हम सोचते हैं, हमें अपने प्यारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों का ख्याल है यार, आपको हमारा ख्याल नहीं आता तभी कुछ नहीं खिलवा रहे हो आजकल। हेलो फरमाइश, इनसे पूछ लेते हैं क्या खिलवाएंगे।
2: नमस्कार सर
0: जी, आपको भी नमस्कार, नाम बताएं साहब।
2: ये
0: अच्छा अच्छा जी सर, हमारी बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? हमारी बातें आपको बोरिंग तो नहीं लग रही है?
2: नहीं बहुत अच्छी लग रही है सर, बस ये है कि आपके लैंड पे आने में बहुत देर कर दी। मैं तो सोच रहा था पता नहीं मेरा फोन कर गया क्या हुआ, मैं ऐसा सोच रहा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, आप
2: उम्मीद है सहारा, उम्मीद है यार, उम्मीद है पे कायम है सारी कायनात, ये सोच के मैं फोन से सटा रहा शायद आप आवाज दे।
0: कहाँ से फोन किया है आपने?
2: मैं बिहार शरीफ जिला नालंदा बिहार से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं आप अभी भैया?
2: अनवर बिहारी, मैं फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ, छुट्टी पे घर आया हुआ हूँ।
0: क्या चल रहा है जॉब, क्या करते हैं आप?
2: मैं मारुति कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ।
0: अरे भैया बहुत
2: चेक करता हूँ और साथ में रेडियो सुनने का भी शौक।
0: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रेडियो से मोहब्बत, जो जो लोग होते हैं ना वो हर हाल में रेडियो सुनते हैं, फिर जिनको रेडियो से मोहब्बत होती है।
2: जी जी
0: बहुत बढ़िया, बहुत
2: 12 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह, वेरी
2: खुली खुलाई किताब है, इसे बच्चा भी सुन ले, बूढ़ा भी सुन ले, जवान भी सुन ले, इसे गजल भी है, गीत भी है, संगीत भी है, खबरें भी हैं, ड्रामे भी हैं, सेमिनार भी हैं, फवालिया भी हैं, क्या क्या खूबी रेडियो में जान चाहिए।
1: रेडियो एक ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में एक बार जरूर आती है किसी न किसी रूप में।
2: जी जी, जब मैं होस्ट हमारा तो रेडियो का ही जमा था, अब तो मैं मोबाइल इंटरनेट फेसबुक ये सब देखता हूँ।
0: लेकिन देखिए ना सर, इतनी सारी चीजें आने के बावजूद भी, इतनी चीजें आने के बावजूद भी रेडियो अभी भी चालू है, लोग सुनते हैं, मजे की बात ये है। अरे वाह, इरशाद इरशाद,
2: तुझसे अब और कुछ नहीं चाहिए मेरी उम्र, ये रेडियो की पुरानी यादें मैं पेश कर रहा हूँ।
0: जी जरूर,
2: जब आधे आधे घंटे तक रेडियो पे फरमाइश करने वालों का नाम लिया था। तुझसे अब और कुछ नहीं है, मुझे मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे, नया मौसम, मेरी आंखों की बिनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आंखों को फिर वही खाब पुराना ला दे।
1: बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया,
0: बहुत ही शानदार, मजेदार।
1: आपकी शायरी पे एक शायरी और याद आई,
0: ये अपना बैठे हुए करते रहते हैं, जरा सुनते हैं।
1: रिश्तों की खुशबू से महकता है जहाँ,
0: वाह,
1: वरना अकेलेपन में सोना लगता है आसमान।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आसमान के नीचे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो जहाँ से हम शो कर रहे हैं, और यहाँ से जो है आपको कुछ बोरिंग नहीं लगेगा।
2: शायरों को मस्त कर देता है तारीफ़ शेर अमीर, तो बोलतों का नशा ही हुआ हुआ।
0: अब गाना बताएं सर, इसी बात पे बहुत ही बेहतरीन बातें कर रहे हैं आप, आज क्या सुनेंगे प्रोग्राम में?
2: मुझे आप सुना दें तलत महमूद की आवाज में, फिल्म बाबुल का एक नगमा है, मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो खत्म कहानी हो गई, अरमानों का गुलशन उजड़ गया लो खत्म कहानी हो गई। और इस गीत के मुनासिबत से मैं एक दो शेर हाजिर करता हूँ। जी जी जी रूम में हर एक गम छुपा लगे है मुझे, हर एक रूम में हर एक गम छुपा लगे है मुझे, ये जिंदगी तो कोई बददुआ लगे है मुझे, चिराहों का जलना तो मुकद्दर है अजब से, मेरे दिल का चिराग है कि न जले न मुझे।
0: चलिए साहब आपका गीत सुनवाते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर
2: मैं अपने दोस्तों के साथ गीत सुनना चाहूंगा, हसीना मुंशी नजन शाही पूनम रजनी बसंती ममता रिजवान शबनम मुनिका रिंकी तिवारी तरन्नुम दीवान खुशी गजाला प्रेम खुशी अफरा सैयद ईरा मंसारी रानी अशरा पूजा दिशा अनिता रागा सुदीका श्री मीना शर्मा शाना शर्मा सितारा बेगम लक्ष्मी बेगम शमा सिंह मोहम्मद बेगम तबस्सुम सलमी गायत्री खालदा नाजिया शबन पिंकी जी सादी पवाना गणेश दास सरस्वती लाल योगेश जांगला आप है हमारे साथ और शेख जफर हसन साहब।
0: थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा बात करके। चलिए सर का गीत सुनेंगे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई एम श्योर आप भी हमें कॉल करने की बिल्कुल इसी चक्कर में है यार कि बस जल्दी से कॉल लग जाए, आनंद जी और अखिल जी से बात हो जाए।
3: मुझे तो एंड में शंकर महादेवन जी याद आ गए थे।
0: अरे वाह, सही कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
8: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
9: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
8: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
10: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: श्रोताओं वेलकम बैक। एक बार फिर से दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी जो है अपने पीक पर जा रही है और कहीं ना कहीं शाम होते होते गर्मी का जो ये असर है वो और ज्यादा देखने को मिलता है। जी अखिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: मैं तो यही कहूंगा कि भैया जितना पानी पियो उतना कम है।
0: बिल्कुल सही कहा। मतलब वैसे भी 2.5 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए पूरे दिन में। 10 से 12 गिलास आप अच्छे से पी सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए भी आजकल लोगों को अलार्म लगाने पड़ रहे हैं। मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप्स आ गई जो आपको बार बार ये याद दिलाएंगी कि अब आप पानी पीने का आपका टाइम आ गया है।
1: आपकी बॉडी में इतना पानी कम है, आप इसे लेवल करें।
0: ये भी हो सकता है यार, ये तो नहीं पता था मुझे। ये वाला ऐप कब आया वैसे? शायद अखिल भाई ने डाउनलोड करके इस्तेमाल किया है, इसीलिए इनको इतना अंदर का पूरा जो है कह सकते हैं उसकी सच्चाई पता है। ये उसके वो क्या बोलते हैं, अंदर हकीकत जानने के लिए घुस जाते हैं उस पूरे मैटर के अंदर क्या है।
1: सही कह रहे हो,
0: इसका निचोड़
1: बोतल लेके बैठे और हमारे को बता।
0: देखो यार, मैं पानी जरूरी है क्योंकि काम ही ऐसा है तो पानी पीना जरूरी है। खैर बातचीत तो चलती रहेगी और बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, श्रोताओं आप भी हमें फोन कर सकते हैं 9837896896 कॉल करें और बताएं आप भी अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। आइए आगे बढ़ेंगे, कॉलर जुड़े हैं। अखिल भाई जरा बात करें इनसे।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश,
1: कैसी हैं मैम आप?
2: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए सर, आप कैसे हो?
1: बढ़िया मैम। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं इस समय, ये भी बताइए हमें।
2: सर मैं ग्राम धनोपुरा पार्क बड़ा के पास में ही गाँव धनोपुरा वहाँ से बोल रही हूँ। सोना बहुत महंगा है इस समय। सोना जी,
0: आप कौन सी वाली सोना है, महंगी वाली सोना या फिर जो हम रात में सोते हैं वो वाली सोना? सोना कितना सोना है, सोने जैसे हमारे ये प्यारे कॉलर। एक वो डायलॉग भी है ना, मोना कहाँ है मेरा सोना, सुना है आपने? वो किसी फिल्म का तो डायलॉग है।
1: वो पता नहीं सोना मिला नहीं मिला, मगर मोना तो मिली गई थी।
0: नहीं मोना नहीं मिली हमें, हमारी सोना मिल गई। जी सोना जी, हमें आपका इंतजार था। बताइए आप कैसी
1: क्या
0: है?
1: करती हैं सोना
0: और
1: जी
0: क्या
1: आप?
0: करती है
2: तो
0: चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या क्या करती हैं, सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या बनाती हैं?
2: चाय बनती है।
0: हाँ तो वो ऐसे नहीं बनती, वो आप बनाती हैं?
2: आधी बनानी पड़ती है।
0: उसके बाद दोपहर में दोपहर में आप लंच बनाती हैं?
1: नाश्ता भी तो बनाती
0: है। नाश्ता भी बनाती है,
2: बनाना पड़ता है।
0: तो आपने कैसे कहा कुछ नहीं करते, बताइए कितनी गलत बात है। सब कुछ तो आप करती हैं मैम, ये तो गलत बात है।
1: इसलिए कह रहे हैं आनंद, क्योंकि ना इन्हें नाश्ता मिला है आपके हाथ का, ना ही लंच मिला है।
0: नहीं तो मैम के हाथ का तो बिल्कुल मिल जाएगा। मैम तो ऐसे मत बोलो, वो बिल्कुल बोल देंगे क्यों सोना मैम, ये कोई बहुत बड़ी बात है।
2: आप आइए सर, आपको जरूर नाश्ता कराएंगे।
0: हाँ जी देखा, बिल्कुल आप ऐसे मत बोलिए। सोना जी आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं?
2: समोसे भी खिलाएंगे। समोसे आपको पसंद है ना?
0: अरे बाप रे, इनको ये भी पता है। मैम मेरी तो आपसे पहली बार बात हो रही है शायद। अरे वाह क्या बात है, ये तो फिर मतलब
1: सोने पे सुहागा हो
0: गया। सोने पे वो मिथुन चक्रवर्ती जी याद आ गए। क्या बात आज तक नहीं पता चली क्या बात। लेकिन थैंक यू सो मच सोना जी, और सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
2: जी बहुत अच्छा चल रहा है।
0: आपको हमारे स्टेशन की कौन कौन से प्रोग्राम्स आप सुनती है जो आपको बहुत मजेदार लगते हैं, पसंद आते हैं?
2: 9 बजे
0: अच्छा अच्छा मोबाइल पे सुनती है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा हाँ। लगा हमें तो अपना समय भी
2: सुनती रहती हूँ पूरा दिन।
0: अच्छा अब समझ में आया, इसीलिए आप कुछ नहीं करती हैं, अब समझ गया मैं।
2: काम भी करती हूँ मैं, हेडफोन लगा लेती हूँ ना।
0: चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए इससे ना आपका

0: काम भी हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रही, और आपको गीत संगीत भी सुनने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया,
1: मुझे बचपन से ही शौक है रेडियो सुनने का।
0: बहुत ही अच्छा लगा हमें जानकर, बहुत ही बढ़िया। आप जैसे लोगों की वजह से रेडियो जिंदा है, क्यों अखिल भाई?
2: बिल्कुल सही,
0: ऐसे सच्चे
1: प्रेम। मेरी बात नहीं हो पाती थी पहले, मैं बहुत सोचती थी मैं पता ना कैसे बात कर लेती रेडियो पर, मगर आप जब आपसे 5-6 महीने से जब मैंने ये सुनना शुरू करा, मैं कई बार बात हो गई तो उसी मैम से होती रहती।
0: अच्छा अच्छा, फिर यकीन आ जाता है कि मेरी आवाज से कोई मशीन नहीं बोल रहे, ये इंसान ही बोल रहे। नहीं पहले ऐसा लगता होगा ना आपको मैम कि कौन से कंप्यूटर बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता था ये कौन से कार्टून बोल रहे हैं, इनसे ये बोलते कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। आज कौन सा गीत सुनेंगी सोना जी इस प्रोग्राम में? अच्छा, तो आपकी जनाब का चेहरा लाखों में एक है, ये तो हमें समझ आ रहा है, इसीलिए आप ये गाना सुनना चाह रही हैं। अभी बताइए उनका नाम क्या है
1: जी?
0: उनका नाम क्या है, सर का नाम क्या है?
1: किसका?
0: जी
2: जिस जनाब की आपने बात,
0: जिस जनाब की। हाँ एग्जैक्टली, ये लो, ये अपने जनाब, ये अपने हस्बैंड का नाम भूल गए, ये बताइए। अरे वाह क्या बात है। सोना मैम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और आप बहुत ही मुस्कुराती हैं, तो एकदम खुल के मुस्कुराती हैं, बहुत जरूरी है
2: ऐसी
0: मुस्कुराती
1: रही है। अच्छा
0: जरूरी है, बिल्कुल मैम, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, जाती रहती है ना। चलिए मैम, ये मोहम्मद अजीज की आवाज़ है, और साथ में अनुराधा पौडवाल जी भी हैं, बहुत प्यारा गीत आपके साथ हम भी सुनेंगे। चलिए मैम, ख्याल रखिए अपना, नमस्कार मैम, बाय बाय। थैंक यू मैम। ये जुड़ी थी सोना जी हमारे साथ। अगली बार अगर आप भी हमें फोन करें तो ये ना बोलें कि हम कुछ नहीं करते हैं, फिर हम आपको आपके काम गिनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई
2: बिल्कुल सही कहा,
0: कितने सारे काम गिना दिए हमने सोना जी को,
2: अब आप कुछ तो यही कर रहे हैं एक तरह से।
0: और हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं यार सबकी पसंद के, ये कोई आसान काम है? गाने ढूंढना, सर्च करना, अखिल भाई को फोन देना, माइक के बटन ऑन रखना, बहुत मेहनत लगती है ना। चलो आगे बढ़ते

0: फूल गुलाब का लाखों में हजारों में है चेहरा जनाब का, और मैं उन जनाब में से एक हूँ जिसका चेहरा बिल्कुल अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैंने दो बार शीशे में सुबह देखा था सनस्क्रीन लगाते हुए। अच्छा है, खुद की तारीफ करनी चाहिए या नहीं भैया?
1: बिल्कुल करनी चाहिए।
0: हाँ, आप नहीं कर रहे हो इसलिए मुझे थोड़े से कंजूस लग रहे हो।
1: दूसरे की तारीफ का भी एहसास नहीं होगा। जब तक खुद की तारीफ नहीं करोगे तब तक दूसरी की तारीफ का एहसास कैसे होगा?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, तारीफ पे तारीफ मिलती रही लेकिन आपसे वो तारीफ नहीं मिली
1: चाहिए थी
0: जो मिलनी चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अभी हम हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं क्या? आई डोंट नो, कोई कॉलर जुड़े थे लेकिन वो अभी भी जुड़े हैं। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो, रेडियो बेटा, रेडियो की वॉल्यूम कम करो। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना रेडियो कम कर लो, नहीं तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देगी। थोड़ा सा रेडियो से अलग हो जाओ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आप ठीक है? अपना नाम बताओ।
2: गुंजन।
0: कहाँ से फोन किया है इस वक्त आपने? आपने मंझोला से फोन किया है। अभी आप कितने बड़े हो, को क्या करते हो? अभी आप पढ़ाई करते हो?
2: हाँ।
0: कौन सी क्लास में हो? आपके पीछे कोई और बोल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अखिल भाई, क्या
1: आपने होमवर्क पूरा कर लिया अपना सारा? स्कूल का जो होमवर्क,
0: स्कूल खुलने वाले हैं ना,
1: स्कूल होमवर्क पूरा हो गया आपका गुंजन जी? मुझे लगता है आप गाना बताइए, आप गाना कौन सा सुनना चाहते
0: हैं? गाना सुनोगे? हेलो गुंजन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आई डोंट नो, कोई नेटवर्क इशू होगा। अगर आप मुझे दोबारा सुन रहे हैं तो गुंजन प्लीज फिर से कॉल कीजिएगा, लेकिन आप बच्चा नेटवर्क एरिया में आके फोन करिए। और आपका गाना हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा था। श्रोताओं, आप हमें फोन कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो की अभी घड़ी में 4:22 हो रहे हैं। एक अच्छा सा गाना हम सुनवाते हैं आपको हमारी पसंद का, और इस गाने के बाद देखते हैं कौन से हमारे प्यारे से श्रोता साथी जुड़ेंगे हमारे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। अखिल भैया, नंबर बताओ कौन सा है? आपने जो बोला वो आवाज बिल्कुल बाहर नहीं गई क्योंकि वो गेट ऑन कर दिया था दूसरी लड़की ने बिना पूछे।
1: 9837896896।
0: नीचे करके बोलना था, ये ऊपर करके क्यों बोल रही हूँ? कोई आपको पनिशमेंट दे रहा हूँ मैं?
1: मुझे लगता है तुमने नंबर बताने के लिए ही साथ में रखा हुआ
0: नहीं
1: है।
0: मैंने भैया को बोला आप नंबर बताओ, तो उन्होंने अपना जो है वो राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ करते हुए बोला है 9837896896। लग रहा था किसी को वाइब्रेशन दे रहे हैं। वाह, लोग अब किया है सही डायरेक्शन में। चलो दोस्तों, आप गाना सुनो।

0: बेहतरीन गाना है और इसी गाने के साथ मैं लूंगा जाने की इजाजत। खुशी ने दस्तक दे दी है, अब आप उनके साथ करेंगे ढेर सारी बातचीत। मैं आपसे लेता हूँ अब जाने की इजाजत, मिलूंगा जल्दी से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कल सुबह सवेरे 8 से 10 होगी मेरी आपकी बातचीत इस स्टेशन पे। आप कहीं मत जाइए, खुशी और अखिल जी के साथ एंजॉय करते रहिए अपने बेहतरीन और फेवरेट वाले गाने। सो फिलहाल अभी बस इतना ही कहूंगा, डैड अभी रेडियो पर आएंगे एड, इनको सुनो और फिर आगे बढ़ो। बाय।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: वैसे तो मैं जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे यहाँ के आरजेस ने रुकाया कि नहीं आप रुकिए, थोड़ा सा बातचीत करके तभी जाएंगे। तो मैंने कहा अब इतने प्यार से सारे लोग रुका रहे हैं तो वापस आ जाता हूँ। वो बात अलग है कि ये लोग सोच रहे कब बाहर भागे यहाँ से।
1: तुम साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तुम बिन हर मौसम वीरान लगता है।
0: अजी वाह, क्या कहने। बस इतना ही था, खत्म हो गया।
1: बस इतना ही।
0: अच्छा, तुम क्या था इस टाइम?
1: तुम साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है।
0: तुम साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है।
1: तुम बिन हर मौसम वीरान लगता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लाइन थी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया है आपकी लाइनें सुन के। हेलो, आरजे खुशी भी है यहाँ पर और प्राची भी हमारे साथ है और एक श्रोता भी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं, फिर हम लेंगे इजाजत। हेलो, फरमाइश, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं।
2: जी नमस्कार सर।
0: आपको भी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं।
2: शेख जफर हसन।
0: शेख, आपका नाम है शेख जफर हसन।
1: सर तीन तीन नाम आपके साथ एक साथ हैं।
2: गांव का नाम है हमारा बस्ती।
0: अच्छा,
2: जिला रोहतास।
0: अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते हैं जरा ये बताइए जफर साहब, क्या करते हैं?
2: तो मोबाइल है ना।
0: अच्छा अच्छा, और बताइए, आपने पहली बार फोन किया या पहले भी करते हैं? आपके पीछे कोई खास रहा है क्या? मुझे आवाज आ रही है
2: ये?
0: आपके पीछे खांसी की आवाज आ रही थी, हो सकता है कोई खास रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए आप मुझे, आज प्रोग्राम में आपकी पहली मर्तबा कॉल लगी, क्या सुनेंगे आज आप?
2: पहली बार लगी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है।
0: जी, कॉल लगी, क्या सुनेंगे आज आप?
2: पहली बार लगी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है।
0: जी
2: जी, महसूस हो रही, बहुत अच्छी अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ।
0: जी
2: बहुत अच्छी आवाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि किसी दूसरे विशेषण से बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि टॉप क्लास के है।
0: टॉप क्लास,
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
0: टॉप क्लास के तो अखिल जी बैठे हैं यहाँ पर, हम तो मिडिल क्लास के हैं।
2: रेडियो पर आवाज जैसे आती है, बहुत सारे नर्सों से आती है, तो एक और रही बात की एक पकड़ रहा है, किसी का आवाज अलग अलग होती है, लेकिन आपकी आवाज जो है मतलब यंग मैन बात पे तो लग रही, यंग मैन है आप, मगर
1: आज सुबह से आनंद जी कह ही रहे थे कि किसी ने तारीफ नहीं की और आज तो तारीफ भर के मिली आनंद।
2: आपको मुबारकबाद देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, मैं आपकी बातों से जो है बहुत प्रफुल्लित हो गया हूँ। बहुत अच्छा आपने बोला, आज आपको क्या सुनवाए, इसी खुशी में हम नाचना चाहते हैं सरकार।
2: ना, तो सुनाने से पहले आपको हमारी पूरे हमारे श्रोता सुनते होंगे, बहुत

0: पूरे हिंदुस्तान में लगाता हूँ, प्राइवेट स्टेशन हो या सरकारी चैनल हो, आपको बता देता हूँ। और हमारी बात श्रोता सुनते होंगे।
1: हाँ हाँ सही
0: का। आप जानते होंगे। हाँ तो शेर सुनिए, आप गौर कीजिए। हेलो
2: इरशाद इरशाद इरशाद,
0: ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आपको से ही देखूं।
1: क्या बात है।
0: ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से ही देखूं, तेरी याद आना तेरे दीदार से कम तो नहीं है।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और आखिरी से सुनिए, मोहब्बत कब और किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता।
2: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: मोहब्बत कब और किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता, ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता।
1: क्या बात है, ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता।
2: बहुत बढ़िया, बिल्कुल
0: लगेगा तो आपको देख सकते
2: जरूर जरूर सुनाइएगा। आज आप क्या सुनेंगे इस प्रोग्राम में जाते जाते
0: हैं। तो ये जो है आपको हमारे बीबीपुर के मकसूद हुसैन है और अनवर बिहारी का तल्लुक चुका है आप 20 मिनट पहले उनका उनको और गाने के बोल रहे थे आपको भरोसा दो लाइन सुन लीजिए ऊपर का।
2: बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए।
0: कुर्निया में हमारा ना हुआ तो रे थे अपनों का सहारा ना हुआ में।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर।
2: आपकी गाना सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे साहब, इतना अच्छा आप गाते हैं।
0: तो सर,
2: आपने तो दिल से गाया है सर। सर इससे ज्यादा अगर आप गाएंगे तो मेरे स्टूडियो में जो है मेरे आंसू से ये भर जाएगा और हम बहते चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता चलेगा सर। मत गाइए आप।
0: क्या बात
2: आपने, बहुत आनंद आया आपसे बात करके सनाब। अब आपका गीत सुनते हैं और सुनवाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत हुजूर। नमस्कार नमस्कार, इतना खूबसूरत गाया हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। चलिए उनका कौन सा गीत था बहुत खूबसूरत गीत था यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। यह है हेलो फरमाइश और बाकी अभी अखिल भाई बीच में कह रहे थे बहुत खूब, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी बहुत भूख क्योंकि बहुत तेज से भूख लगी है यार।
1: तुमने दूसरे का भी समोसा खा लिया तब भी तो
2: नहीं। मैंने एक भी नहीं खाया, सिर्फ एक ही खाया। आपको झूठ बोलने पे पाप चढ़ेगा मैं बता रहा हूँ। चलिए आपको पहले गाना सुनवाते हैं सर का।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी, और अभी आनंद सर ने आपको भर भर के खूब सारा एंटरटेनमेंट किया है। अभी हमारी बारी है और मैं हाजिर हो चुकी हूं आप सभी की प्यारी सी खुशी, ढेर सारी खुशियां लेकर आई हूं। अभी बात करते हैं अपने कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ में प्राची भी हैं। हाय प्राची, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपकी?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए खुशी।
0: हाँ, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज थोड़ा सा हम आने में लेट हो गए हैं, एक्चुअली इतने सारे काम होते हैं, सब चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो इस वक्त अभी हम अपने कॉलर से बात करते हैं क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी निशा, बताइए कैसी हैं आप?
2: हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताइए, आपकी फैमिली में और एफएम मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, ऑल गुड, एफएम मुरादाबाद में सब बहुत ही अच्छे हैं, फैमिली में भी सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपके यहाँ सब खैरियत से हैं?
2: जी मैम, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ओके, चलिए, हमारी भी दुआएं हैं कि ऐसे ही सभी लोग सलामत रहें हमेशा। बताइएगा निशा जी, आज क्या सुनना चाहेंगी आप?
2: मैम, आप कोई भी अपने पसंद का गाना सुनवा सकती हैं। गाना सुनने के लिए नहीं कॉल करा मैंने, आनंद सर से बात करने के लिए करा, उनसे बात हो गई।
0: ओके, कैसा लगा आनंद सर से बात करके आपको?
2: आनंद सर से बात करके बहुत अच्छा लगता है मैम, सुपर डुपर आर्टिस्ट है।
0: डोरेमोन से भी बात की आपने?
2: जी मैम, बिल्कुल।
0: ओके, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा।
2: मैंने उनका कोई भी सो कॉल करने का नहीं आता, इसलिए बात नहीं हो पाती है, तो इसलिए उनसे अब हेलो फरमाइश में बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: हाँ, एग्जैक्टली, मॉर्निंग में तो नहीं होता है, लेकिन अभी आपने देखिए बात की है तो अब आपको अच्छा लगा। और निशा जी, हम अपनी पसंद का एक प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं, लेकिन निशा जी मैं जानना चाहती हूँ आपसे, इस गर्मी में आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, कैसे अपना ख्याल रखती हैं, जरा बताइए हमें।
2: मैम, हम तो अपना रख लेते हैं, लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं ना, उनके लिए मैं बहुत ही दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक सभी को इतना आराम दे कि वो धूप में बेचारे ना जा पाए, क्योंकि हर कोई है अपने पेट के लिए जाता है ये बाहर।
0: बिल्कुल, अभी मैं भी इन्हों बाहर से आई हूँ तो मैंने देखा था जो लाइक आशियाने बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, वो भरी धूप में काम कर रहे थे, चिनाई कर रहे थे, तो मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी गर्मी में वो काम कर रहे हैं।
2: और हम मतलब इसलिए दुआएं करते हैं, मतलब हम तो अपने घर में सुकून से रहते हैं,
0: जी
2: रहते हैं,
0: नहा
2: लेते हैं, ठंड मतलब मन हो जाता है, सही हो जाते हैं, अपना ठंड में नहा
0: एग्जैक्टली राइट,
2: पानी से नहा लिए, जो लोग बेचारे काम करते हैं ना, उनके ऊपर बहुत अफसोस होता है। मैं तो यही कहती हूँ अल्लाह पाक थोड़ा मौसम ठंडा रखे करें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और फिर ऊपर वाले उनको और शक्ति दें ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि जिम्मेदारियाँ जो है ना वो सब कुछ करवा देती हैं।
2: जी मैम,
0: ठीक है मैम,
2: तो बोलते हैं अल्लाह पाक सभी की दुआएं मकबूल करें, सभी के लिए अल्लाह पाक थोड़ा मौसम सही रखे, जो लोग बाहर काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, गर्मी ठंडा मौसम कर रहा
0: है। जी हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, ठंड किधर हो रही है, लगता है कि मैम शिमला में चली गई हैं।
2: थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए,
0: हाँ ठंडा हो जाए ना तो थोड़ी राहत मिल जाएगी,
2: बारिश वारिश हो जाती है तो अच्छा मौसम हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। थैंक यू सो मच कॉल किया आपने।
2: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, बातचीत करते हैं, बाकी प्राची से भी हम बात करेंगे, एंड एक गाना सुन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा पंजाबी ट्रैक चलाते हैं प्राची।
1: हाँ बिल्कुल खुशी जी, पंजाबी भी सुन लेते हैं।
0: हाँ, क्योंकि मुझे ना लगता है कि हर तरह के ट्रैक हमें सुनना चाहिए, है ना, और पंजाबी गाना और पंजाबी खाना सबसे अलग होता है।
1: हाँ ये तो है, पंजाबी जो होता है पंजाबी स्टाइल की बात ही अलग है।
0: तो दस दो मैंने पंजाबी विच कुछ दसो।
1: मुझे तो एक सॉन्ग याद आ रहा है कि छटके जाना नहीं
0: नहीं जाना नहीं जाना मैं नाल तेरे में नहीं जाना
1: किसी नो अपना कहना नहीं।
0: ओके चलो, मुझे ना अभी एक प्यारा सा गाना है अभी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, एंड बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है सतेंद्र सरताज जी की, और इस गाने को सुनते हैं दोस्तों, फिर आपसे बातचीत करेंगे ताकि आप भी हमारे साथ एंजॉय करें इस गाने को। और हाँ, हमें कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, ऐसे ही चेहरे पर स्माइल बना के रखिए, और हाँ अपना अच्छे से ध्यान भी रखिए एवरीवन।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, और मेरे साथ में प्राची भी है यहाँ पर। जी प्राची, वंस अगेन वेलकम बैक। कैसे हाल चाल है आपके, बताओ।
1: थैंक यू सो मच खुशी, वेलकम बैक करने के लिए आपका।
0: और कैसा लगा वो ट्रैक आपको, पंजाबी गाना सतेंद्र सरताज जी का?
1: जो आपने मुझे पंजाबी ट्रैक सुनाया वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहती हूँ, अभी इस समय देखो, अभी आप भी बाहर से आए, मैं भी बाहर से आई हूँ, तो कितना ट्रैफिक था ना।
1: हाँ, बहुत ट्रैफिक था।
0: और इस हाँ टेल मी,
1: गर्मी तो बस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है।
0: गर्मी ने तो हद कर दी है, बहुत ज़्यादा है। एंड इस समय अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ केयरफुली ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिए। अगर आप टू व्हीलर वाहन चला रहे हैं तो उस वक्त आप हेलमेट ज़रूर पहने। एंड आप तो जो ड्राइव कर रहे हैं वो तो पहने ही पहने, लेकिन साथ में जो आपके पीछे बैठे हैं उन्हें भी पहनना चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि हमारी सेफ्टी
0: हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली राइट।
1: और गर्मी भी बहुत है, अगर आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल लेना ना भूलें।
0: हाँ, ये तो हमें अभी भी ख्याल रखते हैं हम लोग भी, तो अपने श्रोताओं को भी बता देते हैं, क्योंकि सबका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
2: मैम, नमस्ते
0: जी। आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका सर?
2: मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, मैं जयंतीपुर से बोल रहा हूँ।
0: मोहम्मद कामिल जी जयंतीपुर से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप कामिल साहब?
2: बढ़िया है, बस सब गर्मी बढ़ रही है, घर में खाली बैठे हैं।
0: गर्मी बहुत ज्यादा है सर। आप क्या करते हैं?
2: मैं वैसे पल्लेदारी करता हूँ, सामान डालता हूँ ट्रांसपोर्ट पर।
0: जी जी जी जी, ओके। तो अभी इस समय पे आप फ्री हैं, अभी घर पर आराम कर रहे हैं?
2: हाँ जी, घर पे इस टाइम आराम, आज छुट्टी है ना, मंगल की वजह से छुट्टी।
0: अच्छा, ट्यूसडे आप? ओके, ट्यूसडे छुट्टी रहती है।
2: हाँ
0: जी, तो बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
2: मुझे गाना सुनना है, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, मूवी का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।
0: ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: कुछ नाम लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ,
0: ले लीजिएगा।
2: हमारे बहनोई है, बिनोई साहब है, प्रधान भाई।
0: हाँ जी।
2: और हमारे दोस्त हैं एक अफजाल भाई।
0: जी जी।
2: और जी हमारी वालो फैमिली में हमारी पत्नी है वालो समा परवीन।
0: ओके ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आप ये ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, और जाते जाते प्राची भी कुछ कहना चाहती हैं। यस प्राची, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: बस मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है, आपका बीपी डाउन हो जाता है, तो आपको गर्मियों में खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने साथ नींबू पानी ज़रूर लेकर जाए। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम ड्राइव कर रहे होते हैं
0: या एब्सोल्युटली राइट,
1: वॉक करके कहीं जा रहे होते हैं गर्मियों में, तो एकदम जो बीपी लो होता है ना, तो ये जो हम ऐसा सिचुएशन होती है, जो कंडीशन क्रिएट होती है, बहुत रैंडमली होती है।
0: एग्जैक्टली।
1: और हाँ, अगर आप सुबह निकल रहे हैं घर से तो खाली पेट बिल्कुल ना निकले,
0: या कुछ ना कुछ खाकर जरूर बाहर जाएं,
1: और कुछ हैवी, अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको थोड़ा ज्यादा काम है बाहर,
0: हैवी खाना है, हेल्दी खाना है। ओके तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपसे जाने की अनुमति लेते हैं, लेकिन मिलेंगे आपको हम सुबह टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अपने अपनों का और अपना भी खास कर ख्याल रखिएगा, ठीक है? यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: There is a lot about the job.
1: काल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की DG और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, SP की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के DG स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ,
10: चावला टायर
8: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
12: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
11: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: Hey girls, guess what?
9: See?
7: Hi.
12: Hi. Why don't you guys join us?
7: Yes. Yes, sure.

0: हेलो हाय एवरीवन, इवनिंग मस्ती में आपका वेलकम है। खुशी आपके साथ है और मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में प्राची भी है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि शो तो रीना का है पर खुशी कैसे बात कर रही है। मैंने कहा आज शाम में हम भी थोड़ा सा मस्ती का तड़का लगाते हैं, क्यों प्राची? अपने श्रोताओं को हम अकेला नहीं छोड़ सकते ना। और दोस्तों, अभी आपने गाना सुना, बहुत ही प्यारा सा, फ्रॉम द मूवी जरा हटके जरा बचके, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और सच में दोस्तों, जब आप सब हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें और किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती है। इतना प्यार आप सब हमें करते हैं ना, मेरा घर जाने का आज मन ही नहीं किया। मैंने कहा चलो आज हम कहीं नहीं जाते, आज हम चिपक कर यहीं पर बैठ जाते हैं। कैसा लगता है प्राची जब अपनों का साथ होता है तो?
1: बिल्कुल, जब अपनों का साथ हो और साथ हो अपने लिसनर्स का, तो बात ही बन जाती है,
0: बात ही बन जाती है। और शाम का सफर, अभी बहुत सारे लिसनर्स हमारे जो इस समय में सुन रहे हैं, कुछ ऑन द विकार में हैं, जो ऑफिस से घर की तरफ रूट कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो अभी शाम की खाने की तैयारियों में बिजी हैं कि जल्दी से खाना बना लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन बाहर हो जाता है, थक के काम से सब लोग घर आते हैं, एंड कुछ इस समय चाय भी बना रहे हैं।
1: हाँ, क्या होता है शाम में, वो याद है वो बचपन में जो मम्मी शाम में कुछ ना कुछ स्नैक्स लेके आती थी,
0: हाँ, चाय के साथ
1: थे, वहाँ सोचते थे अरे अरे
0: मम्मा कुछ दे दो ना खाने के लिए।
1: मतलब उठते भी अब इसी अपने रूम से इसलिए थे कि अरे कुछ आया है,
0: हाँ,
1: उसके लिए उठते थे। अब मम्मी कहते थे उठ जाओ, है ना।
0: हाँ, और पता है आपको, वो चाय जब बनती थी ना, घर में इलायची की खुशबू, अदरक की खुशबू आ रही है चाय में से, ओए होए होए, नींद तो,
1: और
0: काजू, हाँ। और एक वो आपने खाया है, यू नो, एक ना मैदा की नमकीन होती है, नमक पारे बोलते हैं उसको, आई रिमेम्बर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वो गोल टाइप का होता है, उसमें मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, शक्कर से भी बनता है और नमक का भी बनता है, तो हमारे यहाँ पर उसको नमक पारे बोलते हैं। एक्चुअली मेरी मम्मा ना उनको बना के रख दिया करती थी, क्योंकि हमें इवनिंग में कुछ ना कुछ खाने का ना ग्रेवी होती थी कि कुछ इवनिंग में चाहिए हमें, तो मम्मा कहती थी कि ये मार्केट से बच्चे लेकर आते हैं, मैं घर पर ही बना देती हूँ। तो मम्मा हमारे लिए वो बनाकर रखती थी, और वो इतना क्रिस्पी होता था ना, क्रंची, खाने में इतना टेस्टी लगता था, बहुत ज़्यादा। मम्मी कहती थी तुम लोगों के अगर सामने में दो डब्बे रख दो ना, तुम तो ख़त्म ही कर दोगे। तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको इवनिंग में क्या पसंद है प्राची?
1: मुझे इवनिंग में स्नैक्स में तो मुझे वो चाय रस का जो बचपन वाला टेस्ट था,
0: हाँ, मतलब वो अभी भी चाहिए।
1: हाँ, पर वैसे अब तो वो शेड्यूल नहीं रहा है, बचपन में ये होता था कि हमें सो के उठना है दोपहर में, अच्छे बच्चे वही होते थे जो दोपहर में सो जाते।
0: अरे हाय हाय, हाँ ये तो सही कहा आपने। मम्मी कहती भी थी अक्सर कि जब अच्छे बच्चे ऐसे दोपहर में जागते नहीं है, आराम से सो जाते हैं। और अभी हम चाय की बात कर रहे थे, यहाँ पे चाय भी हाजिर हो गई है, वाह वाह वाह। अगर कुछ और भी मांगा होता है तो वो भी मिल जाता है प्राची,
1: हमें फिर कुछ अच्छा ही मांग लेना चाहिए।
0: पर चाय में जो सुकून है यार, वो और कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, हम तो अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी चाय बना रहे हैं, और कुछ श्रोता अभी हमारी तरह वो भी चाय पी रहे हैं, चुस्कियाँ ले रहे हैं चाय की गर्मा गर्म, क्योंकि इवनिंग में थोड़ा सा तड़कता भड़कता सा ट्रैक हो जाए। तो सुनते हैं एक प्यारा से गाना और श्रोताओं, और लौट कर आते हैं, फिर रीना जी से भी आपको कनेक्ट कराएंगे। आप टेंशन ना लो उसकी, मुझे मालूम है आपकी रीना के बिना गाड़ी नहीं चलने वाली है, तो वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं दोस्तों।
1: चलेगी, और चलेगी, मैं दो जब घर जाऊँगी।
0: चलेगी नहीं, दौड़ेगी, रीना ये कहना चाह रही है। चलिए दोस्तों, अभी गाना सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए, और शानदार गाना सुनते जाइए।
2: Banjo!

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती और मैं आपके साथ खुशी। मेरे साथ में रीना जी भी हैं जिनका ये शो है। हाय रीना, वेलकम बैक, कैसे हो आप?
1: हाय, वेलकम बैक। मैं बहुत अच्छी हूँ और फाइनली मैं आ गई हूँ स्टूडियो में।
0: हाँ चलिए, अच्छा किया मोहतरमा, फाइनली आ चुके हैं अपनी शेयर पर।
1: हाँ
0: तो वैसे रीना, चाय बहुत टेस्टी बनाई है आपने, थैंक यू सो मच।
1: वो क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए, आंटी को मिलना चाहिए, गौरव सर की मम्मी को मिलना चाहिए।
0: अरे मुझे लगा आपने बनाई इतनी।
1: मतलब मैं गई थी तो मतलब गई थी बनाने के लिए, लेकिन आंटी ने, आंटी बोल रही कि तू मत बना
0: बेटा, आप कष्ट मत करो, मैं बना देती हूँ
1: क्योंकि तुम ऑफिस के काम करके थक चुकी हो।
0: ओके, हाँ चाय बहुत अच्छी लग रही है
1: तो मैंने कहा ठीक आंटी बना दो, क्या ही जा रहा है।
0: बस एक बात, लड़की देखो ईमानदार है दोस्तों, अगर कोई और होता तो मतलब अपना ही क्रेडिट दे लेता, लेकिन उन्होंने जो रियल उस क्रेडिट के हकदार थे उन्होंने उनको दिलवा दिया है।
1: हम तो तुम्हारे आगे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है वो तो सब कुछ देख रहा है ना।
0: जी बिल्कुल, जो जो दुनिया चलाते हैं वो कैसे,
1: उसके आगे हमारी नहीं चलने वाली है भैया, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो श्रोताओ, कभी भी ऐसा लगे ना कि हाँ भाई कि किसी ने आप कोई चीज बनवा के लाए हो तो अप्रिशिएट के मारे बोलो कि नहीं बना के लाए हो।
0: हाँ।
1: ऐसे नहीं बोलना है आपने।
0: ओके, ठीक है जी, ईमानदारी करनी है, ईमानदारी से रिश्ता चलाना है।
1: हाँ। और अब मैं कनेक्ट हो गई हूँ आप सभी के साथ, करेंगे
0: ढेर सारी बातें, बहुत सारी मस्ती यहाँ पर करने वाली है रीना जी। दोस्तों अपना व्हाट्सएप मैसेज हमें पहुंचाओ, नंबर है 9837896896 और हमारे पास मैसेज भी आ गया है। गुड इवनिंग खुशी मैम, वेरी गुड इवनिंग। हरिओम महेश्वरी जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से और ये समय हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आपने फटाफट से अपना मैसेज टाइप करके हमें पहुंचा दिया है। तो दोस्तों एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद फिर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप चाय पकौड़ी खा रहे हैं तो अच्छी बात।

0: पकौड़ी मत खाइए श्रोताओं, गर्मी बहुत है।
1: अरे यार अगर किसी ने बनाई होगी तो फिर वो खाएंगे ना रीना।
0: भैया भिजवा दो ऑफिस।
1: अब आप नहीं खिला रही हो वो अलग बात है, लेकिन उनको भी मना कर रही हो गलत बात है।
0: इतनी आलसी हो गई ना इस गर्मी में, खुद शाम के लिए मैं खुद खाना नहीं बनाती।
1: अच्छा
0: लड़की मन नहीं, मतलब यार
1: खाने का मन नहीं करता,
0: पर रहो
1: खाने का मन नहीं करता,
0: मतलब पानी पेट, मतलब पानी पी के पेट भर लेती।
1: अच्छा ओके, लड़की देखो कितनी कंजूस है।
0: नहीं नहीं यार कंजूस की बात नहीं है, मतलब किचन में जाओ ना ऐसा लगता है कि भैया आप बस
1: किचन में जाना है, अपने आप में एक जंग करना है।
0: बहुत बहुत
1: लाइक
0: मतलब मन नहीं करता मेरा किचन में। मैं एक सुबह पता नहीं कैसे मैं खाना बना लेती हूँ।
1: अरे यार मत पूछो, यही मेरे दिल का हाल है, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो दोस्तों ये लड़कियों की बातें तो चलती रहेंगी हम दोनों की, और अब जो भी फीमेल्स सोच रही है ना, डिसाइड कर रहे हैं कि क्या बनाया शाम को, फाइनली बड़ा सर दर्द होता है।
0: अकेले तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जब फैमिली में रहते हैं तो भैया फिर तो करना पड़ता है काम।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: आप अकेले भूखे रख सकते हो, फैमिली को तो नहीं रख सकते।
1: हाँ यार सभी का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। चलो अभी हम बातें करते रहेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत प्यारा सा ट्रैक आपके लिए यहाँ पर हमने प्ले किया है, आप एंजॉय करें दोस्तों, और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, एंड इन प्यारे से गाने को चाय की चुस्कियों के साथ सुनते रहिए।
0: नेहा क्या कर रहे हैं आप भी मैसेज करके बता।
1: हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल कंजूसी मैसेज करने में नहीं करनी है आपको। वेरी गुड, गुड वर्क, गुड लिसनर्स। चलो गाना सुनो, बहुत ही प्यारा सा नेहा कक्कड़ की बड़ी प्यारी सी आवाज में। खरा

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। हाँ तू है, हाँ तू है। समय की बात करूं श्रोताओं, तो 5:45 हो चुके हैं। अगर खुशी मेरे को सच बताओ तो पता नहीं लगा यार टाइम, मुझे लग रहा था कि अभी मतलब 5:30 हुए होंगे लेकिन टाइम बहुत आगे बढ़ गया है।
1: 5:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और शो चल रहा है। इवनिंग मस्ती खुशी यहाँ पर है, रीना जी भी यहाँ पर है। हमने कहा शाम को ढेर सारी मस्ती कर लेते हैं दोस्तों, और ये प्यारा ट्रैक आपने सुना ही है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे रीना, बताओ। मेरी जुबान पे रहता है मेरा नाम और मेरी आपकी जुबान पे रहता है मेरा ही नाम।
0: देखो जो हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो ये खुद को बोलते, मेरे को बोलती है खुशी और मैं इसको बोलती हूँ रीना।
1: हम खुद को एक दूसरे का नाम चेंज करते रहते हैं।
0: हाँ, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन रीना और कौन खुशी, हम एक ही है बस। दो जिस्म एक जान।
1: हाँ, दो जिस्म एक जान।
0: हाँ तो अच्छा खुशी, आजकल जिंदगी बहुत शॉर्ट हो गई है ना।
1: हाँ यार,
0: जैसे कि आप किसी को मैसेज भी कर एक मैम ने हमें मैसेज करा TY और दिल भेज दिया है।
1: अच्छा।
0: यानी कि TY का मतलब होता है क्या, पहले तो तुम ये बताओ।
1: TY का मतलब होता है थैंक यू।
0: क्या तुम्हें पहले पता था?
1: हाँ।
0: यार स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप हमने शुरू किया था,
1: स्टार्टिंग में इतना नहीं था कि मैंने पहले रिसर्च किया कि ये TY का फुल फॉर्म क्या है, फिर मेरे को मालूम।
0: और पता है एक बार जब मैं इतना व्हाट्सएप नहीं यूज करती थी, हाँ। स्टार्टिंग में जब मेरे को मतलब कॉलेज में जब आई, जब मेरे को फोन मिला है।
1: सेम मेरे को भी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरे को मोबाइल मिला था।
0: हाँ, घर वाले बोल रहे थे कि अभी जब पढ़ाई चल रही तो नहीं देंगे, जब उनको लगा कि हाँ ये घर से दूर जा रही है तो रास्ते में कुछ हो जाए तो उन्होंने बोला कि चलो फोन दे देते, मतलब कुछ दिक्कत हो जाती तो फोन कर दे। तो मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है PLZ।
1: ओके,
0: अब PLZ मैं सोच रही यार
1: कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ? कि इसका ये क्या भेजा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
0: हाँ, लिखती है हेलो कैसी हो प्लीज आ जाना, PLZ का मतलब।
1: okay, हाँ,
0: तो मैं कह रही आ जाना भी ठीक है, हेलो भी ठीक है, कैसी भी हो भी ठीक है, लेकिन PLZ क्या है? तो पहले तो भैया मैंने उसको कॉपी किया, फिर गूगल पे गई, मैंने कहा
1: रिसर्च किया, उसकी बात पता चला कि प्लीज होता है।
0: हाँ, तो जिंदगी सच बताओ बहुत शॉर्ट हो गई है। हम कोई भी मैसेज करते हैं ना पूरे शॉर्ट में लिख देते हैं।
1: हाँ, तो हमें तो शॉर्ट नहीं है लेकिन हाँ वर्ड्स हमारी जो लाइफ में है ना
0: वो बड़े शॉर्ट हो गए,
1: वो शॉर्ट हो गए हैं।
0: अरे क्यों नहीं हो गई हमारी लाइफ शॉर्ट? एक बात बताओ।
1: हाँ, टेल मी।
0: कि तुम्हें मान लो दिल्ली जाना है।
1: ओके,
0: और तुम गांव में से निकल के जाओगे तो तुम्हें लॉन्ग पड़ेगा, है ना।
1: हाँ,
0: और जब तुम हाईवे से जा रही हो तो वो शॉर्ट पड़ेगा। तो तुम अब बताओ कौन सा रास्ता अपनाओगी, लॉन्ग या शॉर्ट?
1: अरे यार हर किसी को जल्दी है तो मैं भी शॉर्ट वाला रास्ता अपनाऊंगी।
0: देखा बात हुई ना।
1: लेकिन रीना, अगर कोई अपना हमारे साथ है, तो मैं लंबा रास्ता

0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: तो
0: तुमने।
1: अपनों के साथ जब होते हैं ना, समय का आभास नहीं होता है, पता नहीं चलता है, यही तो प्यार होता है। और श्रोताओं का और हमारा प्यार भी ऐसा ही है।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब आप फैमिली वालों के साथ हो तो फोन और ये शॉर्ट मैसेज भेजने थोड़ा बंद करो यार, अपनों के साथ एंजॉय करो।
1: हाँ, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हम भी आपके अपने ही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और खुशी, वैसे तो मैं सच बताऊं, जब तुम्हारे घर आती हूँ ना, तुम्हें ही पता है कि मेरा आने का मन नहीं करता है तुम्हारे घर से।
1: हाँ,
0: क्योंकि भैया
1: हर बार ही बोलती है। लिसनर्स, मैं आपको बताती हूँ, लिसन टू मी, जब भी ये मेरे घर आती है मेरे पास, तो आने के बाद ये पहले मतलब बातें करती है ढेर सारी, लेकिन जब जाने का वक्त होता है तो ये पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, सोचती है जाने का इसका बिल्कुल भी दिल नहीं करती है। फिर मुझसे कहती है, यार मेरा जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ। मैंने कहा मर जाओ, रो यहीं पर। फिर कहती है, नहीं यार सुबह जल्दी उठना है तो जाना पड़ेगा।
0: एक्चुअली मैं अकेली रहती हूँ रूम में।
1: हाँ,
0: और इनके घर भैया बहुत सारे, तीनों भाई बहन, और इनके घर में एक प्यारी सी भाभी रहती है, उनके फैमिली रहते हैं, तो मतलब लोगों की चहल पहल ना बहुत रौनक लगती है। हाँ,
1: तो कहाँ इकलौता इंसान, चार दीवारें, कहाँ पर पूरी फैमिली।
0: हाँ, तो चार दीवारों में ना घिर के जिंदगी सिमट सी गई है, मुझे लगता है
1: शांत लगता है सब कुछ।
0: हाँ, और जब आप अकेले रहते हो ना खुशी, तो सच बताओ थोड़ी ओवर थिंकिंग भी होती है।
1: हाँ,
0: दिमाग कहीं कहीं और घूमता रहता है, और जब आप सबके साथ होते हो ना, तो मतलब मौका ही नहीं मिलता, बस ऐसा लगता है यार यही जिंदगी,
1: यही जिंदगी।
0: तो मेरी तरह तुम्हें बिग फैमिली पसंद है?
1: हाँ, मुझे पसंद है ना।
0: क्या बात है जी। और बिग फैमिली हो, उसमें शांति हो, मजे हो, एंजॉय करने का हो।
1: और यार पहले के टाइम में देखो, हमारे ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, और सब कजन ब्रदर, आंटी अंकल, मम्मी पापा, सब लोग साथ होते थे। और स्पेशली गर्मियों के टाइम की अगर हम बात करें, तो गर्मियों में क्या होता था कि सब लोग छत पर, जैसे लाइट चली जाती थी तो सब लोग छत पर चले जाते थे, वहां पर आराम से सब लोग साथ में सोते थे, रात को कहानियां सुनते थे दादी से, मम्मा से, एंड फिर वहां पर हम लोग तारे गिना करते थे, तो वो वाला नजारा बहुत खूबसूरत होता था।
0: ओके ओके, तो अभी जिन मैम ने बोला था ना TY शॉर्ट में, उनका मैसेज आता है।
1: ओके, क्या बोलती है मैम?
0: इनका कहना है कि थैंक यू, अभी इन्होंने पूरा प्रॉपर थैंक यू लिख दिया है।
1: अरे,
0: और कहती है, आपकी खुशी के लिए रीना जी के फुल, मतलब लिख देते हैं, इन्होंने थैंक यू लिख दिया है। ठीक है जी। और इनका कहना है कि रीना जी पूरी ऑफिशियल लाइफ फोन पर आ गया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी टाइप कर दिया मैंने, जल्दी जल्दी में बात, मतलब जो भी है मैसेज कर दिया इन्होंने। और आगे लिखते हैं कि और बस यही टाइम है अपने पार्टनर के साथ, यानी कि टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑफिस में काम करते हैं ये, इनके पति भी और ये भी, तो एक ये टाइम मिलता है कि हम दोनों इंजॉय कर सके, एक दूसरे को टाइम दे सके, बातें कर सके, तो इसीलिए इन्होंने शॉर्ट में TY और लेकिन दिल भेजा इन्होंने, मतलब हमारे लिए दिल धक धक करने लगा।
1: वैसे आपके दिल बहुत प्यारे हैं और ये धड़क भी रहे हैं, इधर से हमारा भी हार्ट एकदम धड़क रहा है जोरों से।
0: बिल्कुल,
1: तो अभी ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे, है ना?
0: तो हम भी ये गाना चला है धक धक करने, कौन सा गाना चला ये बताओ, धक धक करने लगे या लगे 440 वोल्ट?
1: नहीं नहीं, आप चलाओ,
0: तुम बताओ।
1: ना सुने
0: दिल मेरी ना सुने,
1: हाँ दिल की मैं ना सुनूं, क्योंकि मेरा जो दिल है ना, कभी कभी वो मेरी सुनता है और कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी मत सुनो, तुम्हारा जो मन है वो करो। ऐसा होता है।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा होता है।
1: हाँ,
0: चलो फिर ठीक है भैया, खुशी की फरमाइश पर ये गाना हम एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, आज मैंने लड़के को बोला कि भैया तुम्हें आज मेरे शो में रहना, अगर मैं चाय बना के लाऊंगी तो तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन बट मैंने बनाया नहीं है,
1: लेकिन लेकर आए हो, उसके लिए भी थैंक यू यार, आप मेरे लिए लेकर आए।
0: हाँ, तो चलिए श्रोताओं, अब हम ये गाना एंजॉय करते हैं, लेकिन गाना एंजॉय करने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
2: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
2: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको

भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
3: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ, आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो यानी कि 6:09 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आरजे रीना के साथ। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है श्रोताओं। और साथ ही साथ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, देखिए हम इंसान तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमें प्यास लगती है तो पानी लेकर पी सकते हैं, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर पेन हो रहा है तब भी हम बोल सकते हैं, बीमार है तब भी बोल सकते हैं। लेकिन वो बेजुबान पक्षी जानवर जो कि नहीं बोल सकता है, हमें नहीं पता उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता होता है, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि उनके लिए पानी ज़रूर रखिए, पशुओं के लिए आप पानी ज़रूर रखिए। हम कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हौदी जो बनी होती है वो बहुत गंदा होता है, तो उसको साफ करिए, उसमें पानी अच्छा साफ पानी भरिए, ताकि जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सके, क्योंकि वो मांग नहीं सकते हैं, लेकिन उनको पानी दिखेगा तो वो पिएंगे भी और नहाएंगे भी। तो हमें एक कहते हैं ना भाई, पुण्य कमाने के लिए हम बहुत दान वन करते हैं, लेकिन दान से भी बड़ा ये पुण्य माना जाता है, आप बेजुबान को पानी पिलाते हैं तो। और इस गर्मी में तो उन पानी पिलाना मतलब समझिए 100 बार भी आप पुण्य मतलब दान करेंगे ना, उसके बराबर माना जाता है। तो पशु पक्षियों के लिए पानी जरूर रखिए। और भी ढेर सारी बातें करेंगे, बस यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट्री एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। चलिए जी, बहुत ही प्यारा गाना।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गाना एंजॉय किया आपने अर्जुनीना के साथ। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 6:17 हो चुके हैं और हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक के बारे में, जो कि आप सभी को पता है कि ट्रैफिक के नियम फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और गर्मी खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो पानी की बोतल अपने साथ रखिए, क्योंकि जो घर पर है वो तो फिर भी सुरक्षित है, लेकिन जो बाहर जाते हैं पानी की बोतलें भूल जाते हैं, फिर जब प्यास लगती है ना, जब याद आता है ये धत तेरी की यार, पानी की बोतल भी हमें लेकर ही आना चाहिए। तो इसीलिए पानी की बोतल अपने साथ रखिए, हेलमेट सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर रखिए, और साथ ही साथ जो बाइक पे हैं स्कूटी पे हैं, भैया गर्मी तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा है तो लगती लगती है, और भैया जो गाड़ी में हैं उनकी तो फिर भी मज़े हैं, क्योंकि एसी तो चलाकर वो गाड़ी चला रहे हैं ना। लेकिन आप सभी से ये कहना चाहेंगे, देखिए आप अगर ट्रैफिक में हैं तो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि उस रूट से और भी कोई जो आने वाले होते हैं वो बच सकते हैं, और वो भी अपने घर इस गर्मी में जल्दी पहुँच सकते हैं, और साथ ही साथ अपने ऑफिस में आप जो भी सामान लेकर जाते हैं, चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है होता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, फिर घर आके पता चलता है यार हम चार्जर तो भूल ही गए। अच्छा मतलब मेरे तो मोस्टली मेरे साथ होता है कि मैं चार्जर ऑफिस में ही भूल जाती हूँ, फिर मेरे को वापस आना पड़ता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप मतलब चार्जर भूल गए हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप भूल गए हो और आपकी ऑफिस बहुत दूर है जो आप नहीं जा पा रहे हो? तो मतलब होता है ना, बहुतों के साथ होता है, क्योंकि मेरे साथ होता है तो आपके साथ जरूर होता होगा। तो आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइए, नंबर है 9837896896। कड़क सवाल भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। बस एक और प्यारा गाना और फिर कनेक्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक के साथ साथ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
5: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
6: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

क्या बात है जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय हो चुका है 6:36 हो चुके हैं। और आज का स्पेशल डे बहुत ही खास है, क्योंकि आज मनाया जाता है 9 जून को लेखक अधिकार दिवस। अभी अधिकार क्या है बताते हैं, यानी कि जो भी आप लिखते हो, जिसके भी कहानी कविता की आप रचना करते हो, उस पर आपका हक। सोचिए एक कविता, एक कहानी और गीत लिखने में लेखक अपनी सोच, मेहनत और भावनाएं लगा देता है। लेकिन सोचिए अगर उसी की रचना को कोई और अपना बताकर इस्तेमाल करे तो। कहते हैं ना एक लेखक, एक कवि, कहते हैं ना एक कहावत है बहुत ही प्यारी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि उनकी सोच रवि से भी आगे होती है, परे होती है। वो वहां तक सोच लेते हैं जहां तक रवि नहीं पहुंचती, वहां तक पहुंच जाते हैं हमारे प्यारे कवि। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि हम किसी की लिखी हुई चीजें, हम उसको कहते हैं कि नहीं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार ये तो मैंने लिखी है, तो ये आप एक गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान को ना दबा रहे हो और दूसरों को, जो दूसरे ने लिखा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, हाँ भाई ठीक है अपना बताकर। तो आपकी मेंटेलिटी जहाँ पर आपने यूज़ करना चाहिए वहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरे के दिमाग का आप सहारा ले रहे हो। इसीलिए कहते हैं जो भी काम करिए सिर्फ अपने दम पर करिए, किसी की लिखी हुई रचना कविता को चुराना नहीं चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी है। इसीलिए आज 9 जून को मनाया जाता है लेखक अधिकार दिवस, यानी कि जिसने लिखा उसका राइट है भाई, अधिकार है कि अगर आप कॉपी करते हो तो उस पर वो मतलब सवाल उठा सकता है। कॉमन बात है, अगर मैंने बताइए आपने कुछ बनाया और मैं उस पर बोलूँ नहीं जबरदस्ती कि मैंने बनाया घर वालों के सामने, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए देखिए मेहनत करिए, मेहनत भी ऐसे करिए कि अपना दिमाग कहो ठीक है जी। सो अब लेकर आएंगे आप सभी के लिए कड़क सवाल, जहां पर ढेर सारी बातें होंगी और एक बहुत ही प्यारे से कड़क सवाल जिसका आंसर देने के लिए थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। चलिए जी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: 50 में
1: टायर लो सोना जीतो
2: क्या
1: जी हाँ
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका जल्दी कीजिए
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून TNC अप्लाई
6: बसंती इनके सामने मत नाचना
7: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में, और आप एंजॉय कर रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जियो। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यहाँ पर 6:32, और आप सभी के बीच मैं लेकर आ गई हूँ कड़क यानी कि कड़क पहेली। और कड़क पहेली आज की क्या होने वाली है, जिसको आप डेली सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इतना ही काफी होता है जी। और क्वेश्चन है, ऐसा क्या है जो बोलता है पर सुनता नहीं है? सिर्फ वो बोलता रहता है लेकिन कभी सुनता नहीं है। सोचिए अब वो क्या हो सकता है। और हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। अगर आप राइट आंसर बताते हैं तो आप जीतते हैं द ग्रेल्स की तरफ से एक फूड वाउचर। जी बिल्कुल, आपको फूड वाउचर मिलने वाला है। सो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ आज का कड़क सवाल, ऐसा क्या है जो बोलता है पर सुनता नहीं है? चलिए जी बोलिए, और अभी लौट कर आते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे। आपने बड़े ध्यान से सोचना है तब बताना है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहते हो जी। आप समझ गए हो ना कि क्या हो सकता है जो बोल सकता है पर सुन नहीं सकता। चलिए फिलहाल एक गाना, खिंच मेरी फोटो। हम जहीं कहीं भी घूमने जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, खिंच मेरी फोटो, स्टोरी लगानी है।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब वेदर की तरफ चलते हैं। फिलहाल तो अपने मुरादाबाद की बात करूं भैया, तो टेम्परेचर है यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आज की तारीख 9 जून, और बताया जा रहा है कि 9 जून से लेकर 13 जून तक यानी कि वेदर में चेंज आने वाला है, मौसम करवट लेने वाली है, यानी कि आंधी तूफान बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है कि भैया बारिश आ सकती है। बारिश अब देखिए आई ना आए, लेकिन संभावना जताई जा चुकी है कि अब थोड़ा सा गर्मी से हमें थोड़ा राहत मिल सकता है। अब देखते हैं श्रोताओं कितना राहत मिलता है कितना नहीं मिलता है। फिलहाल तो भैया बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी, लेकिन आप मत सोचिए मुरादाबाद में 2 दिन बारिश नहीं आने वाली, लेकिन ये बताया जा रहा है 11, 12, 13 को बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। आज कोई संभावना नहीं है भैया, अगर आप बाहर हैं, मौसम कैसा है आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके। सो एक कड़क सवाल भी मैंने आप सभी से पूछा है जो कि बड़ा सिंपल है, और सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो सिर्फ बोलता है पर सुनता नहीं है। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए और ये गाना एंजॉय करिए, जादू की झप्पी ले जा तू अब भी मिलूंगी फिर ना दोबारा। हाय हाय

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:47 हो चुके हैं। और एक प्यारी सी अपडेट, यानी कि हरियाणा के हिसार में रहने वाली यानी कि सुमन मलिक, जिसने एक बड़ा अनोखा काम करती है ये लेडी, यानी कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते अपने पैसों से, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको ये पढ़ाती भी है और लंच भी खाना भी खिलाती है। सो देखिए, ज़िंदगी में ना कहते हैं कि खुशी नहीं मिलती है, और खुशी आपके पास लौट कर नहीं आएगी, बल्कि आपने उसको ढूंढना है। आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कैसे करते हैं, कैसे खुश रहते हैं, खुश रहने का जरिया कैसे निकालते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। सो हम यही कहते हैं, यार पता नहीं क्यों खुशी नहीं मिल पा रही है हमें, क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों हैप्पी नहीं रह पाते। तो इसीलिए उस चीज़ को ढूंढना पड़ता है। जब आप खाली बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो कुछ ऐसे बच्चे को आप ढूंढो, यानी कि आपको पता है झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते, लेकिन शिक्षा का अधिकार हर किसी को है। तो इन्होंने यानी कि एक अपना अलग ही छोटा सा स्कूल खोला हुआ है, जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाती भी है, लंच भी कराती है। तो ऐसे ऐसे दुनिया में इंसान हैं जो खुद की भलाई के साथ साथ दूसरों का भलाई चाहते हैं, कि भैया मेरे साथ साथ इनको भी आगे बढ़ने का हक है और आगे इनको बढ़ने दिया जाए। और बड़े मासूम बच्चे हैं, सच में आप उनके पास जाओगे ना, बड़े प्यार से दीदी आपको बोलेंगे और बोलेंगे मुझे ना ये चीज़ पढ़ना है, मेरे को आता नहीं, आप पढ़ा दो। कभी उनसे मिलना तब आपको पता लगेगा कितने प्यारे बच्चे होते हैं वो। सो अभी आज का कड़क सवाल मैंने पूछा है, लेकिन उससे पहले जो मैसेज आ गए हैं उनको शामिल कर लेते हैं श्रोताओं।

ऊपर से आप छत पर भी सोने की कोशिश करो तो ऊपर से मच्छर काटने लग जाते हैं, तो मच्छरदानी लगाइए और आराम से सो जाइए। लेकिन सो नहीं पाते ना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी सही कहा आपने, और फिर सुबह जल्दी उठना भी होता है। और इन्होंने आज का कड़क सवाल भी भेज दिया है, वो भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं। फिलहाल विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से। रीना जी कैसी हो आप? गुड इवनिंग। बहुत अच्छे हैं जी।

चलिए जी, फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ दीपक जी कनेक्ट होते हैं एमडीए से और कहते हैं, मैम कैसे हो आप? बहुत अच्छे जी, गर्मी में अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हमेशा अक्सर हमें ही बोलते रहते हैं कि भाई ध्यान रखो, पानी पीते रहो, सीजनल फ्रूट्स खाओ। तो मैम आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपना ध्यान रखिए, और आप सब जब ध्यान रखेंगे तब हमें भी आप अपडेट पहुँचाती रहती हैं और हमें भी आप याद दिलाती रहती हैं कि भैया हेलमेट सीट बेल्ट भी पहनना है, पानी की बॉटल भी लेकर जाना है, चार्जर नहीं भूलना है आपने। बिल्कुल सर, ये तो हमारा काम है सर, और हम अपना भी ध्यान रखते हैं। आप है ना, और आपने इतना बोल दिया, ओहो इतना ही बहुत है जी। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये मोनिका जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं बुद्धि बिहार से, और इनका कहना है कि आज मैं पहली बार आपका शो सुन रही हूं, हालांकि पहले आप खुशी और आप थी, लेकिन अब आप अकेली हो। हाँ जी, क्योंकि मैं ये मेरा शो, मैं इवनिंग में अकेली आती हूं, आज मैंने खुशी को पकड़ लाई थी, मैं क्या चल आजा इन्जॉय करते हैं, शो करते हैं दोनों साथ में मिलकर, लेकिन अब वो घर चली गई क्योंकि सुबह भी शो करती है, दोपहर में भी शो करती है, तो मैंने कहा चलो अब तुम जाओ इन्जॉय करो और आगे अपने शो में। देखिए श्रोता, आज के कड़क सवाल बहुत ही सिंपल से मैंने पूछा है, ऐसा क्या है और कौन है जो सिर्फ बोलता है पर सुनता नहीं है? सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके पहुंचाना है। फिलहाल एक और प्यारा गाना।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। और अब आरजेडीना लगी यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले ओहो भैया कुछ मैसेज है जिनके कड़क सवाल आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि इनका क्या आंसर आता है। ललिता जी का कहना कि रिकॉर्डर होता है, ओके, जो कि सिर्फ सुनता है पर सुनाते से पर सुनता नहीं। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। अश्विंत जी का मैसेज आता है हमारे पास मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि मैडम आपने पहले ही एग्जांपल दे दिया था कि जो सुनते सुनाते तो है पर कभी सुनता खुद नहीं है, वो है रेडियो। सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो जरा। क्या बात है जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अश्विंती जी ने आंसर दे दिया है भैया। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि वैष्णवी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि मैडम गाने होते हैं जो हम सुनते तो है पर वो सुनता नहीं है, हमें सुनाता पर खुद नहीं सुनता। अच्छा जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो विवेक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि वो सिर्फ गाने होते हैं जो हमें सुनाते हैं पर खुद नहीं सुनता। अच्छा जी, बिल्कुल जी।

समय की बात करूं तो 6:57 हो चुके हैं और आप वाउचर लेने आ सकते हैं डॉग ग्रिल्स की तरफ से, आपको मिलेंगे फूड वाउचर। तो आज आप विनर होते हैं और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे कल सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो विकी सागर जी का मैसेज आ गया कि रीना जी रेडियो है एफएम मुरादाबाद, टॉफी भेज रहे हैं। अरे अरे सर, अच्छा आपने मतलब ऑरेंज वाली टॉफी हम बचपन में कितना खाते थे ना, 1 रुपए का 4 आता था ना, किसने किसने खाए जी, वो कल बताना मैसेज करके। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ जी। बो बो टाटा, कहाँ जा रही हूँ? अरे मेरा शो का टाइम खत्म हो गया, शोता हो, कल मिलेंगे, कल ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, और एक प्यारा सा गाना, और इसी के साथ पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। झूठी कसम नहीं खानी है, जो कसम खानी वो निभानी जरूर। पहले का था ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, अब क्या है वचन चला जाए पर प्राण नहीं जाना चाहिए भैया। चलिए जी, बाय बाय, अपना ध्यान।

0: नहीं बेटा, प्यार में। हाँ
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: बंद लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
5: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में

0: पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
4: थैंक यू सर,
5: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
4: वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
5: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
4: क्या बात है।
5: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
4: जी जी, प्लीज।
5: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: Beautiful.
5: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: Wow.
5: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
4: क्या बात है।
5: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
4: जी,
5: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
4: हाँ जी।
5: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
4: हाँ जी।
5: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
4: Alright.
5: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। तो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
4: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
5: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
4: जी, जी।
5: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
4: जी,
5: हैं।
4: जी, जी, जी, जी।
5: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
4: जी, जी, जी, जी।
5: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
4: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
5: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन वन आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
4: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
5: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
4: ऑलराइट,
5: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
4: हाँ जी, हाँ जी,
5: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
4: जी।
5: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
4: तो जी, जी।
5: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
4: ओके,
5: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
4: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको वो मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
5: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स में
4: हाँ जी, हाँ जी,
5: उनको नहीं पता
4: नहीं
5: होता
4: पता
5: है वो क्या करती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
4: जी।
5: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
4: ओके,
5: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
4: हाँ जी,
5: उसमें
4: हाँ
5: हमारे
4: जी।
5: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
4: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
5: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: है ना,
4: बिल्कुल।
5: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
4: मतलब कोई रीजन, कोई कारण मतलब जिसे पता,
5: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
5: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
4: ठीक है, बहुत
5: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
4: जी,
5: है। ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25 to 27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को,

0: और उनको कब नहलाना चाहिए। बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
6: कॉल 8826213131।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूत पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

0: प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
3: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास ही के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए उसका एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
4: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
5: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, अब रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
4: जन जन तक पहुंचा संदेश।
5: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, PM किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून पूर्व तैयारियों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बरसाती जल निकासी नालों की गाद निकालने का काम लगभग 70% पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के जोन ओ में बसी कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जोन ओ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से पाया गया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज करौल बाग मंडल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित विषयों और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती स्वराज ने पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों और शिकायतों को संबंधित विभागों के सामने प्रभावी रूप से उठाने और उनके समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविल लाइंस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्वच्छता और प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की। इसके अलावा श्री खिरवार ने जहांगीरपुरी स्थित 2000 TPD क्षमता वाले CND वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने धूल की रोकथाम के लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट के चारों तरफ शीट्स लगाने और वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के मुख्य मार्ग पर झाड़ियां लगाने और संयंत्र का सौंदर्यकरण करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सजग समाज और दूरदर्शी विधानमंडल ही विकसित भारत 2047 के दो सशक्त स्तंभ हैं।

0: और मजबूती पर बल दिया। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: अदालत में सीबीआई ने कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार मनीषा वाघमारे ने पैसे के बदले छात्रों को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए। जांच एजेंसी ने उम्मीदवारों के बयानों का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के लिए पैसे दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 12 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा छात्रों को जुटाने में लगे बिचौलियों में शामिल थी। आरोप है कि इन छात्रों ने विशेष कोचिंग सत्रों में शामिल होने के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया था। यहां परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राजधानी में बसों के रोजाना के संचालन और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी बसें अपने निर्धारित बस स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम तरीके से बसों में चढ़ने और उतरने की सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने डीटीसी के सभी अधिकारियों को बसों की समय सारणी, रूट ऑपरेशन और सर्विस के समय के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मॉनसून की तैयारियों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तूफानी जल निकासी नालों की गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर बाढ़ को रोकना, यातायात जाम को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना था। प्राधिकरण ने कहा कि समय पर काम पूरा होने और गुणवत्ता मान

0: मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीडीए अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य मानसून शुरू होने से पहले इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और दो डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप रिकॉर्ड की गई है। NCRTC ने बताया कि एक दिन में लगभग 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। NCRTC ने कहा कि उपलब्धि NCR में लोगों के यात्रा करने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाती है। निगम ने बताया कि दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उलगुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है और परिवार के बाकी सदस्य

0: बच्चों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं। वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: जेई एईएस जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल जेई एईएस नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, एएनएम होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना न केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की जो ये ब्यूटीफुल महफिल है ना, ये किन की बातों से सजने वाली, कौन है जो इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टेशन में आके पूरी जनता तक उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके हमें डीएम कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर, आप शेर व शायरी करते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन है ना, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम किसको देने वाले हैं, आई नो दैट आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, बट वही है ना कि कभी कभी जब आप आवाज़ सुनते हो और एक लंबे अंतराल की बात सुनते हो तो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग तो हो जाता है। बिल्कुल बात नहीं, आज हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे उनको, एंड जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। वेल, आज की शाम कौन है हमारे साथ इस महफिल में, बताता हूं आपको। सो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो साथ देने वाले हैं वो है उत्कर्ष अग्रवाल जी। एंड इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरी इनसे अभी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने काफी कुछ बताया अपने बारे में। मतलब ही इज अ मल्टीटास्कर इंसान, बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं। एंड फिलहाल मुरादाबाद से तो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में आके कहीं और से यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अब तो मेरे लिए मुरादाबाद ही अपना शहर हो गया। आई लव मुरादाबाद सिटी। तो बिना किसी देरी के भैया को मिलवाते हैं आपसे। हेलो, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
8: नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
7: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ सर। मेरी जो है हालचाल आप देख ही सकते हैं, स्टूडियो में बैठने के बाद सब एकदम ऑल गुड हो जाते हैं सर।
8: बिल्कुल बिल्कुल
7: जी। आप बताइए सर, आप मतलब पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आए हैं आप?
8: नहीं, FM मुरादाबाद में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू। और
7: आई एम सुपर हैप्पी, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, यू नो।
8: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शो बहुत अच्छा होने वाला है।
7: एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना भैया, जब किसी भी काम की शुरुआत आप एक अच्छी वाइफ के साथ करते हो, यू नो, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करते हो, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आता है।
8: डेफिनेटली डेफिनेटली,
7: वही चीज यू नो आज इस सेशन में होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं उत्कर्ष भाई, मतलब यू नो आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या है आपका काम?
8: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊंगा अपनी बात बताने, लेकिन मैं उससे पहले अपनी एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूं, जो मैं इंट्रोडक्टरी शेर अपने लिए कभी पढ़ना चाहता हूं। और वो लिखा था मैंने ऐसे कि भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं।
7: क्या बात है,
8: भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं, मैं जिस्मों की दुनिया में दिल हारने वाला लड़का हूँ। तो मैं जो बेसिकली हूँ, मेरा जो काम है वो, एक तो मैं पोइट हूँ, सिंपल सी बात है, आपने मुझे समझ लिया। तो लिखता हूँ, गाता हूँ और सिंगिंग करने का शो रखता हूँ साथ में। सिंगिंग मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन पोइट्रीज में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं प्रेम पे कविताएँ लिखता हूँ। प्रोफेशन मेरा है टीचिंग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने लिए जो टाइम निकालता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, या यूँ कहिए कि लोगों के जज्बातों को, फीलिंग्स को बस कागज़ों में उतारने का काम है थोड़ा सा।
7: क्या बात है, साउंड्स इज अमेजिंग यार। मैं मतलब बहुत लोगों को हम इंटरव्यूज करते हैं, बहुत लोगों से हम मिलते हैं, एंड मैं उत्कर्ष भाई को सामने से देख पा रहा हूँ, तो मतलब उनको देख के इतने इनोसेंट, इतने यू नो सेंसिटिव लग रहे हैं वो, बट उनकी आवाज़ और उनका यू नो टॉकिंग ऑफ वे एब्सोल्युटली अल्टीमेट है यार। मतलब यू नो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है ना उत्कर्ष भाई। एंड इतने मल्टीटास्कर हैं, मतलब आपने सारा कुछ बता डाला यार, तो एक एक करके यू नो आपका जो टैलेंट है उसको मैं चाहूँगा यहाँ पे हम पब्लिश करें, अपनी ऑडियंस के बीच में रखें। एंड गाइस, ये जो सेशन है डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जाने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस सेशन को ऐसे एंजॉय करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, तो आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे साथ उत्कर्ष अग्रवाल जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। सो एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: Thank you.

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपने सुना और इस गाने को सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं उत्कर्ष जी, उनको भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल डेफिनेटली।
0: एंड सर, आप तो आपने बताया कि आप ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बट अब आप काफी लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे आए हुए, और उससे भी ज्यादा शायद।
0: ओके, सो कुछ चेंज लग रहा है, यू नो, कुछ भी डिफरेंट, यू नो?
1: बहुत बहुत ज्यादा। मैं मतलब पहले से महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए और कितनी ज्यादा एफएम मुरादाबाद 89.6 इसका नाम है, वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है।
0: इनफैक्ट मुरादाबाद में हर चीज अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है, यू नो।
1: मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आज के टाइम में भी एफएम जैसी चीज में तरक्की कर पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है कि लोग सुन रहे हैं। और ये सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज बना के उनको दे रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है, जो पब्लिक को बना रहा है, आपका लिसनर आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो मैं कहूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुई, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रीच आप लोग पकड़ रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है यार।
0: बट दिस इज वेरी, यू नो, कह सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत ज्यादा, इतना इजी नहीं है। दिस इज वेरी क्रिएटिव।
1: नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैं भी हूँ, मैं मुझे गाने का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक और सावन पे भी मेरा एक गाना आया।
0: ओ वाह,
1: जानिया
0: क्या
1: के नाम
0: बात
1: से
0: है।
1: वो लिखा मैंने है और मैंने गाया भी है, बट सम वॉइस सैंपल्स यूज करे हैं मैंने उसमें, ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ हार्डकोर सिंगर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके एफएम रेडियो पे बता दूं, क्योंकि मैंने सिंगिंग सीखी नहीं है, बट मुझे लिखना था और वो गाना मैं चाहता था कि बने और बिना खर्चे के बने, सबसे बड़ी बात। तो मैं चाहता था कि वो बने, तो मैंने खुद सिस्टम पे बैठ के उस पर 2-3 महीने जो मैंने काम किया है, मुझे पता है कि गाने को गाना बनाने में शायद कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। इसी तरीके से एक जो पीस आप तैयार करते हैं, एक शो आप तैयार करते हैं, उस शो को शो बनाने में जो फिनिश प्रोडक्ट लोगों को कहने में सुन के अच्छा लगता है, उसको बनाने में पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छा शो बनाते हैं।
0: अरे धन्यवाद सर। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ बीइंग अ आरजे, अगर आप रेडियो कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, रेडियो पे जेन्युइन होना चाहिए। जैसे कि एक्टर को कैमरे पे बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग के साथ आना पड़ता है, क्योंकि वरना कैमरा होता है ना, छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है एक एक्टर की, है ना। वैसे ही हमारा माइक होता है, हम इसके साथ में ना कोई भी, यू नो, फेक चीज नहीं कर सकते हैं। आप जितना ओरिजिनल साउंड करोगे, लोग उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे। वो कनेक्टिविटी तभी बनती है जब आप ऑर्गेनिक चीजें डिलीवर करते हो बेसिकली। सो वो चीजें, सो गाइज प्लीज बोर मत होना, बैक टू पॉइंट चलते हैं हम उत्कर्ष भाई की दुनिया में, एंड कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, हम जब अभी म्यूजिकल ब्रेक पे गए थे तो मेरा उनसे एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था, वो यू नो कुछ वॉइस को लेके कुछ तो यू नो कर रहे थे हम लोग आपस में टॉक। आरजे उन्होंने देखे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा, और वो भी कुछ बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, यू नो, वॉइस के बारे में कुछ तो चल रहा था उत्कर्ष भाई अभी हम लोग।
1: मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वॉइस की जो बात हुई, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वॉइस कितना मैटर करती है जब आप कोई पोइट्री डिलीवर करने वाले, आप कोई शो डिलीवर करने वाले, स्पेशली इन आरजे या एंकरिंग का जो शो होता है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और यदि हमारी वॉइस अच्छी नहीं होगी या इम्पैक्टफुल नहीं होगी, तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी।
0: Correct.
1: मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं बहुत सारे पोएट्री शोज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए लिख रहे हैं या नया नया पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मतलब एज अ जैसे रीडिंग कर दी उन्होंने, और उनकी वॉइस में वो इम्पैक्ट नहीं होता। शायद उन्होंने, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे।
0: Correct.
1: और वो वॉइस उनकी कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा ना भी लिखा हो, और उसका पढ़ने का, कहने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे आंखें और आवाज जो होती हैं वो दिल में उतरने का रास्ता होती हैं। तो अगर किसी के दिल में आपको उतरना है, तो आपको अपनी आवाज में भी गहराई लानी चाहिए, जो कि आपकी तो आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अरे सर, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट अ शायर, आई एम नॉट पोएट, बट
1: मतलब अगर आपसे कोई फोन पे बात करे तो आई थिंक वो फैन हो जाएगा, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, क्यों ना।
0: वो अगर मैं आपको उत्कर्ष भाई एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर करूँ, अगर हम रेडियो इंडस्ट्री में है, रेडियो फील्ड में है, तो डेफिनेटली वॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: वॉइस इज वेरी
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो में, और रेडियो पे लोग हमें देख नहीं रहे।
1: आप देखिए, गाने भी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन जिनकी वॉइस अच्छी नहीं है, जो बना नहीं पा रहे, वो कानों में रह नहीं पाए, याद नहीं रह जाते आपको, याद रह जाती है वो सूथिंग वॉइस।
0: एब्सोल्युटली
1: वो शोज में अगर आपको याद करता है तो किसी ने रेडियो में आपका चेहरा नहीं देखा आरजे का स्पेशली, अगर लोगों को याद रह जाता है कि ये वॉइस है आरजे आनंद की, तो वो क्या है, वो आवाज है। आई थिंक वॉइस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, वो बहुत नेसेसरी है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए।
0: जैसे अभी आपकी आवाज बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हम सभी लिसनर्स को, बिकॉज मैं भी अभी आपका लिसनर ही बन के बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है और हम सब बहुत वेट कर रहे हैं उत्कर्ष जी आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ तो सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब है। कौन सी चीज है जिसके साथ आप, एक कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत आप कुछ जब हैपनिंग तरीके से करते हो तो मजा आ जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ बढ़िया सा कुछ खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं कुछ तो अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, कुछ अच्छा सा जो आपको लगता है यार ये चीज तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूँ आनंद।
1: बड़ी प्यारी सी मेरा एक शेर है छोटा सा,
0: हाँ,
1: बहुत ही प्यारा है वो सुनिए, कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो,
0: वाओ,
1: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो, तुम्हारे इन झुमकों में बसती है जान मेरी, इन्हें उतार कर तुम कहाँ रख रही हो।
0: क्या बात है यार, यू नो मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने ये पोइट वाला मतलब यू नो शुरू किया है, स्पेशली मैं अभी कुछ टाइम से ही कर रहा हूँ ये उत्कर्ष भाई।
1: अच्छा,
0: सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब यू नो मुझे पहले ना समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पोएट्री और ये सब, मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह में मैं गया हूँ तो देखा है मैंने लोग करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है सब चीजें सामने आ जाती हैं, आप स्क्रॉल करोगे आपको नहीं पता आपके सामने क्या चीज अच्छी आ जाए जो आपको टच कर जाए, यू नो तो वो चीजें, बट ये जो चीजें आप लोग बोलते हैं ना जो भी आप आपके शब्द होते हैं जो पोएट्री में आप रो रहे हैं या जो भी आप शायरी कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये बड़ी सच्चाई वाली चीज है, बस आप उनको ना अलग तरीके से हम हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, बट ये ऐसा लगता है कि सच्चाई से हमारा एक सामना करा रहे हो आप लोग।

0: बिल्कुल
1: ये पोइट्री हो गई, शायरी हो गई, ऐसा लगता है मैं आईना दिखाया जाता है।
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं मतलब कभी कभी मुझसे ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि हर राइटर इससे रिलेट करेगा। उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतनी जो शायरियां लिख रहे हैं, क्या दिल टूटा है या दिल लगाया है, किसी के लिए लिख रहे हैं?
1: ये तो मैं भी पूछने वाला था
0: बट हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ, समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है, मतलब समटाइम ये है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटा हो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, या फिर आप अच्छे इमेजिनर हैं। आप जितना अच्छा सोच पा रहे हैं उतना अच्छा आप लिख पा रहे हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी कि आप अच्छा पढ़ें। पढ़ेंगे आपकी सोच अच्छी होगी। और मतलब जैसे मेरा एक और, मैं आपको एक शेर सुना।
1: अरे वाह, बिल्कुल इरशाद।
0: मैं दिल्ली में रहता था जब, तो मैं लीगल इंटर्नशिप कर रहा था हाईकोर्ट में।
1: ऑलराइट।
0: तो वहां पर हम एक रूम में रहते थे, और पीजी में, उसके बराबर में एक गर्ल्स पीजी था। तो अक्सर 8 बजे एक लड़की छज्जे पे आती थी,
1: और मतलब छज्जा जो छत,
0: छज्जा यानी कि बालकनी,
1: ऑलराइट।
0: वो छज्जा इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड बालकनी
1: यू नो, मतलब मुझे थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि एकदम फ्लैशबैक में चला गया। छज्जा मतलब हमारे घर के बाहर एक छोटा सा बना दिया जाता था, उसमें पेड़ वेड़ रख देते थे हम लोग।
0: बालकनी तो मॉडर्नाइज घर में होती है, पहले तो छज्जा ही हुआ करते थे।
1: करेक्ट।
0: तो एक लड़की ठीक 8 बजे बालकनी में आती थी, और मेरा एक जो रूममेट था वो उसको डेली देखता था, और उसके बहाने हम लोग चाय पीने जाते थे। और ये होता था कि अगर दिख गई तो चाय वो पिलाएगा, नहीं दिखी तो फिर कंट्रीब्यूशन होगा।
1: क्या बात है ये मतलब एक बड़ा अच्छे से सेटिंग्स आप लोगों ने करके रखी हुई थी मतलब
0: जी।
1: तो कितनी बार है जो जब आपने उनको चाय पिलाई है?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरा केस नहीं था, ये केस मेरे दोस्त का था, और उसने मुझे बहुत बार चाय पिलाई।
1: अच्छा, नहीं नहीं, मतलब तो आप लोगों की तो यहाँ पे एक बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि अगर वो आई तो वो पिलाएगा, नहीं आई तो आप पिलाएंगे।
0: तो मैंने तो बहुत कम पिलाई
1: थी, मतलब वो आई है इसलिए उसने आपको पिलाई
0: जी,
1: है।
0: जी
1: गजब। तो यार
0: हुआ ये कि कुछ दिन तक वो आई नहीं,
1: ठीक है।
0: तब एक शेर मेरा बना कि मैं एक शेर सुनाता हूँ कि तब मेरा एक शेर बना।
1: प्लीज यार, श्योर।
0: ओके, तो शेर ये था कि तभी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया,
1: वाह,
0: तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया।
1: क्या बात है,
0: भी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया, तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया, तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी।
1: वाह जी वाह,
0: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी, तुमने तो बस छज्जे पे आना छोड़ दिया।
1: अरे वाह, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब
0: तो कभी कभी शेर आपके जो ऐसे पोइट्रीज होती हैं वो ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं।
1: अच्छा, ये चीज ना बड़ा यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी। आप किसी भी चीज को जब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर उसको आप अपने शब्दों में पिरो रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: ये बहुत यू नो, मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी होता होगा यार।
0: नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें बनती हैं। जैसे एक और है, जैसे मैं टीचर ही हूँ, तो मैं पढ़ा रहा था लॉ कॉलेज में, तो मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ, तो मेरे से दो मेरे
1: वो
0: जो बच्चे
1: तो खैर मेरे को आपको देख के लग रहा है आपका एनवायरमेंट ऐसा है ही।
0: तो अक्सर बच्चे अपने, एक लड़का है तो वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसी डिस्कस कर रहा था।
1: ऑलराइट।
0: कि मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारी अटेंडेंस लो हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्लास के बच्चे ने चिल्लाया, सर वो भी नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है, और तब एक शेर बनता है कि आंखों से ही दिल में उतर जाना होता है,
1: वाह जी वाह,
0: इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है।
1: गजब।
0: आंखों से दिल में उतर जाना होता है, इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है, कॉलेज बस तेरे दीदार को आते हैं।
1: अरे वाह,
0: अटेंडेंस तो महज बहाना होता है।
1: क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब कितना कमाल का आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई साहब।
0: अटेंडेंस है ये तो सिर्फ एक बहाना होता है, हम तो कॉलेज तेरे दीदार को आते हैं।
1: क्या बात है,
0: सिचुएशनल शायरी
1: बेसिकली। ये अगर देखा जाए तो ये सच भी है, कहीं प्रतिशत सच भी है ये बात। बहुत लोग हैं जो यू नो ये चीज,
0: मैं वही कह रहा हूँ कि जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा,
1: करेक्ट,
0: आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप जॉन एलिया साहब को लिखिए, आप बशीर बद्र साहब, जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं, आप उन्हें अगर सुनी है, तो बशीर बद्र साहब अपने शायरी में कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
1: वाह,
0: इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं उतना अच्छा आप लिख सकते हैं।
1: बातें उत्कर्ष भाई से ढेर सारी हो रही है, और बहुत सारी चीजें अभी आगे भी सुनेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी, बट कोई बात नहीं। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वी कम बैक। मैं और उत्कर्ष भाई आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ स्टूडियो के अंदर, और आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। ढेर सारी बातें कर रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी शेर व शायरी से आपको जो है आज बड़ा सुकून दे रहे हैं भाई। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है भाई की बातें सुन के। अब आपको जो एक बढ़िया से गाना सुनाते हैं, उसके बाद लौट कराते हैं, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो आज की शाम, एंड आई एम रियली श्योर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको भी ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे तो एक ही शायरी आती है, इतने सारे शायर आए हैं, मैंने एक भी शायरी नहीं करी है, बट मेरे को ना एक्चुअली
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: करेगा
5: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
6: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन, हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
5: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
6: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है, तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
5: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
7: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
5: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन के यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akash.

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है, विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काले मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर

0: मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधिकारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस तीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार, मुरादाबाद। आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं हेलो मुरादाबाद, सिर्फ 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज हम कुछ बातें करेंगे पुरानी यादों की, पसंदीदा गानों की और आपके सारे फरमाइश सॉन्ग्स की। तो दोस्ती और रिश्ते ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और कई लोग मानते हैं कि मजबूत रिश्तों की नींव दोस्ती ही होती है। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं और जो लोग बिना वजह याद आ जाएं उन्हीं को दोस्त कहा जाता है। चलिए, तो आज हम अपने पहले कॉलर को लेते हैं और बात करते हैं उनकी दोस्ती के बारे में और उनकी फरमाइश के बारे में। हेलो मुरादाबाद। हेलो मुरादाबाद।
1: हेलो मुरादाबाद, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका?
1: सर, मैं अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताओ आप कैसे हो?
0: ये आपके पीछे कहाँ की आवाज़ें आ रही हैं? आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पीछे।
1: सर, ये मेरी दोस्त है ना, तो मतलब आज आई हूँ ना इनसे मिलने के लिए, तो ये बहुत खुश है, तो उसी की आवाज़ आ रही है।
0: तो सारी खुशी की इन अपने इस दोस्त के लिए भी तो कुछ बोलिए ना आप। कहाँ से आई है आपके दोस्त? अच्छा, आप अपनी दोस्त के पास आई हैं?
1: हाँ, मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर आई हूँ मैं।
0: क्या बात है, आप तो एम टू एम पहुँच गई।
1: बिल्कुल।
0: कहाँ है आपकी दोस्त?
1: हमारी दोस्त भी मेरे पास में ही है।
0: बात कराइए आप अपनी दोस्त से।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग मैम। आदाब।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। तो आपके पास आज आपकी फेवरेट दोस्त आई है?
1: फेवरेट नहीं, बेस्टी।
0: बेस्ट दोस्त आई है आपके पास?
1: यस, वो मेरी पिटाई करने आई थी।
0: तो पिटाई होने से पहले कम से कम कुछ तो बोल दीजिए अपने दोस्त के लिए, कुछ तो शायरी बोलिए।
1: शायरी के मामले में तो मैं बहुत ही बड़ी हूँ, लेकिन हाँ, मेरी दोस्त बहुत अच्छी शायरी करती है।
0: तो सुनाए आज हमारे सभी श्रोताओं को, कम से कम मुरादाबाद के लिए कुछ तो गिफ्ट दीजिए।
1: बिल्कुल सर, उससे पहले मैंने भी आपसे प्रॉमिस कराया, सॉन्ग
0: सुनाए
1: आप हमें।
0: सॉन्ग सुनाए तो सॉन्ग, आज ना मेरा थोड़ा सा गला खराब है।
1: आप सुनाए सर, आपकी वॉइस सुनाए।
0: सुनाएंगे, मगर अभी जो है ना, आज कैसे कहें आपसे कि आज जो है मैं अपना बेस्ट सॉन्ग बता देता हूँ आपको।
1: बताइए।
0: ये है मूवी का नाम है इसमें अजब प्रेम की गजब कहानी से, तू जाने ना, आतिफ असलम का। तो ये मेरा बेस्ट, मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। अब आप बताइए, शायरी सुनाइए अब आप।
1: अफरोज सुनाएगी।
0: सुनाइए अफरोज जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: जी सर बताइए,
0: शायरी सुनाइए आप।
1: हाँ सर, मैं सुनाऊंगी शायरी। मैंने उस टाइम कॉल की थी तो खुशी देखो, तो मैंने सुनाई थी, तो मेरी दोस्त ने नहीं सुनी थी, तो मैं आज सुनाना चाहती हूँ जो मैंने उनके लिए लिखा है।
0: हाँ हाँ बोलिए इरशाद।
1: तो अर्ज किया है, न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे। बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, तुम यहाँ से मुस्कुराना, हम तुम यहाँ से याद करना, हम वहाँ मुस्कुराएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या मुस्कुराते हुए शायरी सुनाई आपने, बहुत ही अच्छी शायरी थी और बहुत ही, कहते ना, बिल्कुल आपके दोस्त तक पहुँच गई, ऐसी पहुँची है कि आप जो है अपने दोस्त तक हैं, दोस्त के पास पहुँच गई हो।
1: क्या है ना सर, मैं जब मेरी लाइबा से दोस्ती नहीं हुई थी ना, तो मतलब मैं तो वैसे ही करती थी शायरी, लेकिन जब से दोस्ती हुई है ना, तो मैं लाइबा के लिए लिखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या ऐसा दोस्त हर किसी को मिले, बहुत ही अच्छी है और ऐसी ही दोस्ती आपकी रहे। तो चलिए आज सभी को सुनाते हैं आपकी इस दोस्ती का ये गाना। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर, सॉन्ग सुनना है, जानम देख लो मिट गई दूरियां।
0: अच्छा, मैं यहाँ तू वहाँ।
1: हाँ।
0: क्या बात है, गाना भी एकदम बढ़िया
1: है ना सर, तो बिल्कुल मतलब करेक्ट सॉन्ग सुना है हमने।
0: चलिए आपकी खुशी को करते हैं दोगुना और सुनते हैं ये गाना। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सर, बाय बाय।
0: थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आज अपने पहले कॉलर की कॉल। का पसंदीदा गाना और वीर जारा मूवी से है ये गाना, बहुत ही बढ़िया, उदित नारायण और मदन मोहन जी की आवाज़ में।

0: तो दोस्तों, अब वक्त है आपकी फरमाइशों को फिर से एक बार स्टेशन पे प्ले करने का। अभी इस गाने के वक्त हम पे एक मैसेज आया, राहुल जी का है, रामगंगा विहार से उन्होंने मैसेज करा, ये गाना जो भी आपने प्ले किया है वीर ज़ारा का, ये गाना मैं बचपन की दोस्त, मेरी एक फ्रेंड है पूजा, उनके साथ सुनता था और हम दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तो राहुल जी, क्या बात है, कम से कम हर गाने से किसी ना किसी के साथ किसी की यादें तो जुड़ी होती हैं, और ये आपने अच्छा हमें मैसेज किया कि हाँ, बताया कि आपकी भी याद इस गाने से जुड़ी हुई है। शोभित जी बोल रहे हैं लाजपत नगर से, शोभित जी ने लिखा है, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त वही रहते हैं जो हर हाल में साथ निभाते हैं। क्या बात कही शोभित जी आपने, मतलब बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है एक तरीके से, बहुत ही सुंदर। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं, छोटी सी नन्ही सी बच्ची जुड़ी है आज। हेलो मुरादाबाद, क्या नाम है बेटा आपका?
1: गुंजन।
0: गुंजन, कौन सी क्लास में हो आप? फिफ्थ क्लास में हैं। आपके पीछे जो रेडियो प्ले हो रहा है ना, उसकी आवाज थोड़ी सी हल्की कर लो। गुंजन, आपको पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश। क्या बात, सारा होमवर्क पूरा हो गया आपका स्कूल का, जो इस बार होमवर्क मिला है समर वेकेशन का?
1: बस थोड़ा सा बचा।
0: सही है। मम्मी पढ़ाती हैं, पापा पढ़ाते हैं घर पे?
1: मम्मी
0: पढ़ाती हैं। कौन सा गाना सुनना चाहोगी गुंजन?
1: दिल पे चलाई छुरियां।
0: दिल पे चलाई छुरियां। चलो भाई साहब, खाना हो गया आपने? खाना खा लिया?

0: नहीं।
1: तो चलो पहले ये गाना सुन लो, उसके बाद खाना खा लेना फिर।
0: सर पूरा सुनाना।
1: पूरा सुनाएंगे हम, पूरा गाना सुनाएंगे आपको, ठीक है?
0: ठीक।
1: ओके। तो बहुत ही अच्छी फरमाइश आई है, दिल पे चलाई छुरियां। चलिए गुंजन जी की भी एक फरमाइश पूरी कर देते हैं हमारी, उसके बाद ये भी डिनर करेंगे। और आप सब लोग जो इस समय अपनी कोई फरमाइश का गाना सुनना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, किसी को कोई मैसेज भी डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर मैसेज करें 9837896896 पे।

0: ये बात तो सच है साहब, दिल पे तो छुरियां ही चलती हैं। कई बार प्यार की शुरुआत भी दोस्ती से ही होती है। एक खूबसूरत बात, जब कोई आपकी खुशी में खुश हो, आपकी तकलीफ़ में परेशान हो, तो समझ लीजिए वो रिश्ता खास है। देखते हैं अब हमारे साथ कौन जुड़ा है, हमारे नेक्स्ट कॉलर। हेलो मुरादाबाद।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुलासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान से बोल रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ सर, लेकिन मौसम बेहाल है। सुबह धूप एकदम जबरदस्त तेज है सर, और खूब उमस गर्मी। मेरे को लगता है सर कि ये पानी गिरने के कगार में है सर, कहीं बादल किया है तो उसी का लहर आया है, तो मेरे को लगता है कि उमस गर्मी बरसात होने का पूरा संभावना है।
0: असली बरसात का मजा भी इंद्रभान जी तभी आएगा जब अच्छी खासी गर्मी हम झेल लेंगे सब।
1: जी सर, और अच्छी खासी गर्मी तो झेलेंगे सर, उससे विषय पर हम उसी को नजर डालते हुए अपने पसंद की सुनेंगे तो
0: थोड़ा सा सुकून भी होगा, थोड़ा सा ये मौसम को बर्दाश्त भी कर सकेंगे। सही कह रहा हूँ ना? क्या करते हैं आप इंद्रभान जी?
1: मैं इसी चीज में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ।
0: अच्छा सर, अच्छा सर, तो आप क्या कुछ हमारे दर्शकों के लिए, कुछ श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई शायरी?
1: हाँ सर, कहना चाहता हूँ।
0: बताइए।
1: वसंत के बाद सुबह की रात होती है, खुलती है जिनके जहाँ से बरसात होती है, आती हो सपने में जब कोई भी यहाँ जब रात होती है।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी आपने शायरी लिखी, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छी। हाँ, मतलब कहूँगा कि ये तो इस तरीके से लिखा है कि आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं दिल में से निकली है आपके। तो आज कौन सा आप अपनी फरमाइश का गाना सुनना चाहेंगे और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: फिल्म नाम है भूत नाथ रिटर्न, गीत की बोलो पार्टी तो बनती है, गायक मीका सिंह, और सबसे पहले गीत आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, और रेडियो मुरादाबाद में मेरे सभी छोटा भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, केंद्र निदेशक श्रोता को, श्रोता को, रेडियो मुरादाबाद में सभी दूसरे भाई बहनों, स्टाफ कर्मचारी सभी को डेडिकेट धन्यवाद। इसी फिल्म किसी गीत को सुनाएंगे सर, धन्यवाद।
0: ठीक है सर, ठीक है, आपकी ख्वाहिश पूरी होती है और इसे सुना दे। ओके सर, सर ने गाना तो बहुत ही अच्छा चुना है, पार्टी तो बनती है, और कभी कभी ऐसे ही होता है कि इस समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ पार्टी तो बनी रही होगी, तो चलिए सर की भी पार्टी बनाते हैं।

0: तो हाँ जी, एक बार फिर से हम वापसी करते हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद वालों, ये शहर सिर्फ पीतल नगरी ही नहीं बल्कि मोहब्बत और अपनापन का भी है। कॉलेज के दोस्त, ऑफिस के यार, मोहल्ले की टोली, सबकी अपनी कहानी होती है। कुछ दोस्त किताबों जैसे होते हैं, हर बार पढ़ो तो कुछ नया सिखा जाते हैं, और कुछ दोस्त आईने जैसे होते हैं जो हमें हमारी पहचान बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं अपने नए एक श्रोता को, अपने नए एक लिसनर को जिन्होंने हमें कॉल करी है, इशरत अली जी ने, बात करते हैं उनसे। नमस्कार इशरत जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ हेलो मुरादाबाद, सबसे पहले सर आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार इशरत जी, कहाँ से? मैं बढ़िया हूँ इशरत जी, आपको ही पता है इस समय गर्मी और कहते हैं ना उमस से कैसे इंसान जूझ रहा है, तो बस उसी से।
1: सर गर्मी इतनी है कि समझ लो पूरे दिन घर पे रह रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं सर, इतनी गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं और बुखार मतलब खांसी जुकाम काफी चल रहा है सर। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मैं ख्याल रखें, कोई जरूरी काम हो तो बाहर जाएं, वरना अपने घर पे रहें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही।
1: नींबू पानी का इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा ज्यादा पिए, खाना कम खाएं और बासी खाना या फल तो बिल्कुल भी नहीं खाएं सर।
0: बिल्कुल सही कहा इशरत जी आपने। तो इशरत जी आप कहाँ रहते हैं?
1: सर मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इसवार के पास में रहता हूँ।
0: ओके ओके ओके ओके,
1: सर आप आइए हमारी तरफ,
0: पक्का पक्का
1: रामपुर
0: पक्का पक्का आएंगे आपके पास रामपुर। बताइए कुछ तो शायरी

0: के दोस्त थी, पर आज के दौर में दोस्त बन के दोस्त को मार रहे हैं।
1: ये तो है, कुछ दोस्त हैं ऐसे जो कभी कभी ये हरकत कर देते हैं और बाकी दोस्तों पे भी इल्जाम लग जाता है इस चक्कर में।
0: पर ऐसा बहुत हो रहा है आज के दौर में कि दोस्त को बुलाते हैं कि उस जगह पर आ जाओ, और सही नहीं है ना, बहुत गर्म माहौल चल
1: तो
0: जाता है।
1: इस बहाने आप ये भी सीख रहे हैं कि कौन आपका दोस्त कहना लायक है भी और कौन नहीं। एक
0: कौन
1: बात ये भी
0: नहीं?
1: तो सीख मिल रही है आपको कि
0: हाँ
1: ठीक
0: सर,
1: है।
0: धोखा खा चुके हैं ना बहुत मरतबा, तो सर
1: हाँ
0: अब मतलब अच्छा नहीं लगता किसी को अपना बनाना या दोस्त बनाना,
1: तो
0: मतलब
1: अब
0: कोई
1: आप
0: किसी का नहीं
1: बिल्कुल
0: जानता दोस्त।
1: लिमिटेड लिमिटेड कर लीजिए और लिमिटेड ही दोस्ती रखिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ भाई ज़्यादा दोस्ती रखने भी फायदेमंद नहीं है।
0: हाँ सर, और की मैं कह नहीं सकता, अगर कोई मेरे संग कोई कांड हो जाए, 400-500 रुपए की जरूरत हो मुझे पर मिलने वाले नहीं है अभी।
1: नहीं मिलने वाले इस समय तो,
0: हाँ ये है,
1: इस समय है उसमें दोस्तों की भी गलती नहीं है, मगर नहीं मिलने वाले, ये बात तो मैं कहूंगा
0: नहीं
1: आपसे।
0: मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते
1: तो
0: हैं।
1: चलिए कौन
0: मैं
1: सा
0: दोस्त मैं लगभग 20 साल सर मुझे यही काम है, मैं आजमाता रहता हूँ सर
1: चलिए
0: को कौन
1: अच्छी
0: क्या है क्या
1: बात,
0: नहीं है। सर आज के मतलब दम भर गया सभी से।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप रात में सुकून से सोइए, कोई एक गाना बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: सर मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है इक्का राजा रानी, गाने के
1: ओके
0: उसमें बहुत प्यारा गाना है कि इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। सर ये वाला सॉन्ग मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। सर आज प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश करते हो, मैं सुनता रहता हूँ आपको।
1: तो ये आपने मेरे को डेडिकेट कर दिया, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, ये बात तो है, इश्क करने में दर्द तो मिलता ही है।
0: सर जो आप
1: धन्यवाद
0: प्रोग्राम पेश करते हो 3 बजे से, काफी अच्छा लगता है मुझे, वो भी मुझे भी सभी दोस्तों को, काफी अच्छी
1: ईश्वर जी,
0: बातें कर
1: आप
0: लेते हो आप।
1: इसी बहाने कम से कम जुड़े रहें और अपने दिल की बात भी सबके सामने रखते
0: सर मैं
1: रहें।
0: ये केंद्र सुनता हूँ, अपना रामपुरी भी नहीं सुनता हूँ,
1: चलिए चलिए,
0: बस मौलाना बात सुनता
1: ये तो बहुत अच्छा लगा हमें आपकी इस बात को सुन के। चलिए सुनते हैं आपकी, आपका पसंदीदा गाना।
0: हूँ। जी सर, थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार ईश्वर जी। तो ईश्वर जी ने इतना बढ़िया गाना चुना है कि इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। तो साहब ईश्वर जी आपके लिए एक गाना हम प्ले करते हैं, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा।

0: इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। एक राजा रानी, क्या बेहतरीन गाना था। गोविंदा आयशा जुल्का को इसमें फिल्माया गया था और विनोद खन्ना साहब भी थे इसमें। चलिए अब हमारे ही देखते देखते हेलो मुरादाबाद फरमाइश स्पेशल आज अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। जाने से पहले हम एक अपने कॉलर और हैं जिनका हम पे कॉल आया हुआ है, गुप्ता जी का, उनसे ही बात करते हैं। हेलो मुरादाबाद, गुप्ता जी नमस्कार, कैसे हैं?
1: नमस्कार।
0: क्या कर रहे हैं गुप्ता जी आप?
1: लेटा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाना खा गया है।
0: तो कुछ तो सुनाइए, आप लेटने से पहले अब सुनाइए कुछ।
1: सुनाई लड़कियाँ, लड़कियों को ऊपर सुना रहे हो?
0: हाँ हाँ सुनाइए गुप्ता जी।
1: तो लड़कियाँ तो आज फैशन चल रहा है ना दुपट्टे वाला।
0: अच्छा सर,
1: आधा दुपट्टा नीचे डाल देंगे, आधा ऊपर बाजी बाजी डालती नहीं।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, तो ऊपर शेर है।
0: शेर है।
1: हाँ, तो एक लड़की जा रही होती रस्ते में, तो आधा दुपट्टा खिचर रहा होता है, आधा ऊपर होता है उसके कंधे पे। लड़का कह रहा है उठा लो जमीन से दुपट्टा,
0: क्या बात है।
1: उठा लो जमीन से दुपट्टा, कहीं दाग न लग जाए, समझे?
0: हाँ जी हाँ जी
1: उठा लो जमीन से दुपट्टा, कहीं दाग न लग जाए, समारो मेरे दिल को कहीं आग न लग।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: लड़की जवाब देती है पीछे में उसे,
0: क्या
1: उठा लूंगी जमीन से दुपट्टा, दाग नहीं लगने दूंगी, संवारूंगी तुम्हारे दिल को।
0: क्या बात है क्या बात है, कितने अच्छा आपने बोला है। और
1: लड़की के ऊपर दुपट्टे के ऊपर बनाया है मैंने सिर्फ।
0: सर साहब आपने दुपट्टा भी संभाल लिया है,
1: हाँ दुपट्टा भी संभाल लिया, सुहाने से।
0: अब आप गाना बताइए, आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनेंगे जमुना गंगा सरस्वती का, काजल मेरा उस पार है, मिलने को भी करार है।
0: क्या बात है क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी फरमाइश बताई।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार गुप्ता जी। तो हमारे साथ जुड़े थे गुप्ता जी सूर्यनगर से, और इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइनें बोली दुपट्टे के ऊपर। और इनका जो गाना है साजन मेरे उस पार है, चलिए सुनते हैं साजन किस पार है।

मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है, दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत मेल है। यूँ तो हर रिश्ता बन जाता है, लेकिन दोस्ती हर किसी के नसीब में नहीं होती। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और आप सुन रहे थे हेलो मुरादाबाद सिर्फ 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपके साथ अलविदा, और मिलते हैं कल दोबारा ठीक 9 बजे 9837896896 पर। आप अपने मैसेज और अपनी फरमाइश ज़रूर भेजिएगा, और बताइएगा आपको कैसा लगा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

बात का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।